0: मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दूनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टारपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा है कि इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अनुचित टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। ज्ञान अमृत

रेडकोट, रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां से आप 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आमंत्रित विशेषज्ञ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आइए आपको योग

0: दिवस कार्यक्रम में ले चलते हैं।
1: नमस्कार, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी खेल प्रेमियों को, स्वास्थ्य प्रेमियों को और योग प्रेमियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत। आज पूरा विश्व 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरी मानवता आज एक सुर, एक ताल और एक श्वास में बंधी नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में रेड रोड पर विशेष आयोजन हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में यहां सामूहिक योग प्रदर्शन किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं योगाभ्यास कर पूरे देश का नेतृत्व करेंगे। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में अपने दो विशेषज्ञों का भी स्वागत कर रही हूं। हमारे साथ हैं परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार।
3: थैंक यू, नमस्ते। एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री रविंद्र नारायण रवि एंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी हैव अराइव्ड एट द आइकॉनिक रेड रोड एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल बी लीडिंग द नेशन टुडे एंड ही विल personally be performing asanas at the iconic Red Road on the occasion of the 12th International Day of Yoga. And the Red Road is chock-a-block with people from all walks of life, and it is indeed, Neelam, a very momentous day for all the people who have assembled here at Red Road to be performing asanas to be led by the Honorable Prime Minister. And there's a huge crowd we can see from the one end of Red Road till the Eden Gardens. It is chock-a-block with people. And the theme of this year's International Day of Yoga is healthy aging. And we can see that everyone is assembled here and they're looking forward to join the Honorable Prime Minister and perform asanas.
1: 21 जून 2026 की इस सुहानी और अलौकिक सुबह में कोलकाता की इस ऐतिहासिक भूमि पर हुगली नदी के पावन तटों की गवाही में भव्य तैयारियां की गई हैं आज के आयोजन के लिए। यहां से माननीय प्रधानमंत्री जी इस वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे। इस बार की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग। बढ़ती उम्र में भी ऊर्जावान और गतिशील बने रह सकते हैं हम, योग के साथ स्वस्थ रह सकते हैं। और आपको बताएं कि बहुत विशाल मंच एक यहां पर बनाया गया है जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी और साथ ही अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति है। पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, साथ ही माननीय गवर्नर साहब हैं और यहां पर अब संबोधन हो रहा है।
3: श्री प्रताप राव जाधव, दी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष।
1: विशाल जनसमूह इस संबोधन को सुनता हुआ।
4: जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हम

0: योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: माननीय केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने अभी सभी का यहां पर स्वागत किया और साथ ही आयुष मंत्रालय ने योग को बढ़ावा देने के लिए जो पहल की है उनके बारे में बताया। हम आपको बताएं कि माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री आरएन रवि, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी और प्रधानमंत्री जी स्वयं आज के दिन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए परिधान में इस समय है। योग को परिलक्षित करती हुई टी शर्ट्स हैं और साथ ही पतलून पहनी है और जो भी योगाभ्यर्थी यहां पर बैठे हैं, योग साधक यहां पर बैठे हैं रंग बिरंगे मैट्स पर, वो बेहद उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में उल्लास है लेकिन साथ ही अनुशासन भी है।
2: यस एंड एवरी एंथुजियास्ट हियर एंड नाउ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल श्री शुभेंदु अधिकारी।
3: वंदे समवेत सुनागरिक भद्रमंडली, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী এবং যার হাত ধরে সিটি অব জয় এই কল্লোলনী তিলোত্তমা কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে যোগ কামস টু হোম, যোগ বঙ্গে ফিরে এলো, সেই মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজিকে 11 কোটি পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে হৃদয় থেকে স্বাগত, অভিনন্দন, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং প্রণাম নিবেদন করছি। মহামহিম রাজ্যপাল মাননীয় আর এন রবিজি রয়েছেন, ভারত সরকারের মাননীয় স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতাপ রাও যাদবজি রয়েছেন এবং সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়ার বন্ধুরা এবং

केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव जाधव जी, अन्य सभी महानुभाव, यहां कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव

का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है, योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव जीवन के का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where yoga can help us. It helps us tune our bodies to be flexible. It keeps our energy level high. It also helps us maintain a calm, stress-free life and help to keep lifestyle disease away. Moreover, with regular practice, yoga teaches us to remain lifelong learners of our own bodies and minds. The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवती

दुखः, अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है।

0: स्वागत का उल्लेख किया। साथ ही महर्षि अरविंद को भी याद किया और महर्षि अरविंद ने कहा था, हमारा पूरा जीवन योग है, हमें इसका बोध हो या न हो, ये हमें फिर से याद दिलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योग से हम ऊर्जावान रह सकते हैं, योग सबको जोड़ता है और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता है। योग से विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। हम आपको बताएं, ये जो विशाल जन समूह है, जहां जहां तक रेड रोड पर नजर जा रही है वहां योग साधक बैठे हैं और योग के प्रिंट वाली टी शर्ट्स पहनकर पूरी तरह से तैयार हैं, रंग बिरंगे मैट्स पर बैठे हैं अनुशासित रूप से। माननीय प्रधानमंत्री जी अब स्वयं योग कर पूरे देश का और इस वैश्विक आयोजन का नेतृत्व करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी योग वाली टी शर्ट पहनी है और साथ ही आपने बाटिक प्रिंट वाला एक स्टोल भी धारण किया है जिस पर कमल का फूल दमक रहा है। और योग साधक बेहद उत्साहित इस समय नजर आ रहे हैं क्योंकि स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी को वो योगाभ्यास करते हुए देखेंगे और सामूहिक योगाभ्यास का क्रम यहां पर शुरू होगा। एक एक कर आसन किए जाएंगे और हम सभी जानते हैं कि योग के जो आसन हैं वो न केवल शारीरिक रूप से हमें लाभ पहुंचाते हैं बल्कि वो मानसिक रूप से भी हमें बेहद शांत करते हैं, संतुलित करते हैं और आत्मिक रूप से भी हमें प्रकृति के साथ जोड़ते हैं। योग यानी शरीर का मन से जुड़ना और मन का आत्मा से, फिर आत्मा का प्रकृति से जुड़ना।
1: Yes, and the Honorable Prime Minister will be shortly arriving at the venue where he will be leading the countrymen in performing the yoga asanas here at the iconic Red Road. And as you rightly mentioned, Neelam, that the Honorable Prime Minister today made us all remember about the uniqueness of yoga.
0: Ji, aur is samay यहाँ पर सामूहिक प्रार्थना की जा रही है। ये हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रार्थना के साथ किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं। इस वक्त जितने भी योग साधक हैं सभी अपने अपने स्थान पर सुखासन में बैठे हुए हैं, नमस्कार मुद्रा में सभी के हाथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना इस समय यहाँ पर की जा रही है। हमारी संस्कृति जिसमें विश्व शांति की कामना है, साथ ही हम जड़ चेतन की शांति की कामना भी करते हैं, प्राकृतिक तत्वों की शांति की कामना करते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम सब एक ही हैं।
2: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए, आस्ते आस्ते दोनों चौके खुलून, दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था नहीं आसुन, जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए, निजर जाएगा।
0: मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं हम सब और योग साधक उन निर्देशों का पालन करते हुए अपने अपने स्थान पर योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। पंक्तिबद्ध तरीके से मैट्स बिछाए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन अब हो रहा है योग साधकों के बीच।
1: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज जस्ट अराइव्ड and he will be going to the designated area and he has just arrived there and he will be performing the asanas from here and he is flanked by ordinary people from all walks of life here at the Red Road and we can see that the officials are now ready for the International Day of Yoga 2026 main celebrations at Red Road, Kolkata.
0: माँ काली का आशीर्वाद लिए स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसी विभूतियों का दर्शन इस भूमि में है। सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विरासत है ये हमारे योगियों की, हमारे मुनियों की। विशेष तैयारियों के साथ आज यहाँ योगाभ्यास किया जा रहा है और इस समय ग्रीवा चालन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। और जब हमारे यहाँ पर योग साधक सभी इस कॉमन प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं तो मैं प्रतिमा जी आपसे जानना चाहूँगी, ग्रीवा चालन इस समय हो रहा है, आप हमें इसका लाभ बताएं।
3: जी, ग्रीवा चालन जो है वो मानसिक लाभ भी देता है और साथ ही शारीरिक लाभ भी देता है। मानसिक लाभों की बात की जाए तो वर्तमान समय में जो तनाव से सभी लोग गुजर रहे हैं उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: जी,
3: साथ ही जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो उसको भी

0: प्रिवेंट करता है, और साथ में इसको के थेरेपेटिक बेनिफिट्स भी हैं। और जितने भी ये आसन ग्रीवा संचालन में किए जा रहे हैं, ये सभी के सभी हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करते हैं
1: जी।
0: और इसके अलावा जो और भी बेनिफिट्स हैं वो हमारे पूरे संपूर्ण जो नर्वस संस्थान है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि सारे जो भी क्रियाकलाप है हमारे दैनिक, वो हम अपने ब्रेन के कारण ही संपन्न कर पाते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। साथ ही हमारे जो हेड का, सिर का वेट है, उससे रिलेटेड जो हमारी मसल्स, आपने देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी गर्दन हिलना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए भी ये प्रिवेंट करता है, मसल्स को स्ट्रेंथन करता है
1: जी। यानी हम नॉर्मल एक्सरसाइज करते हुए जिसे एक हल्का फुल्का वार्म अप मानते हैं, उसके बहुत सारे लाभ है, ये हमें आपने अभी बताया। हम श्रोताओं को बताएं कि गर्दन को धीरे धीरे दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करना, ये ग्रीवा संचालन में आता है। ग्रीवा चालन इस आसन का नाम है और सूक्ष्म व्यायाम इन्हें कहा जाता है,
0: सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों में से
1: जी। और यहाँ पर सभी निर्देशों का पालन करते हुए हम देख पा रहे हैं कि जो योग साधक हैं उनके बीच माननीय मंत्रीगण तो है ही, गणमान्य अतिथि हैं, और साथ ही भारत में इस समय जो विदेशी मौजूद हैं हमारे, वो अतिथि भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने हैं।
2: Guruji, Munish Naji, we'd also like to know from you about the importance of the beginning of this asana.
3: Yes, actually, asan ko hum is tarah se samjhe ki seat of awareness. हमारी चेतना हमारे शरीर को फॉलो करती है, हम चित्त से काया की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रीवासन है, इसमें हम क्या होता है कि हमारी जो चेतना है, हमारी जो शरीर को चलाती है सूक्ष्म रूप से, ये जागृत होती है और उसकी आसन वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। मतलब उसकी इंटेंशन, उसकी पहुँच, उसकी सेंसेशन आत्मा की और चेतना की, ये यहाँ से शुरू होती है और ये बहुत ही फायदेमंद है जब हम आसन शुरू करते हैं तो।
1: जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी मुनेश सिन्हा जी कि एक आध्यात्मिक गुरु के दृष्टिकोण से आप हमें बताएं, योग का वास्तविक और गहरा अर्थ क्या है अध्यात्म में?
3: योग पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्म, पूरा विश्व, पूरा जगत एक यौगिक स्थिति को जी रहा होता है, बस जानता नहीं है, है ना। अगर हम कहते हैं जब हम अपने अंदर के असूक्ष्म, जो हमारी जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे जब हम जुड़ जाते हैं तो हम व्यक्त हो जाते हैं, इसीलिए व्यक्ति कहा जाता है, है ना। जितने लोग हैं उनको व्यक्ति कहा जाता है, इसलिए व्यक्ति कहा जाता है कि वो अव्यक्त को व्यक्त कर रहे हैं। तो अव्यक्त को व्यक्त करने की जो प्रोसेस है, आप जब भी हम योग करते हैं, अपने स्वयं से जुड़ते हैं, किससे जुड़ रहे होते हैं, जोड़ कौन रहा होता है, हमारी चेतना, हमारी चेतना हमारी तीनों शरीर को अलाइन कर रहा होता है, हमारा स्थूल शरीर, हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारा कारण शरीर। जब हम इन तीनों को अलाइन करते हैं, जब हम तीनों के साथ जुड़ जाते हैं, तो अवेयरर ऑफ द अवेयरनेस, एक्सपीरियंसर ऑफ द एक्सपीरियंस, ये हमें जो हमारी अव्यक्त स्वरूप है वो जागृत होनी शुरू हो जाती है। फिर उसका प्रेजेंस हमारे टोटैलिटी पे रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है। आप चलते फिरते उठते बैठते आप यौगिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होती है, प्रकृति की जागृति होती है। और आज इस पूरे विश्व में जिस भी हम संघर्ष से जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ही है कि हम योग से बहुत दूर हो गए हैं, हमारी कलेक्टिव कॉन्शसनेस हमसे बहुत दूर हो गई है। आज इस पूरे समाज को, इस पूरी जगत को, इस पूरे वातावरण को योग की बहुत बहुत बहुत जरूरत है।
1: जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आज विश्व की आवश्यकता है योग, तो इस समय यहाँ पर स्कंध चालन का अभ्यास किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपसे जानना चाहेंगे इसके लाभ क्या हैं?
0: स्कंध चालन जो है, ये पूरा थोरेसिक कैविटी पर काम करता है, और थोरेसिक कैविटी जो है उसके अंदर हम सभी को पता है कि लंग्स सिचुएटेड होते हैं, और जो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होती हैं उधर काम हो रहा होता है, और लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी काम करता है, और बहुत सारे अन्य बेनिफिट्स भी इसके होते हैं।
1: जी,

0: और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर उम्र के योग साधक उपस्थित हैं, युवा भी हैं तो प्रौढ़ भी नज़र आ रहे हैं इस विशाल जनसमूह में। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो कि योग को एक विषय के रूप में पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि योग जो है अगर हम कहते हैं कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए तो योग में करियर भी है। और ये हम प्रतिमा जी को देखकर यहाँ समझ सकते हैं कि आपने अलग अलग संस्थानों में कार्य किया है, योग को बढ़ाया है, विभिन्न पदों पर आप रही हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी प्रतिमा जी, योग में जो करियर है उसके क्या ऑप्शंस हैं हमारे युवाओं के लिए, आप बताएं।
1: योग में करियर के ऐसा जो ऑप्शंस हैं वो डिग्रीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जिसमें कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो हमारे यहाँ से भी चले जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, एमएससी है, एमए है और पीएचडी है
0: जी।
1: तो इसमें जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी उस तरह से आपका करियर आप डिसाइड कर सकते हैं। वेलनेस इंस्ट्रक्टर के रूप में और योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, योगा थेरेपिस्ट के रूप में, वेलनेस कोच के रूप में, योगासन कोच के रूप में आदि।
0: जी मैं गुरु मुनेश सिन्हा जी आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं में आजकल तनाव, अवसाद और अकेलापन बहुत बढ़ गया है, जीवन शैली का हिस्सा होता जा रहा है अकेले रहना, योग और ध्यान उनके इस आंतरिक खालीपन को भरने में कैसे मदद कर सकता है?
2: बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है कि जैसे जैसे हम सत्य से दूर हो जाते हैं
0: जी,
2: तो हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। जैसे कि आप अपने घर से जब दूर हो जाते हैं तो आप घर वापस आने की सोचते हैं, जितने हम घर से दूर चले जाएंगे हम उतने स्ट्रेस में रहना शुरू करेंगे
0: जी।
2: तो आज पूरी दुनिया की ये जो हालत है, हम अपने ही मूल स्वरूप से, अपने ही सोर्स से, अपने ही घर से, अपने ही कहते हैं अस्तित्व से इतने दूर चले आए हैं कि अब हमें वापस आने के लिए भी एक लंबी दूरी की तय करनी पड़ेगी। कहते हैं जब यू टर्न होता है, यू टर्न आप लेना चाहते हैं, आपकी जीवन की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि आप यू टर्न लेते लेते भी कई किलोमीटर आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए आज के युवा को खास करके ये मानना होगा, जानना होगा कि उसकी सच्चाई क्या है, उसके व्यक्तित्व की सच्चाई क्या है, उसके अस्तित्व की सच्चाई क्या है। जब हम अपने सत्य से जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे सोल की तरफ, हमारे टोटालिटी की तरफ जुड़ जाता है
0: जी।
2: आज देखना कि सत्य और सत्य में फर्क है। सत्य सबके अलग अलग होते हैं लेकिन पूरे विश्व का सत्य एक ही होता है
0: जी।
3: Yes, and
0: और इस समय यहाँ पर ताड़ासन का अभ्यास किया जा रहा है, दोनों हथेलियों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाए गए और अपने पंजों पर सभी सीधे खड़े हुए। संतुलन में तो ये आसन मदद करता ही है लेकिन साथ ही हमारी जो मेरुदंड है उसे भी एकदम सीधा कर देता है, और ताड़ के पेड़ की तरह हम सीधे खड़े हों तो ताड़ासन कहा जाता है, और बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए ये बेहद फायदेमंद है। प्रतिमा जी सही कहा मैंने?
1: बिल्कुल 100% आप सही कह रहे हैं
0: जी।
1: एडोलेसेंट स्टेज वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये आसन
0: जी।
3: Yes, and as you were mentioning, Neelam, that today is the International Day of Yoga, and the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Healthy Aging. And the Honorable Prime Minister also mentioned in his speech that in the 1920s, Paramhams Yoganand set up the yoga center in Kolkata and also at other places. And today, the popularity of yoga has spread far and wide. In the 132nd episode of Mann Ki Baat, the Honorable Prime Minister has said that the attraction of yoga is rising across the world. And he also highlighted the work of Mr. Almis in popularizing yoga in Djibouti, Africa, through his Arvind Yoga Center. Similarly, there are many such yoga centers now even in South America. So the popularity of this gift of India, this gift of healthy life for everyone is indeed a gift for humanity by India to the world.
0: जी, यहाँ पर अभी पादहस्तासन का अभ्यास किया गया और उसके बाद अर्धचक्रासन का अभ्यास अभी किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि ज़मीन पर जब पीठ के बल लेटकर हम पैर और हाथों के बल अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाते हैं तो चक्रासन होता है, लेकिन जब खड़े होकर

0: पर हम केवल थोड़ा सा झुकते हैं पीछे की तरफ, तो अर्ध चक्रासन है हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि ये भारत का एक अनुपम उपहार है विश्व को, हम अब तक गर्व करते हैं कि हमने दुनिया को शून्य दिया है, हमारा दर्शन विश्व में अलग अलग देशों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देता रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से, उनके नेतृत्व से और उनकी प्रेरणा से अब हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने दुनिया को योग भी दिया है और अब ये कागजों में भी दर्ज हो चुका है, जिसे कि यूनेस्को और यूएन ने भी माना है। यहां पर अभी त्रिकोणासन का अभ्यास होता हुआ त्रिकोण जैसी आकृति बनाई जा रही है शरीर से। प्रतिमा जी, त्रिकोणासन के लाभ क्या क्या हैं?
1: ये खड़े होकर किए जाने वाले अभ्यासों में शामिल है। ये घुटने और थाई मसल्स और साइड का जो फैट होता है और मसल्स होते हैं वहाँ काम करता है, साइड फैट को भी रिड्यूस करता है। साथ में जो स्पाइन है, स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जो गर्दन की नर्व्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है, मसल्स को भी स्ट्रेंथन करने का काम करता है। और ये इवन आईज के लिए भी बेनिफिशियल आसन कहा जाता है।
0: ये मेरे लिए भी चौंकने वाली बात है कि त्रिकोणासन से आंखों को लाभ होता है, क्योंकि मैं भी बचपन से योगाभ्यास करती आ रही हूँ, लेकिन नई जानकारी ये मुझे आपसे मिली है।
1: और ये साइटिका वाले लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल आसन होता है
0: जी। और हम यहाँ देख रहे हैं कि बेहद मनोयोग से सभी योग साधक जो हैं वो निर्देशों का पालन करते हुए एक के बाद एक आसन कर रहे हैं। यहाँ मंच से निर्देश दिए जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इन योग साधकों के बीच है, सबसे बड़ी प्रेरणा यही है। और गुरु मुनेश जी, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो साधक माननीय प्रधानमंत्री जी के नज़दीक बैठकर योग कर रहे हैं, जीवन भर की एक सुखद स्मृति उनके पास है, और अब भला कोई योग से दूर कैसे हो सकता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं प्रेरित करें। और इस समय सभी योग साधकों के बीच आत्मीय भाव से माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हुए और सभी के नज़दीक से होकर गुजर रहे हैं, सबको देख रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं। और अभ्यर्थी भी हम देख रहे हैं कि बेहद उत्साहित दंडासन में इस समय सभी बैठे हैं, मेरुदंड को एकदम सीधा करके। और अब दंडासन से भद्रासन में सभी योग साधक।
2: And we can also see Neelam, and the Honorable Prime Minister is going to many enthusiasts and volunteers who have come here, and he is interacting with them, and he is just pepping them up. This shows that how much he cares for the well-being of the common people of this country. And this is, as you rightly mentioned, indeed a moment that everyone will cherish, and every person with whom the Honorable Prime Minister is interacting will carry this memory with him or with her forever in their lifetime.
0: Ji, bilkul. Aur ye jo aasan hai, इनके अगर हम लाभ की बात करें तो हर आसन का विशेष लाभ है। वैसे तो कहा जाता है कि योग में अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो सर से लेकर पांव तक हमें लाभ उसके प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर भी शरीर के विभिन्न अंगों के लिए अलग अलग आसन हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत से भी प्रतिनिधि उपस्थित हैं, आमंत्रित अतिथि उपस्थित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करते हुए, और सभी अपने अपने स्थान पर, निर्दिष्ट स्थान पर बैठकर योग कर रहे हैं निर्देशों का पालन करते हुए। अब धीरे धीरे वज्रासन की स्थिति में सभी आए हैं, एक ऐसा आसन जो हमारे पाचन तंत्र को बेहद तेज कर देता है, और कहा जाता है कि हमारे पेट को वज्र के समान मजबूत कर देता है, यानी हम जो भी खाएं वो पच जाए। और प्रतिमा जी, जहां तक मेरी जानकारी है, ये एक इकलौता आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल 100% ये ही एक ऐसा आसन है जिसे हम खाना खाने के बाद करते हैं, और ये हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एब्डोमिनल रीजन में इंक्रीज करता है, इसलिए वो डाइजेस्टिव फायर को इंक्रीज करता है। और जो हमारी पंचवायु कही गई हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, इन वायुओं में से जो समान वायु है उस पर विशेष रूप से काम करता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली इंप्रूव होता है। साथ में हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन अलाइंड होती है,

0: जी, और अब वज्रासन के बाद अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी अभ्यर्थियों के बीच से वो जा भी रहे हैं, और अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक योग साधक की उन्होंने मदद की है, उसकी जो स्थिति है उसे ठीक किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हाथों की स्थिति को ठीक किया है, और सभी को प्रेरित करते हुए स्वयं उनके बीच में यहाँ पर ये बोलना गलत नहीं होगा कि जैसे हम अपने गुरु के निर्देश का पालन करते हैं, उनके सामने योगाभ्यास करते हैं, जैसे हमारे ट्रेनर्स होते हैं या हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमें कुछ सिखाते हैं, उसी प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे परिजनों की तरह एक शिक्षक की नजर से सभी को देखते हुए और सभी को वो सही तरीके से कैसे हमें आसन करना है ये भी बताते हुए, बेहद सुंदर ये भाव, बेहद सुंदर ये दृश्य। कौशिक जी,
1: Yes, absolutely. And as we mentioned earlier also, the Honorable Prime Minister taking keen interest, especially among the teenagers and youngsters who are present here, and just guiding them how to do the asanas in the correct manner. And this is just as you rightly mentioned, how an elder of the family takes care of the youngsters. The Honorable Prime Minister is doing absolutely just that.
0: जी, और अब यहाँ about this asana, अभ्यास किया जा रहा है शशक आसन का। खरगोश की स्थिति में हम आते हैं जब हम शशक आसन करते हैं, और यहाँ पर जब भी बैक बेंडिंग के आसन किए जाते हैं उसके बाद शशक आसन करने के बाद फॉरवर्ड बेंडिंग करके तुरंत बैलेंस किया जाता है, और यही है योग की बेहद सुंदर अनुभूति कि हमें वो संतुलन सिखाता है। और अब यहाँ पर उत्तान मंडुकासन का अभ्यास किया जाएगा, सभी इस आसन की मुद्रा में आते हुए उत्तान मंडुकासन। प्रतिमा जी, इस आसन के बारे में आप हमें बताएं।
2: जैसे कि अभी आपने कहा कि शशांक आसन जो किया जाता है, शशांक आसन भी बोलते हैं उसको, उसके बाद उत्तान मंडुकासन। शशांक आसन जो है वो स्ट्रेस को रिमूव करने का काम करता है, और इस पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी हैं। उसके जस्ट बाद जो काउंटर पोस्चर किया जाता है वो बैठकर किया जाने वाला उत्तान मंडुकासन, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए, फीमेल्स के लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ में आप देख रहे हैं कि जो बॉडी अलाइनमेंट है वो ऊपर की तरफ एल्बोज का डायरेक्शन रहता है, तो ये थोरेसिक कैविटी पर भी काम करता है, साथ में मन को भी शांत करता है, और हमारे घुटनों के लिए और जो बटक्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं, साथ में मन को भी शांत करने वाला आसन है ये।
0: जी, और अगर हम अपने शरीर को थोड़ा समझने का प्रयास करें तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी तनाव होता है, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं जो हमारे लिए जटिल है, हमारे लिए कठिन है, तो हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में स्ट्रेस जो है वो इकट्ठा हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में किसी ना किसी बीमारी के रूप में वो सामने आता है। तो योग एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरे शरीर का तनाव जो है वो दूर किया जाता है, और साथ ही मानसिक तनाव भी दूर किया जाता है।
1: And now I think the enthusiasts are performing Vakrasan.
0: So जी बिल्कुल, वक्र यानी तिरछा, तो थोड़े टेढ़े होकर हम ये आसन करते हैं जो हमें बिल्कुल सीधा कर देता है। प्रतिमा जी,
2: बिल्कुल सही है कि हमें सीधा कर देता है, क्योंकि इस आसन को जो हमारा डायबिटीज है, शुगर जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल आसन है। ये मोड़ कर किए जाने वाले आसनों में से आप देखेंगे तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से किया जाता है ये, और हमारे जो पैंक्रियाज है और लीवर दोनों के लिए पर प्रेशर क्रिएट करता है, तो ये पूरे हमारे जितने भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद है, इसीलिए इसको डायबिटीज वालों के लिए रामबाण कहा जाता है। साथ में ये आंखों के लिए भी बेनिफिशियल है, गर्दन भी इसमें ट्विस्ट होती है, तो पूरी स्पाइन की ट्विस्टिंग करता है ये आसन।
0: और महिलाओं का बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है कि हमारा कटी प्रदेश जो है, हाँ, कमर वाला हिस्सा जो है वो लचीला रहे, पतला रहे, तो ये आसन उसमें बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि हमें कॉलेज में बहुत करवाया गया ये आसन,
2: और साइड फैट को भी रिड्यूस करता है
0: जी। और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हमने कहा कि एक शिक्षक की नज़र से सभी को देखते हुए और परखते हुए, यहाँ पर एक अभ्यर्थी जो है, योग साधक जो है, उनसे जब ठीक से आसन नहीं हुआ तो
1: जस्ट गाइडिंग देम टू डू
0: उन्हें बिल्कुल गाइड कर रहे हैं
1: परफेक्ट मैनर एंड

0: Now, Pratimaji, about this particular asana, if you can share with our listeners.
1: मकरासन ये पेट कर किए जाने वाले आसनों का शिथिलीकरण आसन है और ये इसमें देखेंगे आप जब हम जनरली पीठ के बल लेटते हैं इसमें पेट के बल लेटना होता है और ये हमारी पूरी जो स्पाइन अभी तक किए जाने वाले आसनों में जो स्ट्रेच हुई है उसके बेनिफिट को बढ़ाने के लिए किया जाने वाला आसन है और साथ में जो हमारा लेफ्ट और राइट बॉडी जो पार्ट्स हैं और लोअर लिम और अपर लिम है इसमें आप देखेंगे हील्स अंदर की तरफ हैं टोज बाहर की तरफ हैं तो ये पूरी बॉडी को एक तरह से ट्विस्ट भी कर रहा है और अलाइन भी कर रहा है
2: जी।
1: तो इस आसन के और भी बहुत बेनिफिट्स हैं साथ में ये जो सर्वाइकल जिन लोगों को होता है उनके लिए ये आसन बहुत फायदेमंद होता है साथ में जो तनाव मुक्त है वो भी करता है ये
2: जी। और बेहद खूबसूरत बात यह है कि हम जिन आसनों के नाम ले रहे हैं अर्ध उष्ट्रासन हो या मकर आसन हो जो अभी हो रहा है ये हम अपने जीव जंतुओं से प्रेरणा लेते हुए ये आसन हमने अपनाए हैं। अगर हम वज्रासन की बात करें तो हमने पत्थर से भी प्रेरणा ली है। हम बात कर रहे हैं वृक्षासन की ताड़ासन की तो प्रकृति से प्रेरणा ली है। तो किस तरह से योग ने समाहित किया है अपने आप में पूरे ब्रह्मांड को और प्रेरित किया है हमें कि हम जिसमें जो अच्छाई है उसे लेकर उसका अनुसरण करके स्वयं को बेहतर करते चलें। मकर आसन मकर यानी मगरमच्छ जिस तरह स्थिति में होता है बिल्कुल सीधा उस तरह की स्थिति में रहते हुए हम आसन का अभ्यास करते हैं और अब हम वो आसन कर रहे हैं जिसका नाम है भुजंगासन। यहां पर योग साधक भुजंगासन कर रहे हैं। भुजंग यानी सर्प से तो वैसे ही डरा जाता है लेकिन हमने उससे भी सीख लिया है कि स्वयं को किस तरह से लचीला रखना है। इसके लाभ डॉक्टर प्रतिमा
1: भुजंगासन और सर्पासन दो नाम सुने होंगे। ये भुजंगासन भुजंग मतलब कोबरा पोज और ये हमारे स्पेशली जो स्पाइन है उस पर काम करता है और ये कुंडलिनी जागरण से संबंधित आसन है जो ग्रंथों में कहा गया है। साथ ही जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल आसन है। स्पाइन भी फ्लेक्सिबल करता है शोल्डर्स को भी स्ट्रेंथन करता है बाइसेप्स ट्राइसेप्स मसल्स को पर भी काम होता है।
2: जी।
1: ये कहा जाए कि ये पूरे शरीर पर काम करता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सर्वाइकल वालों के लिए भी आसन बेनिफिशियल कहा जाता है और सर्पासन अलग है भुजंगासन अलग है। यहां पर भुजंगासन किया गया है क्योंकि भुजंगासन के बहुत सारे शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभ हैं।
2: जी गुरु मुनेश सिन्हा जी मैं आपसे जानना चाहूँगी हम योग के लाभों के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि इस तरह के आसन है जिन्हें हर उम्र के साधक आसानी से कर रही हैं। आपका क्या विचार है क्या योग को हमारी स्कूली शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए जिसमें आध्यात्मिक पक्ष भी शामिल हो?
3: ज़रूर ज़रूर एक्चुअली जब तक हम अपने रूट से नहीं जुड़ेंगे ना तब तक हमारी पूर्ण विकास नहीं हो सकती। अगर हम बच्चे से ही बहुत छोटे कॉन्शसनेस से ही जब हम योग बताना शुरू करते हैं योग से उनको जोड़ते हैं तो हम पूरी पृथ्वी पे एक अच्छे नागरिक को पाते हैं एक अच्छे इंसान को बनाते हैं और इससे बहुत पूरी पृथ्वी का भला होने वाला है पूरी जगत का भला होने वाला है। और मैं तो ये बहुत खुश हूँ कि अपने प्रधानमंत्री जी की जो वो आज एक इंस्ट्रक्टर की तरह हर रो में घूम घूम के सबके पॉस्चर्स ठीक कर रहे हैं इससे यही योग की जो नेचर है योग का जो नेचर लव है यही दिखाता है जॉय ऑफ गिविंग है यही दिखाता है। आज वो अपने व्यवहार से अपने एक्शन से जॉय ऑफ गिविंग सेल्फ लव और लव फॉर ऑल वो दिखा रहे हैं। तो ये मतलब इतनी रोमांचक जगह है इतनी इतनी अच्छी हो रही है मतलब कह नहीं सकता हूँ मैं बहुत ही सुंदर
2: जी। और यहाँ पर हम अद्भुत अनुशासन भी देख रहे हैं जो कि योग भी हमें सिखाता है प्राणों के साथ जुड़ना और सेतु बंध आसन का यहाँ पर अभ्यास किया जा रहा है। सेतु यानी पुल तो शरीर से पुल जैसी आकृति बनाना सेतु बंध आसन इसके लाभ हमें डॉक्टर प्रतिमा बताएंगी।
1: ये आसन जो है वो जैसा कि नाम है वैसा काम
2: जी
1: बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है। साथ में ये जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है आप देख रहे हैं इसमें स्पाइन ऊपर की तरफ जाती है और पेट ऊपर की तरफ जाता है तो स्पाइन पर भी काम करता है एब्डोमेन पर भी काम करता है शोल्डर्स पर भी काम करता है थाई मसल्स पर भी काम करता है
2: जी।
1: और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट

0: आसन है हमारे थेरेपी एस्पेक्ट से, और इसको जब किया जाता है तो हमारी काफ मसल्स पर भी, जो गैस्ट्रोनियस मसल्स होती हैं उनके उन पर भी काम होता है सेतु बंधासन।
1: जी, सेतु बंधासन। और हम यहाँ देख रहे हैं कि लगातार अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार आसन सभी कर रहे हैं। योग के बारे में एक अच्छी बात ये भी है कि जितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, बढ़ती उम्र के साथ हमें कहा जाता है कि या तो वो कम कर दीजिए या ध्यान से कीजिए, लेकिन योग एक इस तरह की क्रिया है शारीरिक, कि अगर हम लगातार करते रहते हैं तो बढ़ती उम्र, एक तो उसका बढ़ना धीमा हो जाता है, यानी एजिंग के जो असर हैं वो धीरे धीरे आते हैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम सहज भाव से वो आसन कर पाते हैं। और यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं अर्धहल आसन शायद यहाँ पर किया जा रहा है, और हल जैसी आकृति शरीर से बनाते हैं तो पांव पीछे की तरफ ले जाकर, सर के पीछे की तरफ ले जाकर जमीन को छूते हैं, लेकिन ये उसका आधा हिस्सा ही किया जा रहा है सभी, ताकि सहज भाव से कर सके। अर्धहल आसन, पांव सीधे किए गए जमीन पर लेटकर, और अब पवन मुक्त आसन का अभ्यास सभी कर रहे हैं। शरीर की वो वायु जो हमें कष्ट दे सकती है उससे शरीर को मुक्ति देना, पवन मुक्त आसन। डॉक्टर प्रतिमा,
0: पवन मुक्त आसन जो है आप देख रहे हैं कि लेटकर सुपाइन पोस्चर है ये,
1: जी
0: और पवन मुक्त जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये पवन मुक्त आसन समूह के आसनों में से किया जाने वाला आसन है। और क्यों? क्योंकि शरीर में 80 प्रकार के जो रोग हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं, वायु
1: जी
0: विकार से संबंधित होते हैं। तो ये हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की वायु हैं उन सभी पर काम करता है, इसीलिए इसको पवन मुक्तासन नाम दिया गया है। वायु विकार के कारण हमारा हार्ट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन
1: जी
0: सारे जितने भी हमारे सिस्टम हैं उन सभी सिस्टम से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वायु के कारण होती हैं। तो ये पवन मुक्तासन ग्रुप का किए जाने वाला आसन है पवन मुक्तासन, जिसके कि वायु को व्यवस्थित करने का काम ये हमारे शरीर में करता है।
1: जी गुरु मुनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपका क्योंकि ऐसा अनुभव रहा है कि आप हमारे सशस्त्र बलों को भी और अर्धसैन्य बलों को भी योगाभ्यास करवाते रहे हैं, मेडिटेशन की क्लासेस आप लेते हैं, मुझे आप ये बताएं कि किस प्रकार से हमारा मेडिटेशन जो है, ध्यान जो है, वो मदद करता है हमारी।
2: एक्चुअली क्या है, योगा में उसकी जो डेफिनेशन है, योगा चित्त वृत्ति निरोध है।
1: जी
2: हमारी चित्त की वृत्तियाँ अगर जब तक कंट्रोल नहीं होती हैं तब तक हम अपने जीवन को ढंग से जी नहीं पाते हैं। आप
1: जी
2: कितना भी सशक्त हो जाएं, अगर आपकी वृत्तियाँ ही आपके अंडर कंट्रोल नहीं हैं, आपकी वृत्तियाँ ही आपको हर वक्त ऐसे कार्यों में लगाती हैं जो नहीं करना चाहिए, आपकी वृत्तियों से आपका जीवन पूरा चारों तरफ बिखरा बिखर जाता है। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आज योग करके अपनी वृत्तियों को कंट्रोल करें, इसीलिए आसन को सीट ऑफ अवेयरनेस कहा गया है कि हमारी वृत्तियों को कैसे कंट्रोल किया जाए। और ख़ास करके मेडिटेशन और ख़ास करके योग और ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, वो दुनिया के लिए अपने आप को प्रूफ कर रहे हैं, हमारे जितने सैनिक हैं, हमारे भारत के जितने फोर्स हैं, जितने भी आर्म फोर्स में काम कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक बहुत स्ट्रेस होता है, वो घर से बाहर होते हैं, तो उनके लिए योग करना, ध्यान करना, अपनी वृत्तियों पे काम करना, सो दैट अपने देश की रक्षा, अपनी देश की सुरक्षा उनका 100% वो डाल पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है कि ध्यान करके अपनी चित्त को कंट्रोल किया जाए, उसमें समाया जाए और उसको उसी की ज़िंदगी जिया जाए, है ना। योग में सबसे पहली बात मैंने देखा है जीवन में, जिनकी चित्त के कंट्रोल नहीं है, जो जो अपने कॉन्शसनेस से कनेक्टेड नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम।
3: Dr. Pratima, now I think we are seeing the Kapalbhati, so you can throw some light on this particular aspect.
0: कपालभाति षट क्रियाओं में से एक क्रिया है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कपाल भाति। कपाल मतलब मस्तिष्क प्रदेश, ब्रेन रीजन, और भाति मतलब वो जो आपने लोहार देखा होगा उसको जो धोकनी चलाता है, उस तरह से हमें फोर्सफुली एक्टिव एक्सेलेशन और पैसिव इन्हीलेशन कपाल भाति में करना होता है। और जो हमारे ग्रंथ हैं वो इसको विशेष रूप से ये कहते हैं कि कफ दोष नाशनी, हमारे शरीर में जो कफ विकार है

0: वो इसको करने से संतुलित होता है। और
1: जी
0: योग एज सच जितने भी हमारे विकार हैं, बात विकार हो, कफ से संबंधित हो, पित्त से संबंधित हो, जो भी बीमारियां हैं वो इन्हीं के असंतुलन के कारण होती हैं, और उन्हीं को संतुलन करने का काम योग करता है। तो
1: जी
0: कपालभाति मस्तिष्क को चमकाने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छे से काम करेगा तो आपके सभी काम अच्छे होंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना नहीं भूलूंगी कि जो योग है अपने आप में, वो मैंने जो समझा वो यूथफुलनेस ऑर्गेनाइजिंग ऑल द सिस्टम ऑफ द बॉडी, गारंटी फॉर हेल्थ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ए स्टैंड फॉर एनालिसिस फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। तो
1: जी
0: योग करने से हमारा जो मस्तिष्क है वो तो अच्छे से काम करेगा ही। जब वो अच्छे से काम करेगा तो आपका एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा, और जब एटीट्यूड और बिहेवियर अच्छा होगा तो सोसाइटी में हम इंटरेक्ट पॉजिटिव वे में करेंगे।
1: जी और अब यहाँ पर नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है। योग साधक जो हैं वो पद्मासन में बैठे हैं, ज्ञान मुद्रा में हाथ हैं, एक हाथ से नाड़ी शोधन प्रक्रिया आप कर रहे हैं, और कुछ साधक जो पद्मासन में नहीं बैठ सकते वो सहज आसन में, सुखासन में बैठे हैं और नाड़ी शोधन किया जा रहा है। तो नाड़ियों की शुद्धि इससे होती है डॉक्टर प्रतिमा?
0: हाँ, 72,000 नाड़ियों के विषय में योग ग्रंथों में कहा गया है। उन
1: जी
0: सभी नाड़ियों की शुद्धि इससे प्राणायाम से होती है।
1: जी
0: प्राण और आयाम, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम प्राण ऊर्जा के कारण ही संपूर्ण जीवन की क्रियाकलाप संपन्न कर पाते हैं। तो ये प्राणों को भी लंबा करता है, आयाम मीन्स लॉन्ग करना, लंबा
1: जी
0: करना। और ऐसा कहते हैं कि हम गिनी चुनी श्वासें ईश्वर से लेकर आए हैं, तो हम कॉन्शियसली अपनी लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। और जैसा कि ग्रंथ कहते हैं, प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा।
1: जी
0: मतलब इसका यह है कि प्राणायाम अगर सही ढंग से किया जाए तो सभी रोगों का नाश करता है। लेकिन यहाँ पर योग शब्द है, अयुक्ताभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भवा, मतलब यदि गलत ढंग से योग अभ्यास या प्राणायाम का अभ्यास किया जाए तो सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। इसीलिए प्राणायाम को हमें, या योग अभ्यास को हमें, बहुत सावधानी पूर्वक कहा गया है। ये भी
1: जी
0: कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम च पूरयेत। मतलब धीरे धीरे श्वास को लेना है, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना है। और प्राणायाम जैसे कि कई प्रकार के हैं।
1: जी और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अब शीतली प्राणायाम का अभ्यास किया जा रहा है, गर्मी में भी शीतलता का आभास देने वाला, जो कि कहा जाता है कि स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन को ग्लोइंग कर देता है। और चेहरे पर अगर किसी भी प्रकार के, किशोर अवस्था में आमतौर पर किशोर जो है वो मुहासे और पिंपल्स का सामना करते हैं, तो उन्हें भी ठीक करता है। डॉक्टर प्रतिमा
0: जैसा कि आपने कहा कि शीतलता देने वाला
1: जी
0: प्राणायाम है, निश्चित रूप से ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है, साथ ही भूख और प्यास पर भी नियंत्रण लाता है ये। और जो हमारी अग्नि है, वात सॉरी पित्त जो है हमारा,
1: जी
0: उसको व्यवस्थित करने का काम करता है। और अगर पित्त सही होगा, आग सही जल रही होगी, तो निश्चित रूप से चमक आएगी ही,
1: जी जठराग्नि को पूरी तरह से नियंत्रित
0: व्यवस्थित
1: कर
0: करता
1: देता है।
0: है।
1: जी और अब भ्रामरी प्राणायाम किया जा रहा है,
0: भ्रामरी प्राणायाम के तो इतने फायदे हैं जिसकी की कोई हद। क्यों? क्योंकि ये हमिंग बी जैसे आवाज निकालना होता है इसमें, और षण्मुखी मुद्रा में किया जाने वाला अभ्यास है। डिफरेंट वे में भी किया जा सकता है ये।
1: जी
0: और इसमें आप देख रहे हैं कि आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और बाकी की जो फिंगर्स हैं वो अलग अलग मर्म स्थानों पर रखी हुई हैं। इसमें सांस लेते हैं और आवाज के साथ सांस को छोड़ते हैं। उस समय हमारे जो आवाज निकलती है वो गले से निकलती है, और जो वाइब्रेशंस जो होते हैं वो हमारे ब्रेन से जो सी हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं, चाहे वो सेरोटोनिन हो, डोपामाइन हो, इनका सीक्रेशन प्रॉपर करता है,
1: जी
0: ऑक्सीटोसिन हो, तो ये ब्रेन और ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत फायदा करता है। और जैसा कि योग है वो पेट और पीठ
1: जी
0: दोनों पर काम करके ब्रेन पर अल्टीमेटली काम करता है, तो
1: जी
0: इसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन हाँ, इसको किसे नहीं करना चाहिए या लाउडर पिच में इसको नहीं करना चाहिए, वो हार्मफुल हो सकता है। जो
1: जी
0: हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनको बहुत लाउडर पिच पर नहीं करना चाहिए।
1: यानी शरीर के जो अंदर

0: सॉफ्ट टिश्यूज है, कंपन से हम उन्हें एक्टिव करते हैं और इस तरह से उन्हें मजबूत करते हैं। और ये हाथ इसलिए रखे जाते हैं द्वार पर कि जो कंपन से जो हवा है वो बाहर नहीं निकले, शरीर के अंदर जब वो रहेगी तो हमारे टिश्यूज को हेल्दी करेगी। जी, भ्रमर जैसी आवाज हम इसमें
1: और बाहर से कनेक्शन कट भी करना होता है ताकि हम अपने आप में, योग अपने आप में जुड़ना सिखाता है, तो हम अपने आप से जुड़ पाए,
0: स्वयं से ही हम जुड़ते हैं, अपने भीतर हम जाते हैं। जी,
2: नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द आसनास, दैट इज ध्यान और मेडिटेशन, विच इज अ टाइम फॉर आवर सेल्फ असेसमेंट एंड becoming one with the universe. Dr. Pratima,
1: meditation is not just meditation, it is medication of body as well as mind.
0: जी,
1: क्योंकि मैंने कुछ ध्यान के जो लोग हैं उनको से जुड़ी हुई हूँ, देखा है मैंने कि ध्यान से उन्होंने अपनी बीमारियों को ठीक कर लिया। तो मेडिटेशन केवल मेडिटेशन नहीं है, बैठ गए आंख बंद करके और मन कहीं और भटक रहा है, वो नहीं है। मेडिटेशन है श्वास को देखना, जो प्राण का आवागमन है हमारे शरीर में जो हो रहा है उसको देखना, उससे अलाइन होना। तो इसीलिए ये कई प्रकार के रोगों को भी ठीक करता है।
0: जी, और गुरु मुनेश सेना जी, आप तो आध्यात्मिक जगत से जुड़े हैं, आप ध्यान करवाते हैं और स्वयं भी ध्यान में रहे हैं, तो अपना अनुभव आप हमारे साथ साझा करें, किस प्रकार की दिव्य अनुभूति ध्यान से हमें हो सकती है।
3: मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर आपके जीवन में कुछ काम नहीं बन रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है आप कहाँ आना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ अगर स्टक हो गई है, आप बिल्कुल जैसे मानो कि अंधेरी कोठरी में आपकी जीवन बिल्कुल सिमट गई है, आपको लग रहा पता नहीं चल रहा आप क्या करें, आप ध्यान करना शुरू करें। मैंने अपने जीवन में न जाने हजारों लोगों को ध्यान करवाया है और कई लोग ध्यान की सिर्फ वो शरीर में ही नहीं, आपके पूरे जीवन के हर क्षेत्र के रास्ते को खोल देता है। सारी अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन जो भी वेव्स में अभी तरंगित हैं, द मोमेंट आप ध्यान करते हो, द मोमेंट आप साइलेंस में जाते हो, द मोमेंट आप अव्यक्त स्वरूप में जाते हो, इमीडिएटली आपका सोर्स बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है और आपके लिए बनी जो भी इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज पूरी दुनिया में है आप स्वयं उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। सारी चीज़ें, मैंने लाइफ बताऊँ कि मेरी स्पाइन बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गई थी, वो मैं किसी की हील कर रहा था और वो एम्स के डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि बिना ऑपरेशन के आप ठीक नहीं हो सकते, आपको ऑपरेशन कराना ही कराना होगा। मैंने सिर्फ ध्यान करके उस स्पॉट पे एक प्रकाशित सूर्य को देखा, प्रकाशित शिवलिंग को देखा और विद इन 3 मंथ्स मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तो मैं ध्यान के, जैसा कि अभी मैम कह रही थी कि ध्यान से आप अपने पूरे जीवन का उत्तर पा सकते हो, आंसर पा सकते हो। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए ना, आप सिर्फ ध्यान करना शुरू करो, आपकी पूरे जीवन की क्वालिटी बदल जाएगी, आपका सोचने का ढंग चेंज हो जाएगा, आप रिएक्टिव कम हो जाओगे, आप रिस्पॉन्सिव ज़्यादा हो जाओगे। और सबसे बड़ी बात है कि ध्यान आपके परम स्वरूप से जोड़ता है और जो परम स्वरूप है ना, वही आदि स्वरूप हैं, वही शिव हैं, वही अनंत हैं, वही चैतन्य हैं।
0: जी, आदि योगी से हमें जोड़ता है हमारा ध्यान। और यहाँ पर अब प्रार्थना,
4: शांति
0: मंत्र का पाठ किया जा रहा है।
4: दोनों हथेलियों को घर्षण कीजिए, कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे और आंखों
0: और
4: पर,
0: जैसा कि हमने कहा कि हमारी संस्कृति जो है
4: और धीरे
0: इसकी
4: धीरे
0: ये अद्भुत बात है, ये विशेषता है कि हम विश्व शांति की कामना करते हैं, हम प्रकृति की शांति की कामना करते हैं। और मैं गुरुजी आपकी बात जब सुन रही थी तो ये भाव मन में आया कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, हम नेचर के साथ अलाइनमेंट की बात करते हैं, हम पंच तत्वों की बात करते हैं और साथ ही हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। तो आपने जैसा कि बताया कि ध्यान हमें खुद से जोड़ता है और कहीं ना कहीं ध्यान में मैं ये सब पा रही हूँ जो आपने कहा कि हमारे बहुत सारे जो अनसुलझे सवाल होते हैं उनके जवाब हमें अपने आप मिलने लगते हैं और आप एक नेट की तरह हो जाते हैं। आपने कहा कि विश्व में जो कुछ भी हमारे लिए निर्धारित है वो स्वयं हम तक पहुंचने लगता है, तो बहुत ही अद्भुत बात आपने ये कही ध्यान से जुड़ी हुई।
2: एंड द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज नाउ मेकिंग हिज वे टुवर्ड्स द एग्जिट ऑफ द रेड रोड एंड एवरीवन हु वर प्रेजेंट हियर एंड हु वर लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ द 12th International Day of Yoga really felt touched when the Prime Minister himself went to every

0: enthusiast and guided them in doing the asanas in the correct manner. This was indeed a great celebration at the iconic Red Road in Kolkata, where more than 3 lakh people had assembled to perform the yogasanas and were led by the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi.
1: Ji, jal, thal, nabh, sabhi yog mein honge. Hum jante hain ki Bharat mein to suryodaya jab ho raha hai, to humne namaskar kiya hai aur saath hi yoga abhyas kiya hai. Duniya ke aise bahut sare desh hain jin mein jahan jahan Bharatiya dutawas hain, unki or se vishesh ayojan honge. Aur ab kyunki bahut sare desh duniya ke yog ko apna चुके हैं, पहले से योग प्रचलित रहा है, कभी हम इसे जिम में होता देखते हैं, कभी वेलनेस सेंटर में देखते हैं, और इंजर्ड होने के बाद फिजियोथेरेपिस्ट हमें जिस तरह की एक्सरसाइज बताता है वो हमारे योगासनों से ही प्रेरित होती है. तो योग हमारे जीवन का हिस्सा रहा है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया मान चुकी है कि भारत ने दुनिया को योग दिया है, और आधिकारिक तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए प्रयास किए और यूएन यूनेस्को ने इसे माना कि भारत का ये उपहार विश्व के लिए अनूठा है और आज संघर्षों से भरी हुई इस दुनिया में बेहद जरूरी भी है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि योग को हम केवल एक दिन का उत्सव ना बनाएं, बल्कि इसे अपनी दिनचर्या के साथ जोड़ें.
0: योगा 365, that is what the honorable prime minister had mentioned, and we would also like to inform our listeners that as the Honorable Prime Minister has mentioned, that the gift of India was just not only Lord Buddha or peace, but also yoga. And this yoga has been practiced by Indians since times immemorial. It is as old as our civilization, which is more than 5,000 years old. And today, as Neelam rightly mentioned, that the entire world has accepted yoga, has embraced yoga, as it promotes not only healthy lifestyle, but also healthy mental lifestyle. It brings about a total balance in healthy living. And Guru Munesh Sinhaji, you were mentioning about the importance of meditation. So how do a layperson begin to meditate, if you can inform our audience?
2: Yes, सबसे पहले मैं जो लोग ध्यान करना चाहते हैं या ध्यान की दुनिया में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में वो ना जाएं, सिर्फ स्टैचू बन के 10 मिनट रोज एक महीने की प्रैक्टिस करें. एक समय चुनें, 10 मिनट या 15 मिनट वो सिर्फ स्टैचू हो जाएं. जैसे बच्चे में हम लोग स्टैचू गेम खेलते थे, चलते चलते अचानक कोई स्टैचू चिल्लाता था और हम जिस पोजीशन में होते थे उसी पोजीशन में रुक जाते थे. अपने जीवन में भी आप अपनी किसी एक फेवरेट जगह पे, घर के किसी कोने में आप बैठें और 15 मिनट के लिए सिर्फ स्टैचू हो जाएं, और स्टैचू होने के बाद आपके मन की मन, आपकी आंखों की आंख जो आपके अंदर है, वो बहुत सारी वृत्तियों को देखेंगी. कई सारे आप पिक्चर्स देख रहे हैं, इमेजिनेशन देख रहे हैं, आप कपड़े देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, ये सारी आपके मनस्पटल के इसमें चलती चली जाती हैं. आपको सिर्फ उसको देखते रहना है और ये कहना है कि आई एम ओनली द ऑब्जर्वर ऑफ दिस. मैं एक विटनेसर हूँ जो हमारे मन के पटल पे चल रहे सारे पिक्चर्स को मात्र देखने वाला हूँ. मैं एक दृष्टा हूँ. द मोमेंट आप दृष्टा के भाव में जाते हैं तो आपका आपके मन से कनेक्शन दूर हो जाता है.
1: जी.
2: आप शरीर और मन से अलग एक प्योर कॉन्शसनेस हो जाते हैं, जहाँ पे आपका शरीर और मन जन्म लेता है, पलता है और फिर उसी कॉन्शसनेस में विलय हो जाता है. जैसे ही आप इस अस्तित्व में जाते हैं तो समझने वाला और समझ एक हो जाता है. फिर पता चला शरीर और मन जो अभी विचार देख रहे थे, विचार को देखने वाला, ये सारी चीज़ एक हो जाती है. फिर थोड़े ही टाइम में आपके विचार आने खत्म होने शुरू हो जाते हैं और सिर्फ बचता है तो एक प्योर कॉन्शसनेस, जो सिर्फ कहते हैं बीइंग होने का एहसास. इसीलिए ह्यूमन बीइंग कहते हैं, ह्यूमन डूइंग नहीं कहते. ह्यूमन जितने भी इस पूरी पृथ्वी पे, जगत पे, जितनी भी सृष्टि में लोग हैं, उनको ह्यूमन बीइंग कहा गया है. इसीलिए

0: कि वो अपने अस्तित्व के उस सोर्स से कनेक्ट हो जाएं। द मोमेंट उस सोर्स से वो कनेक्ट होते हैं तो वो जाने अनजाने में इस पूरी ब्रह्मांड के अनंत के एक पार्ट बन जाते हैं और वो अनंत फिर उनके पूरे अस्तित्व में डोमिनेट करने लगता है। शरीर की जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वर्ल्डी लाइफ को सिर्फ और सिर्फ 25% ऑपरेट करने के लिए वो रहता है, बाकी उसके पूरे अस्तित्व में 75% उस प्योर कॉन्शसनेस की रेडिएशन, उस प्योर कॉन्शसनेस की लाइट रेडिएट हो जाती है। इसलिए ध्यान तो मैं कहूँगा कि हर आदमी को, हर इंसान को, अगर वो इस पूरी जगत का भला चाहते हैं, इस पूरे विश्व का भला चाहते हैं, तो ध्यान करें, इससे हमारा कलेक्टिव कॉन्शसनेस रेज होगा और कलेक्टिव कॉन्शसनेस से हमारी प्रकृति रेज होंगी। हमारा जो आज ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म और ये सारी चीज़ें हम विश्व में देख रहे हैं, ये सारी चीज़ हो ही रही है कि हम अपने से दूर चले गए हैं। अगर इस प्रयास पे जो आज प्रधानमंत्री जी ने 21 जून का ये दिन इतना सुंदर चुना है कि पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस एक हो रही हैं, और ये पूरे विश्व की कलेक्टिव कॉन्शसनेस जब एक होती हैं तो प्रकृति की भी कॉन्शसनेस एक होती हैं, क्योंकि हम और प्रकृति अलग नहीं है, जो हम हैं वही प्रकृति है, जो प्रकृति है वही हम हैं।
1: जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और ध्यान के बारे में हमने सुना है कि जब ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सिर्फ एक यंत्र मात्र हैं और प्रकृति प्राण के रूप में हम में बह रही है, हमारे थ्रू बह रही है। और ये भी हमने कहीं पढ़ा कि हम सिर्फ कॉन्शियस माइंड से चलते हैं लेकिन ध्यान हमारे सबकॉन्शियस को भी जागृत करता है, और असीम जो ताकत हमारी है किसी भी कार्य को करने की, समझने की, वो हमें देता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पर मुझे याद आ रही हैं। स्वयं से स्वयं की मुलाकात है योग, बिखरे हुए अंतस की नई शुरुआत है योग, तन को जो साधे, मन को जो शांत करे, मानवता के कल्याण की पावन सौगात है योग, ऋषियों की वो खोज जो वेदों से आई है, आज विश्व ने इसकी शक्ति मानी, अपनी श्रद्धा दिखाई है।
2: Yes, and as Guru Munish Sinhaji mentioned, and as you also mentioned, Neelamji, that today we saw the Honorable Prime Minister lead the nation in performing yogasana at the Red Road, Kolkata. But at the same time also, yoga was just not restricted onto the land. The Indian Navy, the Indian Coast Guard and other units also performed yogasanas aboard the naval ships and Coast Guard ships, and also adjacent to Red Road, there flows the river Ganga, which is also known as Hooghly, and on 500 boats, yoga enthusiasts performed yogasanas there, and in the wonderful mangrove of Sundarbans also, people performed yogasanas on board their boats and yachts. And in the mighty Himalayas, the men who guard us are vanguards of the borders. The Indian Army personnel, the ITBP personnel and others also performed yogasanas there. And also our border security force personnel performed yogasana on the Thar Desert. So this is what the uniqueness of International Day of Yoga is all about, that brings together all Indians across all walks of life to perform this particular yogasana, which is our mantra for healthy aging and to stay fit both physically and mentally.
1: जी, जैसा कि हमने कहा कि जल, थल, नभ सभी आज योग में होंगे, और अलग अलग जगह पर विभिन्न विद्यालयों में, कार्यालयों में, संस्थानों में योग के विशेष आयोजन होते रहे हैं। इन दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग 365 का उल्लेख किया, योग पार्क जो हैं वो डेडिकेटेड किए गए हैं, योग को समर्पित किए गए हैं। 100 दिनों के लिए ऑनलाइन माध्यम से योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें दुनिया भर से लोग जुड़े। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया कि 130 देशों से प्रतिभागी इसमें शामिल हुए। और हम बताना चाहेंगे अपने श्रोताओं को कि 14 जून को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। देशव्यापी योग सत्र में एक साथ 4 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है, और ये ताकत है हमारी संस्कृति की, हमारी इस सभ्यता की, हमारे देश की, कि हम एक साथ एक भाव से जहां खड़े हो जाते हैं, हमारे पास संख्या बल भी इतना है, जनमानस का जो आत्मिक बल है वो भी इतना है कि जब हम एक साथ खड़े हो जाते हैं तो हम

वर्ल्ड रिकॉर्ड उस समय बना लेते हैं। और हम अक्सर देखते रहे हैं कि अलग अलग जो आयोजन है उनके जो स्मृति है वो संजो कर रखी जाती है। तो इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में डाक टिकट जारी किए गए हैं और कोलकाता तो आज एक विशेष रंग में रंगा हुआ है। स्थान स्थान पर योगाभ्यास वाले होर्डिंग्स हैं, बैनर्स हैं, स्टैंडीज लगे हैं। आज मेट्रो ने भी सुबह 4 बजे से पूरी रफ्तार से दौड़ लगाकर योग साधकों की सेवा की है। और जैसा कि आपने कहा कौशिक जी कि हमारी नदियां जो हैं उन पर जो नाव सजती रहती हैं उन्होंने भी आज एक अलग रूप दर्शाया है कि उन पर योगाभ्यास किया गया है। और पूरे देश में विशिष्ट 100 स्थानों पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जीवन

0: पर बड़ी संख्या में सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि जब मैं ऑफिस आ रही थी तो इंडिया गेट पर मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर योग साधक जुटे थे और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने एरियाज में विभिन्न माध्यमों से योग से जुड़ रहे हैं। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी जीवन शैली का हिस्सा है, क्योंकि योग जो है वो कोई आयोजन नहीं है, सभी का ये एक आत्मिक पल बन गया है, सभी की एक निजी उपलब्धि है आज के इस आयोजन में शामिल होना। विश्व भर में 2500 से ज़्यादा स्थानों पर उत्सव के रूप में आज योग किया जाएगा और हम उन सभी विदेशियों को भी नमन करते हैं जो हमारे इस गर्व में शामिल हैं। आज पश्चिम बंगाल में कोलकाता में रेड रोड पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस बार की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग। आपने आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से ये प्रसारण सुना। मार्गदर्शन रहा मनीषा जैन का, प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार वत्स। मैं नीलम मलकानी अपने साथी कॉमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ और साथ ही हमारे दो विशेषज्ञ जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए, डॉक्टर प्रतिमा योग मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से आप वहां पर सलाहकार, डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ और परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनेश सिन्हा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। सभी को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस विशेष प्रसारण से अब अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: अभी आप रेड रोड कोलकाता पश्चिम बंगाल से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित हुए सामूहिक योग प्रदर्शन का आंखों देखा हाल सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। कार्यक्रम में आमंत्रित विशेषज्ञ थे परम प्राण योग संस्थान के संस्थापक गुरु मुनीश सिन्हा और मुरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में सलाहकार डॉक्टर प्रतिमा वशिष्ठ। ये प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
3: आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी मुताबक सवेर के 8 बज रहे हैं। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 बजे मॉर्निंग न्यूज़ ते 8:30 बजे पंजाबी च खबरां सुनाईयां जाणगियां।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
5: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
5: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही

0: ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुई। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ मनाया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग, योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही

0: उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम्, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात

0: नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
1: धन्यवाद भरत। एनटीए ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट यूजी पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12 लाख करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है, मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस। हिंदुस्तान की खबर है, पत्र लिखता है, दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
0: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने हुरमुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: निर्माण करता है, तो ये सब तो ज़्यादा जरूरी है।
1: सो बहुत बहुत शुक्रिया योगी
0: थैंक यू,
1: कुमार जी, तुसी
0: थैंक
1: आज
0: यू,
1: साडे नाल स्टूडियो च आए जुड़े
0: थैंक
1: और इन्नी
0: यू,
1: खास जानकारी साझी कीती दोस्तां दे नाल, सो बहुत बहुत
0: थैंक यू। ये
1: शुक्रिया
0: मेरा सौभाग्य है, तुसी ने मैनू इत्थे बुलाया,
1: जी जी जी
0: ते अज ये सारी विचार सांझा करन दा मैनू मौका मिलिया।
1: जी
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत
1: जी
0: बहुत शुक्रिया।
2: योग दिवस दे संबंध विच सुन रहे सी योग गुरु प्रदीप नाल कीती हुई गलबात, गलबात सांझी कीती सी रिचा उप्पल होरां ने। ते इस दे नाल ही ज्ञान विज्ञान दा ए अंक हुण समाप्त हुंदा है। आग्या चाहांगे, नमस्कार।
3: हुणे तुसीं प्रोग्राम सुन रहे सी ज्ञान विज्ञान। आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हैल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: जी दोस्तों, एक होर दोस्त ने हैलो फरमाइश का हिस्सा बने ने। हैलो
1: प्यार ते सतिकार भरी सत श्री अकाल जी।
0: जी, सत श्री अकाल जी।
1: सोम दत्त बोलदा जी, मैं इस गेट नाभे तो जी।
0: जी दत्त साहब, की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया सर, बहुत वधिया। सुनाओ सर, ठीक ठाक जी?
0: हाँ जी, वधिया जी। बस ठंडी जगह उत्ते बैठे हैं, तुहाडे नाल गल्लां बातां करी जाने
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल। तुहाडे नाल साडा भी जी लग्या रहिंदा जी, सारा दिन तुहाडे प्रोग्राम सुनदा जिन्ना भी टाइम लगदा जी।
0: ठीक है जी।
1: हाँ जी,
0: ते
1: हाँ जी।
0: गीत केड़ा सुनना तुसी?
1: गीत सुनेंगे, लैला मजनू फिल्म का गीत है, 1976 दे विच आई सी, लिख कर तेरा ना जमी पे लैला लैला करता हूँ जी।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोस्त फोन करने
1: बहुत
0: दे।
1: बहुत धन्यवाद जी।
0: जी।

0: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤਿਆਰ ਨੇ T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ICC T20 ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ FM ਰੇਨਬੋ ਚੈਨਲ ਤੋਂ 102.7 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।
4: हैलो फरमाइश प्रोग्राम दे विच एक होर दोस्त आ गए ने। हैलो हैलो
5: जी
4: नमस्कार जी।
5: हाँ जी सर जी नमस्कार
4: जी। जी नमस्कार
5: सर जी, मैं पॉल बोल रहा सराबा नगर जलंधर तो जी।
4: हाँ जी पॉल जी, की हाल चाल ने?
5: जी सर जी बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है जी।
4: किवें चलदी है लाइफ?
5: बिल्कुल बहुत बढ़िया चलदी जी लाइफ।
4: ते गीत केड़ा सुनना जी तुसी?
5: गीत सर सुना दियो सेरा पिक्चर दा, पंख होती तो उड़ाती रे।
4: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोस्त फोन करन दे लई।
5: मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा वी, धन्नवाद
4: जी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ 'ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਹ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पोत रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाते हैं।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएनएस दुनागिरी, अग्रय और संशोधक का नौसेना में शामिल होना भारत की समुद्री क्षमता के विकास में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये तीनों पोत अब भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा आज हो रही है। ये परीक्षा देश के 551 और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जा रही है। परीक्षा में अंग्रेजी तथा 12 भारतीय भाषाओं में उत्तर देने का विकल्प है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले तीन टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से

सुरेंद्र कौर ते प्रकाश कौर दा गाया हुआ एक गीत सी। अगले गीत की फरमाइश इस तरह। मजनू का टीला तो कमल मधु सागर उमंग आकांक्षा गुड़िया माहि मिलिक ते इशिता अरोड़ा हरजिंदर सिंह बराड़ पिंड डाकखाना जिद्दा बठिंडा तो इसे गीत की फरमाइश है। बुलडाणा वन सिंगी महाराष्ट्र तो मोल मानकर शोभाताई दी पाली ते शलोक कुमार बागपत उत्तर प्रदेश तो संजय नमन ते अपार्टिंग गया। जमशेदपुर तो हरजिंदर एंजल नवनीत पप्पी ते सोनू भाटिया फाजिलका तो रमन अमन दिव्यांश वर्मा कृति वर्मा सिद्दिक प्रियांश ते सारा ही वर्मा परिवार ख्याल बाजार पानीपत तो नरेश मल्होत्रा लक्ष्य लाडो पापा नानक चंद शिवाजी कलोनी रोहतक तो पीयूष गोयल ते डुगू ते भाविक सिखा मखो तो बिला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज करणवीर सिंह पाल ते पूरा पाल परिवार सराबा नगर जलंधर तो वड़िंगखेड़ा तो पंजाब तो मिंटू टॉमस पिंकी लवली ते आरती अरोड़ा पिंड कबूल शाह कुब्बन जिला फाजिलका तो वधावा सिंह बलकरन तनु पवि जस्सी ते परिवार मेन बाजार शेरपुर थाना जिला संगरूर तो मिंटू सिमरजोत फतेहजोत सपल

हरीश वर्मा देवास विच तुसी गीत सुन रहे सी। प्रोग्राम है धमक जलंधर पेंदी। अगले गीत की फरमाइश पंचकूला सैक्टर 9 तो आशु चुक अश्वनी, गोविंद टोनी दीवान, लव ते राधा भाविक टिंगरा ते इन्हों का परिवार, मेन बाजार मंडी लादुका जिला फाजिलका तो अनमोल दीपिका किरणा ते सारा ही चावला परिवार, संतोष नैना सुकन्या सविता नांदेड़ महाराष्ट्र तो, पिंड संदोहा नेड़े मोड़ मंडी तो जगराज सिंह अटकवाले गंगा राम मोहला राजेश्वर सोनू ते लाडी धालीवाल, रघुवीर नगर तो दिलावर हसीन अलीजा नायब ते लड्डू, वासेव छाबड़ा अंज दिव्यांशी चिराग साजन छाबड़ा लालड़ू मंडी तो, अमरीक सिंह जलान जिला संगरूर तो, मनप्रीत बलजिंदर परमजीत पूरबा बालकृष्ण प्रवीण मनीष राहुल पिंड नंगल खेड़ा फगवाड़ा तो, डाबकी रोड अकोला तो सुशीला देवी सदानंद कुमार गौरव आरव ते अर्पिता एस एम जवेद गुमला झारखंड तो, सुनील कमल दीपिका गव्य भाई सुच्चा सिंह पाठक ते परिवार, ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राय महराजा आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो, भोपाल राजस्थान तो धर्मेंद्र कपिल ईशान पूजा परिहार, कृष्ण आशा साजन प्रिंस रजनी आंचल ते वंश पागला, पिंड धमोड़ जिला लुधियाना तो बूटा बिंदर प्रगट सिंह रवि ते इन्हों का परिवार, रिंगनी छत्तीसगढ़ तो दिनेश ते करुणा वर्मा, महसगेट नाभा तो सोमदा ज्योति रानी कैरव गुरमन्नत ते परिवार, पिंड बिलीमार तो प्रेम कुमार प्रवीण रानी अलीशा अरमान राकेश कुमार ममता रानी, जॉन्डी कैस्ट्रो रोजी पर्ल विलिस्टी कैस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर तो, उपरकोट मोहला चौकनुटी बुलंदशहर तो मुहम्मद सईद अब्बासी निगत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान रजान अब्बान ते अब्बासी परिवार सारा, भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव देवेंद्र भूषण संस्कृत ते पौरश ए सब ने वाइट फील्ड बंगलुरु तो, पिंचान मारी तो मंगत राम जगदीश रानी संदीप ममता अभिषेक ते दिव्या, पिंड फ्रांसी हिसार तो राजकुमार प्रमोद कुमार पुष्पेंद्र कुमार, बठिंडा रोड मंडी डौली तो रजिंदर अंजू मोहित लकी तानिया ते परिवार, पिंड चंद बाजा फरीदकोट तो अंग्रेज सिंह गुरमीत कौर जगप्रीत मनप्रीत करमजीत चरणजीत पोती नवकीरत कौर गुरसीरत ते पोता राम प्रताप जगदीश ठाकर नाइमा रंजू भाई धाकड़ युवराज सिंह धाकड़ शिवांगी धाकड़ ए सब ने रतलाम मध्य प्रदेश तो, तनौरी तलीवाला तो निसार नौशाद बेबियालिया ते आयन बाबू उन्हां दी फरमाइश ते आओ सुनदे हां गीत आवाज़ है सुशांत रिंकू दी।

राजुद्दीन अंसारी तो नसीबन बेगम अकरम शानिया मोहम्मद अलियास मुशाहिद अक्सा आयशा उमर ते समीना अंसारी मुकेश पत्ता नीलम नितिन पलक करण गीतू निहारिका हार्दिक ते वंश कनेरा मला पटियाला तो रमेश पिल्ला चावला पिंड ठाखाना खुईया सरवर तहसील व बोहर जिला फाजिलका तो आसा जयश्री संतोष हेमंत दीपक रमेश रैजल हेजल विहान रिजू बब्बू बीहू चावला ते सारा ही परिवार हीरा बाग जगराम तो जगदीश लीलावती हरदीप अंजू परुशी दीपांशु हरजीत कैंथ मोजी कलोनी डांबा लुधियाना तो सुखबीर सिंह कमप्रीत रोशनप्रीत पिंड छाजली जिला संगरूर तो पिंड हीरावाली जिला फाजिलका तो सुभाष पिमला इंदु पार्वती हिमांशु सरवण रिणवा ते परिवार संदीप मक्कड़ ज्योति मक्कड़ भरत कमल पिंगावाला चौक राय जलंधर तो पिंड कैरो जिला तरन तारण तो गुरदर्शन लाल चलोत्रा सुनीता शमी रजनी काशिप अनत ते पोत्रा गुरशब्द होना की फरमाइश सुनद गीत आवाज़ है एस कंग होना दी।

कमलप्रीत, गुरजीत सिंह, गुरतेज मंगू राजस्थानी मोरमंडी तो ते सारा ही तग्गड़ परिवार। तो इस ही गीत की फरमाइश है साढ़े ये दोस्त ये ने होशियारपुर तो दीपक ते इन्हों का सारा परिवार। मेरठ कैंटो दिग्दर्शन ते कविता गौर रानी ते बिट्टू चांब, जाकिर मिलानी, सुमैया सुभान, समीर सलमा, मुमताज़, दिलशाद, नसीर, बानुबी मिलानी, बादशाह मिलानी ते पूरा ही मिलानी परिवार, ये सब ने मुकाम पोस्ट फुल चिंचोली तालुका पंडेरपुर शोलापुर तो। सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लव्य, आरव खुराना, एस के पप्पी, MLB रोड ग्वालियर तो। जवाहरनगर दूर तो RC कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी ते विपुल कामड़े, विजय चौहान, इंद्रुकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंद्रुकर, बेबी शौर्या, शेष, अंकिता ते अनिकेत चौहान, वारना, शाहपुर, कोल्हापुर, महाराष्ट्र तो। धानी नथा सिंह, जंडवाला तो, भीमा सिंह, सुखचरण, केवल, मनदीप सिंह, गुरनूर, वरिंदर सिंह, छतवीर सिंह, अमानत कौर, पिंड मैस नाभा तो हरजीत लखेवार, हैप्पी, रमन, अमरीत ते मनमीत सिंह, पिंड रोली मोगा तो अंग्रेज सिंह घारू, जसवीर, वीरपाल, लखवीर, आकाशदीप, अर्जुन, गुरपेज, गगनदीप कौर ते इन्हों का परिवार। सुनदेंगी तवाज़ अमर संधु दी।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
1: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होकर बैठे, चिंता मुक्त होकर बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमरीका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आजकल साइबर क्राइम दे नवे तरीकों विच प्रचलित हो रहा है डिजिटल अरेस्ट, जिस विच कोई व्यक्ति अपने

0: आपनों किसे सरकारी अदारे दा अफसर दस के वीडियो कॉल दे जरिए ऑनलाइन इनक्वायरी दा डरावा दे के अरेस्ट करन दी धमकी देंदा है, जिस दे डर नाल ओ किसे तो भी इनक्वायरी दे नां ते पर्सनल डाटा ले सकता है ते उस नूं गलत तरीके नाल उपयोग कर सकता है। कोई भी सरकारी अदारा किसे तरह दी पर्सनल इनफॉर्मेशन ऑनलाइन नहीं मंगता। अपना पर्सनल डाटा देन तो पहला चंगे तरीके जांच पड़ताल कर लवो, सावधान रहो, सचेत रहो, साइबर क्राइम तो बचो।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नूं सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
2: पर की उसदे लई मैनूं दिल्ली जाना पएगा?
1: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
2: अप्लाई किवें करिए?
1: सुप्रीम कोर्ट दी वैबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राहीं बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
2: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
0: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो हम बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। थानू दस दिए कि तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ते हुण पेश है बच्चे प्रोग्राम बाल जगत।

0: प्यारे बच्चे, अज योगा डे दे उपर सानू जिहड़ियां सैलीब्रेशन ने ना अपने आले दुआले हुंदियां नज़र आउंदियां ने। और प्यारे बच्चे, वाकया ही ये योगा साडे शरीर दे लई साडे मन दे लई बहुत ज़्यादा गुणकारी है और इनू दुनिया भी मन चुकी है। और इस करके तुसी देखिया होएगा कि बहुत सारे जिहड़े फॉरनर्स ने ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਯੋਗ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਮਤਾ ਠਾਕੁਰ ਔਰ ਚਾਂਦਨੀ ਗਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਮਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਮੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਔਰ ਯੋਗਾ ਕਾ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਬੜੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਹੈ ਹੀ, ਇਵਨ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਵੀ। ਬਿਕੋਜ਼ जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं अभी इस टाइम में स्पेशली, उससे बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन के लेवल में उनका डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ गया है, तो योगा ही एकमात्र वे है जिससे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, क्लैरिटी लेके आ सकते हैं। तो जितना हम जैसे हम उनकी अकेडमिक पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, उतना ही जरूरी हो गया है कि अब वो मेंटली भी स्ट्रांग हो, मन से स्ट्रांग हो। और योगा ही एकमात्र वे है जिससे हम मन से स्ट्रांग होते हैं
0: जी।
1: हम बहुत अच्छे स्कूल में हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद ट्यूशन्स में भी अलग से पढ़ते हैं, उसी तरह से
0: बिल्कुल
1: जो मन है हमारा, जहाँ से हम ये चीजें हैंडल कर रहा है बच्चा, यू नो मेमोरी है, वो याद करता है बट भूल जाता है बहुत जल्दी। उसको अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कहीं पे, स्टेज पे जाना है, एकदम फियर से ब्लैंक हो जाता है, तो नॉलेज आते हुए भी वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाते बच्चे।
2: बिल्कुल।
1: तो इसलिए योगा से ये बहुत हेल्प मिलती है कि वो अंदर से काम रहे, मन उनका स्ट्रांग रहे, वो किसी भी चैलेंज को हैंडल कर सके। तो
2: जी।
1: योगा इस तरह से बच्चों को हेल्प करता है। और ये अब आज के टाइम में तो इट्स वेरी यू नो मैंडेटरी हो गया कि करना ही है।
3: जी बिल्कुल, बहुत वधिया तरीके दे नाल तुसी दस रहे हो ममता ठाकुर जी के सच्ची ही बहुत ज़्यादा जरूरी है अज दे समय दे विच हर उम्र वर्ग दे इंसान दे लई खास करके योग करना। लेकिन जदों असी गल करदे हाँ समय दी, जदों असी गल करदे हाँ कि किस तरीके दे नाल किहड़े समय योग आसन किते जा सकदे ने, की इहो जिहा कुछ लिमिटेशनस ने कि इस समय नहीं करना चाहीदा, या फिर कोई भी समां जिहड़ा है उस समय योग किया जा सकता है, कि तुसी इहदे बारे चानना पाओगे? ते इह सवाल खास करके मैं पुछना चाहवांगी चांदनी गाबा जी तुहानू कि योग करन दे लिए कोई खास समा है जिसनु सानू फॉलो करना चाहिदा?
1: हां जी मैम, समा तो वैसे देखो सवेर दा ही बेस्ट हुंदा है, बिकॉज चढ़दा सूरज हुंदा है, सवेरे फ्रेश एयर हुंदी है, टाइम भी लोका कोल सवेरे ही हुंदा है।
2: जी जी बिल्कुल।
1: सो द बेस्ट टाइम जेड़ा ओ सवेर दा ही हुंदा, बट बिकॉज बच्चे स्कूल जांदे, अगर आपां इस टाइम जो साड़ी गलबात हो रही है बच्चा नू लेके ज्यादा हो रही है
2: जी,
1: अगर आपां बच्चा दा देखिए तो उन्होंने स्कूल अर्ली खुलदे आ, सवेरे सवेरे उन्होंने जाना हुंदा।
2: बिल्कुल।
1: So, if, अगर वो सवेरे मैनेज कर सकते हैं तो सवेर दा टाइम इज बेस्ट, अगर वो अपने आप नू 20-25 मिनट मैक्सिमम सवेरे ही दे देन, तो उन्हां दा दिन पूरा वधिया निकलेगा, स्कूल जाके पढ़ाई ध्यान भी वध लगेगा, थकावट घट होएगी। बट इन एनी केस अगर वो सवेरे नहीं अपने आप नू टाइम दे सकते

0: ममता जी तो एक सवाल फिर तो पूछांगा कि ममता जी देखो ये दसो कि किन्ना छोटा बच्चा योगा कर सकता है, किस उम्र तो छोटे बच्चे नू योगा करवाया जा सकता है उदे पेरेंट्स द्वारा या उदे स्कूल दे विच?
1: हाँ जी बिल्कुल, 8 ईयर्स जो है ना, 8 साल का जब बच्चा हो जाता है
2: हाँ जी ठीक
1: तब से वो उनको शुरू कर देना चाहिए, ये ना प्रॉपर
2: है।
1: राइट एज टू स्टार्ट योगा ध्यान मेडिटेशन इज 8 ईयर्स।
2: ठीक है
1: 8 साल से वो शुरू कर दें, और उससे पहले तो आपने देखा ही है बच्चे बहुत बब्बी से होते हैं, उनके पास
2: जी
1: बैठना बहुत पसंद होता है हमें, बट
2: या
1: आफ्टर 3 जैसे ही वो 8 प्लस होने लगते हैं, बड़ी क्लास में आने लगते हैं, तो वो चैलेंजेस फेस करते हैं ये सब।
2: ठीक है
1: तो राइट एज इज 8 ईयर्स, और उसके बाद ही वो डेवलप उनमें होना शुरू हो जाता है रिगार्ड चैलेंजेस, कॉन्सेंट्रेशन का, कॉन्फिडेंस का। तो योगा और मेडिटेशन उनको इसमें हेल्प करते हैं।
3: सो जिथे योगा ते मेडिटेशन बच्चों नू बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, वड्डियां नू हेल्प कर रहे हैं, सानू सारे नू हेल्प कर रहे हैं, उत्ते ही असीं देखते हैं कि किस तरीके दे नाल स्ट्रेस एंगजाइटी ये सारे वर्ड्स जिहड़े ने ये आम करके ही साडी जिंदगी दे विच आ जांदे ने, आ रहे ने। सो ये चीज़ां जिहड़ियां ने बच्चों वल भी जा रही ने। सो इन्हां नू अगर असीं दूर करना होवे ते ममता ठाकुर जी तुहानू सवाल पूछना चाहवांगे कि किस तरीके दे नाल इन्हां चीज़ां तों दूर रहा जा सकदा और बच्चों नू इन्हां तों दूर कीता जा सकदा है खास करके योगा दे नाल।
1: बच्चों को हम कई बार चीजें कहते रहते हैं, ऐसे नहीं करो, ऐसे करना है, ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन से रखो, कौन गुस्सा नहीं करना है, आपने मुस्कुराते रहना है। यूजुअली पेरेंट्स ये बड़े बोलते हैं, पेरेंट्स टीचर सब लोग ऐसे बोलते हैं, बट बच्चों का क्या है, बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको बोलते हैं, बच्चे वो करते हैं वो सामने जो देख रहे हैं।
2: बिल्कुल
1: और जो ये वर्ड है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, ये हम सब बड़े लोग डिस्कस करते हैं, तो
2: बिल्कुल
1: बच्चे नेचुरली उसको कैच करते हैं कि हाँ समथिंग वर्ड स्ट्रेस भी होता है, परेशानी भी होती है। तो हम पेरेंट्स से ही, हम बड़ों से ही उनको उन तक जाता है
2: बिल्कुल ठीक है।
1: ना। तो एज अ पेरेंट और एज अ गार्डियन हमको ये देखना है कि हम उनको कितना लाइट माहौल दे रहे हैं। नो डाउट हम ऑफिस में होते हैं, बहुत सारा काम होता है, वर्डन भी होता है, बट जब हम बच्चों के सामने हैं, बच्चे हमारे आसपास हैं, तब हम इस तरह का कोई वर्ड ऐसा यूटिलाइज ना करें, ऐसा कुछ वर्ड हैवी वर्ड उनके सामने ना बोलें, बिकॉज बच्चे बहुत बहुत बड़े ऑब्जर्वर हैं, वो ये नहीं देखते। अगर एक पेरेंट अगर मेडिटेट करता है ना, तो
2: हाँ जी
1: बच्चे नेचुरली मेडिटेट करना शुरू कर देगा।
2: बिल्कुल
1: एज अ पेरेंट आप गुस्सा होते हो, आप इरिटेट होते हो, आप कई बार शाउट करते हो, नेचुरली बच्चा को लगता है ये नॉर्मल है,
2: बिल्कुल
1: हाँ डिप्रेशन वर्ड नॉर्मल है, स्ट्रेस वर्ड नॉर्मल है, तो वो भी अपनी लाइफ में भी वो लेने आ जाएगा, चाहे बड़ों के जीवन में। जैसे हमें तो होता है कि परेशानी है, मान लो ऑफिस की कोई बड़ी परेशानी है, तो
2: बिल्कुल
1: बच्चे को अपनी छोटी सी परेशानी भी बहुत बड़ी लगेगी, उसका एक प्लस का सम सॉल्व नहीं हो रहा, उसको वो भी बड़ा लगेगा
2: बड़ा
1: फिर।
2: लगेगा बिल्कुल बिल्कुल
1: यस,
2: बिल्कुल सही
1: तो
2: बात है।
1: एज अ पेरेंट और गार्डियन हम जब कोई वर्ड उनके सामने यूज कर रहे हैं, तो हम उसको बहुत सोच समझ के यूज करें कि उनको एक माहौल दें, लाइटनेस का माहौल। आप ऑफिस से घर आते हो तो वो जो ऑफिस का परेशानी है या ऑफिस का कुछ है टेंशन, उसको वहीं पे ड्रॉप करके आप बच्चों के साथ ऐसे हो जैसे वो है।
2: बिल्कुल
1: टोटली
0: मैडम तुसी ये ते दस दिता कि ये जेडे डिप्रेशन ने स्ट्रेस वाले लफज ने इस हर किसी की जिंदगी दे विच आ वड़े ने और ये प्रभावित भी करते पे ने, और हुण इन्हां तो बच्चियां नू निजात किवें दवाई जावे या उन्हां दे पेरेंट्स इस चीज़ नू किवें अवॉइड करन ता जो घर दे विच एक पॉजिटिव खूबसूरत वाला माहौल बन सके।
1: पेरेंट्स अपने बच्चों के पहले गुरु होंगे ने,
2: जी
1: उन्होंने जदों अखा खोलिया आप अपने संसार तक जदों अखा खोलिया आप अपने पेरेंट्स नहीं सब तो पहला देखते हैं, उही साड़ी रिफ्लेक्शन ने।
2: बिल्कुल
1: तां पेरेंट्स से गार्डियंस लई तां एक आही एडवाइस भी रहेगी कि एक
2: बिल्कुल
1: तो अगर वो बच्चों तो चाहते ने कि वो मेडिटेट करन, तां फर्स्ट दे हैव टू डू इट, उन्होंने आप पहला शुरू करना पैना।
2: जी
1: जिवें ममता जी ने ऑलरेडी कहा कि उन्हां दे शूज च जाके सानू समझना पैना कि वो की गो थ्रू कर रहे ने। बहुत बारी टीनेज जाके पेरेंट्स नू प्रॉब्लम आंदी है बच्चा नाल, क्योंकि टीनेज एक बहुत एक डिफिकल्ट फेस होंगे एक बच्चे की लाइफ। अगर एज अ पेरेंट अपा भी अपनी टीनेज देखिए तो अपा भी देखांगे कि साडे भी उस टाइम वही चैलेंजेस थे जो अज साडे बच्चों के। तो एज पेरेंट या एज गार्डियन सानू उन्हां दी जगह ते आके भी देखना चाहिए कि अगर जिवें ममता जी ने कहा अगर उसका एक प्लस का सम भी नहीं सॉल्व हो रहा, तुहाडे लई चाहे वो छोटी जी प्रॉब्लम है पर उहदे लई तां वो
2: वो
1: वड्डी
2: वड्डी
1: होएगी ना।
2: प्रॉब्लम है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: सो दैट अंडरस्टैंडिंग वो रखनी चाहिए है, तो एक माहौल

0: जो ममता दी ने क्या वो देना चाहिए था वहाँ। अगर पेरेंट आप मेडिटेट कर रहे हैं, इट इज वेरी नेचुरल, 99% केसेस विच बच्चे कॉपी करूंगे।
1: बिल्कुल ठीक
0: ते
1: है,
0: पेरेंट्स ते गार्डियंस लिए तो साड़ी आही एक एडवाइस है। सेकेंडली जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस जो व्हाट वी कैन डू इज दो तीन सॉल्यूशंस बहुत प्रोमिनेंट ने जो बहुत वर्क कर दिया उसे आपा की कर सकते। फर्स्ट थिंग इज की जो आपा पहला भी डिस्कस किया कि उन्होंने आपा राइट एज भी चना चीजा पा दिए, वॉट एवर
1: बिल्कुल
0: कोर्सेज जो भी पेरेंट्स उन्होंने एनरोल कराना चाहते हैं, जेडे भी कोर्सेज अजकल होंगे आ एनरोल करा सकते हो। बच्चे रिलैक्स भी करते हैं, उन्होंने सारे चैलेंजेस जेडे हौली हौली घट हो जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: सेकेंडली उन्होंने जिवें बच्चों का जिवें आपां हाइपर एक्टिव तुसीं वर्ड यूज किया,
1: हाँ जी
0: एनर्जी बहुत ज्यादा होंदी है। एनर्जी बेसिकली आपां चैनलाइज करनी होंदी है,
1: जी
0: तां उन्होंने फिजिकल एक्टिविटीज च ज्यादा पान, मतलब बिकॉज
1: ओके
0: वी नो अजकल बच्चे टेक्नोलॉजी नाल ज्यादा एडिक्टेड ने, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, तो वो भी चलो ओदा भी एक अपना रोल है, बट दैट टाइम शुड बी लिमिटेड वो कर सकते पेरेंट्स। उन्होंने म्यूजिक, फिजिकल एक्टिविटीज, कोई गेम्स, डांस, कुछ क्रिएटिव वर्क्स बच्चा नु जरूर पाना चाहिए राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग एज, क्योंकि उन्होंने फिर जेड़ा क्रिएटिव पार्ट है ना वो भी डेवलप होएगा। अदरवाइज ऑल द टाइम वो पढ़ाई कर रहे हैं या लॉजिकल थिंकिंग ही कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: तो क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होनी बच्चे की बहुत जरूरी होंगी है। अलोंग विद मेडिटेशन, ध्यान, प्राणायाम जो भी अपन उन्होंने इंट्रोड्यूस करांगे, ओदे नाल दी नाल उन्होंने म्यूजिक या सारी क्रिएटिव चीजा, फिजिकल एक्टिविटी, और कुछ जो भी फिजिकल एक्टिविटी, इट कैन बी एनीथिंग, रनिंग, साइकिलिंग, कुछ भी जो बच्चे नु पसंद आ ओदे जो उन्होंने पाओ, ताकि उन्होंने एनर्जी चैनलाइज होए।
1: बिल्कुल जी, बच्चियां दी एनर्जी जिहड़ी है ना वो चैनलाइज होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जिहड़ी एनर्जी है जदों पॉजिटिव वे च जांदी है तां बहुत सारे खूबसूरत कामयाबी दे फुल खिलाउंदी है। ममता ठाकुर जी और चांदनी गाबा जी, तुसी साडे प्रोग्राम दे विच फोन कॉल राहीं जुड़े और बच्चियां नूं योग बारे इन्नी वडमुल्ली खूबसूरत जानकारी दित्ती और उहनां नूं खूब सारा मोटिवेशन भी दित्ता कि योग किन्नी खूबसूरत चीज़ है। जदों ही प्यारे बच्चे तुसीं इहनूं अपनी ज़िंदगी दे विच अडॉप्ट कर लोगे, योग करना शुरू कर दोगे, तो तुसीं देखोगे कि किवें तुसीं कामयाबी वल वधदे हो, किवें तुसीं सेहतयाब हुंदे हो और हर पासे तुहानूं खुशी दी लहर दौड़दी नज़र आएगी। और देखो जी, बाल जगत दे विच ते खुशी दियां लहरां ही लहरां आउंदियां ने और गुरप्रीत और सुखदीप इहनूं होर ज़्यादा खूबसूरत बनाउण दी कोशिश करदे ने।
2: जी बिल्कुल, इस प्रोग्राम नूं होर ज़्यादा खूबसूरत बनाउण दे लई सानूं जरूरत पैंदी है जी बाल कलाकारां दी, बच्चियां दी। सो उस दे लई नन्नी कलम तों दा सिलसिला तुहाडे सारयां लई जरूर ते जरूर लैके आउंदे आं। आस उम्मीद करदे आं कि तुसीं वी अपनी आवाज़ आवाम तक जरूर ते जरूर पहुँचाउणा चाहुंदे होवोंगे। इस दे लई वख-वख विशे तुसीं चुन सकदे हो, कवितावां, कहानियां, जिहड़ियां वी चीज़ां तुहानूं चंगीआं लगदीआं ने। बच्चियां वाले विशे तुहाडे अपनी उम्र दे हिसाब दे नाल होणे चाहीदे ने, जिस दे उप्पर तुसीं रिकॉर्डिंग करके सानूं भेज सकदे हो। लेकिन हुण जिहड़े बच्चे खास करके जिन्हां ने रिकॉर्डिंग करके ऑलरेडी भेजिया हुई ने, जिहड़े अपनी वारी का इंतजार कर रहे हैं, उन्हां दे वल हुण असीं रुख करते हैं। ज्यादा समा बिल्कुल भी नहीं लै रहे, हुण चलते हैं जी बाल जगत दे खास सिलसिले नन्हे कलम तों दी पहली पेशकारी दे वल।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया

0: इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम।

0: के साथ मनाया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है पंजाब अपने भविष्य के लिए, पंजाब जिस प्रकार से अपने संघर्ष, अपने परिश्रम, अपने मेहनत के लिए जाना जाता है, और मैं मानता हूँ कि पंजाब के लोगों ने हमेशा संघर्ष करके अपना मुकाम पाया है, तो निश्चित रूप से इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर ड्रग्स को नो कहेंगे और ड्रग्स की को समाप्त करके समाज और युवा साथियों के बीच में निश्चित रूप से उज्ज्वल पंजाब, जहाँ पर विकसित भारत का सपना है, वही विकसित पंजाब बने, इस दिशा में हम आगे।
1: सरहदी सुरक्षा बल ने अमृतसर विच अटारी वाघा सांझी चेक पोस्ट DCP, गुरदासपुर विच करतारपुर साहिब कोरीडोर, फिरोजपुर विच CCP हुसैनीवाला ते फाजिलका सरहद ते JCP सादकी तो इलावा राज दियां होर इकाइयां ते सदर मुकामां ते ए समागम कराया गया। प्रसिद्ध सांझी चेक पोस्ट अटारी विखे मुख मेहमान BSF पंजाब फ्रंटियर दे इंस्पैक्टर जनरल डॉ अतुल फुलजले ने सरहदी पिंड वासियां समेत हिस्सा लैण वालियां नूं योग नूं आपणी रोजाना दी रूटीन विच शामिल करन लई उत्साहित कीता। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दे मौके पंजाब विधानसभा दे स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने अज कोटकपूरा ते लाला लाजपत राय पार्क विखे करवाए गए योग समागम विच शमूलियत करदियां योग अभ्यास कीता। योग दिवस मौके जिला कानूनी सेवावां अथॉरिटी DLSA चंडीगढ़ ने आज जिला कोर्ट कंपलैक्स चंडीगढ़ विखे एक योग सैशन कराया। ए प्रोग्राम राज कानूनी सेवावां अथॉरिटी SLSA चंडीगढ़ के मैंबर सकत्तर श्री अरुण कुमार अग्रवाल अते श्री सुनील कुमार चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सकत्तर DLSA चंडीगढ़ की अगवाई हेठ कराया गया। होशियारपुर नगर निगम चोणां दे प्रोग्राम का ऐलान कर दिता गया है। वोटां 5 जुलाई नूं पैणगियां। डिप्टी कमिश्नर कम जिला चोण अधिकारी आशिका जैन ने वधेरे जानकारी दिंदिया दस्या कि संबंधित नगर निगम खेत्र विच आदर्श चोण जाबता तुरंत प्रभाव नाल लागू हो गया है। उन्हां दस्या कि नामजदगी पत्र दाखिल करन दी प्रक्रिया 22 जून तो शुरू होगी। उम्मीदवार 22, 23 ते 24 जून नूं सवेरे 11 बजे तो दोपहर बाद 3 बजे तक अपने नामजदगी पत्र दाखिल कर सकणगे, जबकि 25 जून नूं दोपहर 3 बजे तक नामजदगी पत्र जमा कराने की आखिरी तरीक होगी। 26 जून नूं नामजदगी पत्रां दी जांच की जाएगी ते 27 जून नूं दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपने नाम वापस लै सकणगे। डिप्टी कमिश्नर ने यह भी दस्या कि 5 जुलाई नूं नगर निगम दे 50 वार्डां विच वोटिंग कराई जाएगी। उन्हां दस्या कि जिले विच 1,34,000 वोटर रजिस्टर्ड ने अते कुल 139 पोलिंग बूथ बनाए गए ने। उन्हां यह भी दस्या कि वोटिंग दा समां सवेरे 8 बजे तो शाम 4 बजे तक तय किया गया। चोण अमल 7 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। संगठित अपराध अते गैंगस्टर नेटवर्क विरुद्ध एक वड्डी सफलता विच राज विशेष ऑपरेशन सैल SSOC अमृतसर अते काउंटर इंटेलीजेंस CI जलंधर ने एक केंद्रीय एजेंसी दे तालमेल नाल विदेशी हैंडलरां नाल जुड़े गैंगस्टर मॉड्यूल दा पर्दाफाश कीता, जिस विच इसे 3 कारकुनां नूं गिरफ्तार किया गया अते उन्हां दे कब्जे विचों 3 विदेशी आधुनिक पिस्तौल ते गोली सिक्का बरामद किया गया। वधेरे जानकारी दिंदियां DGP पंजाब कौरव यादव ने दस्या कि यह एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तो बाद होया, जिसके कब्जे विचों एक AK-47 राइफल अते 25 पिस्तौलों समेत 26 आधुनिक हथियार बरामद हुए ने। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की बरसी मनाउण अते पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरधामा के दर्शनों लिए 290 श्रद्धालुओं का जत्था अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध हेठ अमृतसर तो पाकिस्तान लई रवाना होया। ए जत्था 10 दिनां दी यात्रा दौरान ननकाणा साहब, पंजा साहब, सच्चा सौदा, करतारपुर साहब, रोड़ी साहब, गुरु रामदास जी के जन्म स्थान ते होर इतिहासिक गुरधामा के दर्शन करेगा। इस दे नाल ही प्रादेशिक खबरां खत्म हुईयां। नमस्कार।
2: मूर्खा सुधर जा।
3: पेमेंट्स ले कोई ओपन वाईफाई नहीं,
4: मतलब धोखा तड़ी नू बाय बाय।
3: RBI कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर ते।
5: असीं आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हैं। हुण पिछला प्रोग्राम फौजी विरल।

तुसी सुन रहे सी फिल्म प्रेम गीता गीत, आवाज़ सी अनुराधा पौडवाल दी। आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफी दी, फिल्म है ठोकर।

अश्वानी तो सुन रही हूँ। साड़ा एक्स हैंडल है @AIRRNU जलंधर, साड़ा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर, तो यूट्यूब से साड़ा चैनल है @AIR जलंधर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सरहदी खेतरों में रेल नैटवर्क विकसित करने की योजनावां ते काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती रेलगड्डी रवाना करदिया उन्होंने कहा कि यह प्रोजैक्ट न सिर्फ लोगों को बेहतर रेल संपर्क प्रदान करेगा सगों राष्ट्र सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। उन्होंने दसिया कि राजस्थान 76,000 करोड़ रुपए तो वे रेल प्रोजैक्ट चल रहे हैं। श्री वैष्णव अज जयपुर तो खातीपुरा दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रैस को भी रवाना करेंगे। अंडर ग्रैजुएट मैडिकल कोर्सों में दाखिले लिए नीट UG मुड़ प्रीख्या अज हो रही है। देश के विदेशों के वख-वख शहरों 22,79,000 तो वध उम्मीदवार प्रीख्या दे रहे हैं। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी वालों अज होने वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लिए जारी दिशा निर्देशों मुताबक प्रीख्या केंद्रों दाखिला सवेरे 11 बजे शुरू होया सी, जो हुण तो थोड़ी देर पहला दोपहर 1:30 बजे बंद हो गया। विद्यार्थियों एक नवा एडमिट कार्ड ते एक वैध फोटो ID लियानी लाजमी की गई है। सरकार ने सोशल मीडिया से प्रसारित हो रहे उस दावे का खंडन किया है जिस विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत 6,550 रुपए की प्रोसैसिंग फीस नाल 10 लाख तय कर्ज दिए जा रहे हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो की तत्थों की जांच बारे इकाई ने स्पष्ट किया है कि इस नाल संबंधित पत्र पूरी तरह फर्जी है। नॉर्वे के प्राइमरी स्कूलों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस टूल की वरतों से करीब करीब पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। वड्डे बच्चों की सिक्ख्या इन्हों की वरतों सीमित की जा रही है। प्रधानमंत्री जोनास कहर स्टोर ने कहा है कि AI की वरतों छोटे बच्चों के अपने सिक्ख्या के महत्वपूर्ण पड़ावों तो खुंझन के जोखम को वधाती है। नॉर्वे की सरकार ने 2024 टेस्ट स्कोर व्यापक गिरावट को देखदिया स्कूलों स्मार्टफोन पर पाबंदी लगा दी सी। अमरीका के उपराष्ट्रपति JD Vance स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जिथे अमरीका ते ईरान दरमियान गलबात होने की उम्मीद है। श्री वैंस ने कहा है कि दोवों मुल्कों दरमियान परमाणु मुद्दों ते गलबात लई एक ढांचा विकसित किया जाएगा। तीन देशों की क्रिकेट लड़ी में भारत ए और मेज़बान श्रीलंका ए दरमियान आखिरी मैच खेडिया जा रहा है। यह मैच दम्बूला स्टेडियम खेडिया जा रहा है। श्रीलंका ए ने टॉस जीत के पहला गेंदबाजी करने का फैसला किया। खबरां लिखे जाने तक भारत ए ने 49 ओवरों 8 विकटों के नुकसान से 370 दौड़ा बनाईया ने। भारत ने चेन्नई च खेडे गए तीजे ते आखिरी एक रोजा क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकटों नाल हरा के लड़ी 3-0 नाल जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर च 1 विकेट के नुकसान से 224 दौड़ा बना के जित हासिल की। 5 विकटा लैण वाले प्रसिद्ध कृष्णा नू प्लेयर ऑफ द मैच चुनिया गया। तो आखिर च खास खबर एक बार फिर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में भारतीय जल सेना के 3 स्वदेशी समुद्री जहाज राष्ट्र को समर्पित किए। कहा भारत जहाज निर्माण खेत्र च एक नवी सोच नाल अगे वध रहा है। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मौके प्रधानमंत्री ने योग अभ्यास की अगवाई की। देशवासियों योग नू अपने जीवन का हिस्सा बनाउण दा सदा दिता। पंजाब भर में भी वख-वख सरकारी ते निजी संगठनां अते संस्थावां वल्लों योग समागमां दा आयोजन। अंडर ग्रैजुएट मैडिकल कोर्सां च दाखले लई नीट UG मुड़ प्रीख्या अज हो रही है। तीन देशों की क्रिकेट लड़ी च भारत ए अते मेज़बान श्रीलंका ए दरमियान आखिरी मैच खेडिया जा रहा है। इस दे नाल ही राष्ट्र खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरों का अगला बुलेटिन तुसीं सुणोगे शाम 6:20। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हनी तंदरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज योग के 12वें बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरूनी मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज़्यादा मराकज़ और बैरून मुल्क 14 मराकज़ में नीट UG का दोबारा इम्तहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुज को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमरीका के नायब सदर JD वेंस और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर MB कालिबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में दम्बुला में

0: तीन मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां बैनल अक्वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद, सरगर्म और बावकार अंदाज से बढ़ती उम्र के लिए जिंदगी भर योग को अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से योग का बैनल अक्वामी दिन मनाने में मुल्क की क़्यादत की। मुश्तरका योग प्रोटोकॉल योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए जनाब मोदी ने इस तारीखी काम पर हजारों लोगों के साथ योग आसन किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी कसरत नहीं और न ही ये किसी मखसूस उम्र तक महदूद है, बल्कि ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड पर योगासन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार और शहरी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का एक जश्न है। उन्होंने कहा कि योग ने लोगों को एक सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी का रास्ता दिखाया है।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: बांग्लादेश में योग का असल प्रोग्राम ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में मुनक़िद हुआ, जहां सैकड़ों योग शायकीन कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत के लिए जमा हुए। इस तकरीब की क़्यादत IGCC के योग असातिज़ा और तलबा ने की। आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश और एवरग्रीन योग समेत 8 सरकर्दा योग तंजीमें इस तकरीब में शामिल हुई, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी होती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। रियाज में भारतीय सिफारतखाने ने कल सऊदी योग कमेटी और मुकामी इदारों के साथ मिलकर प्रिंस फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में योग से मुतालिक तकरीब मुनक़िद की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने शिप बिल्डिंग शोबे के लिए एक नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने आज मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। बहरिया के जंगी जहाज़ों के डिज़ाइन से मुतालिक ब्यूरो ने इनका डिज़ाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है। इन जंगी बहरी जहाज़ों का मकसद मुकाबला करने की सलाहियत, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निज़ाम को मुस्तहकम बनाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने कई पॉलिसी इस्लाहात की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अंदरूनी मुल्क तामीर करने की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर खुसूसी इकदामात किए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।

0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इन जंगी बहरी जहाज़ों को बहरिया में शामिल किया जाना भारत के मुस्तकबिल का एक इशारा है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में न सिर्फ दिफाई सामान की तैयारी में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है बल्कि दिफाई सामान की बरामदात भी तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को बहरिया में शामिल किया जाना भारत की बहरी सलाहियत के फरोग में एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार ये इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG का दोबारा इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो खौफ होकर इम्तिहान दें। अमरीका के नायब सदर JD Vance स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान के साथ मुज़ाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। ईरान से भी एक वफद स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लेबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान में इसराइली हमलों की वजह से अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम और मेघालय में कहीं कहीं तेज से लेकर बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, साहिली कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में दाम्बुला में तीन मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर धुआंधार 94 रन स्कोर किए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदुरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदुरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज योग के 12वें बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज़्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से फर्स्ट ओवर। एक बार फिर आप सब का स्वागत है। आओ सुनते हैं कुछ और नगमे। आओ सुनते हैं मिलाप फिल्म का गीत। आवाज़ है मुकेश दी।

आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा अगला गीत। फिल्म है, गीत गाया पत्थरों ने, आवाज आशा भोसले दी।

ਇਹ ਸੀ ਫਿਲਮ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਦਾ ਗੀਤ, ਗੀਤਾ ਦੱਤ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ।

गीत गाया पत्थरों ने। तो सुन रहे से आशा भोसले नू, ते हुण सुन रहे जबक फिल्म विच लता मंगेशकर ते मोहम्मद रफी नू।

0: ऐसी फिल्म जबक द गीत मोहम्मद रफी ते लता मंगेशकर द गाया होया ते फौजी वीर इसकी दिनाली प्रोग्राम हुण खत्म हुंदा है। आग्या चाहांगे जय हिंद। ऐसी प्रोग्राम फौजी वीर लई असीं आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। 2:15 होए ने, सुनदे हां दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान के संसद अध्यक्ष एमबी कलीबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से बंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 378 रन का लक्ष्य दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 11 गेंदों में लिस्ट ए प्रारूप का सबसे तेज अर्धशतक जड़ा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
2: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति ने कहा कि योग भारत की महान परंपरा का प्रतीक है जो स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
1: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। उन्होंने कहा कि कम उम्र से योग शुरू करने पर इसके अधिक लाभ मिलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। राष्ट्र राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। श्री मांडविया ने कहा कि योग न केवल भारत की विरासत है बल्कि विश्व को दिया गया एक अनुपम उपहार है।
2: योगा केवल हमारी विरासत नहीं है, दुनिया को दिया गया एक उपहार ही है। और इसलिए जब सारी दुनिया 21 जून को योगा दिन मनाती है, तब हम सभी भारतीय योग से जुड़े हर दिन में योगा करके अपने स्वयं को मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए प्रयास करिए।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में भाग लिया। ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा लाल किले पर आयोजित कार्यक्रम में लगभग 20,000 लोगों ने योग, प्राणायाम और राजयोग का अभ्यास किया। उधर पंजाब में विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों और संस्थानों ने योग सत्र आयोजित किए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जालंधर के निजी विश्वविद्यालय में आयोजित योग सत्र में भाग लिया। उन्होंने राज्य के लोगों, विशेषकर युवाओं से नशा न करने का आग्रह किया। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने लोकभवन और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुहू तट पर आयोजित योग कार्यक्रम का नेतृत्व किया।
3: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस अवसर पर कहा कि योग जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम का प्रभावी माध्यम है और स्वस्थ रहने के लिए सभी को नियमित रूप से योग करना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बोरिवली में आयोजित योग सत्र में हिस्सा लिया। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने मुंबई में योगाभ्यास किया। IIT बॉम्बे, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी तथा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के मुख्यालय सहित कई संस्थानों ने भी योग दिवस मनाया। किताबते आकाशवाणी समाचार मुंबई।
0: गोवा के तालेगांव स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक सहित छात्र, शिक्षक, सरकारी कर्मचारी और योग अभ्यासकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में कॉमन योग प्रोटोकॉल पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने योग कार्यक्रम में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। इधर राष्ट्रीय मीडिया केंद्र नई दिल्ली में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस सत्र में भाग लिया। मंत्रालय में सचिव चंचल कुमार ने कहा कि योग को केवल वार्षिक आयोजन तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाना चाहिए। विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कतर में भारतीय समुदाय और अन्य प्रवासी समूह के लगभग 2,000 से अधिक लोग एकत्रित हुए। वहीं बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के अंतर्गत इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास में भाग लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका

0: स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस धुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों पर 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। बीकानेर में लालगढ़ साबरमती ट्रेन को झंडी दिखाने के दौरान उन्होंने कहा कि ये परियोजना लोगों को बेहतर रेल संपर्क देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, उसके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
3: मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: श्री प्रधान ने बताया कि सीबीएसई के शेष परीक्षा परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे।
3: सीबीएसई की जो रिजल्ट बचा हुआ है, इसे सीबीएसई के 17 लाख बच्चों से लगभग 15.5 लाख बच्चों की रिजल्ट आ चुकी है। जो बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था वो काम लगभग पूरा हो चुका है। सीबीएसई जल्द ही उसको प्रकाशित करने वाला है।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपए के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। श्री विंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि 60 दिनों के भीतर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका होर्मुज जलडमरों मध्य पर नए

0: शुल्क लगा सकता है। बढ़ते तनाव के कारण शुक्रवार को प्रस्तावित वार्ता स्थगित कर दी गई थी। ईरानी प्रतिनिधि मंडल का नाम मिनाब 168 रखा गया है, जो स्कूल पर हुए हमले में मारे गए लोगों की स्मृति में है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ करेंगे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मुंबई में बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी रही, जिससे बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं। हालांकि बेस्ट प्रशासन ने शहर में नीट पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 100 से अधिक बसों की व्यवस्था की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा होने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, केरलम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश की संभावना है। बिहार और तेलंगाना के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा विदर्भ में बुधवार तक लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है। क्रिकेट में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल मुकाबले में भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए के सामने 378 रन का लक्ष्य रखा है। दामबुला के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रीलंका ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत ए को शानदार शुरुआत मिली। टीम बिना कोई विकेट गंवाए 130 रन के पार पहुंची। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए केवल 29 गेंदों में 94 रन बनाए। उन्होंने महज 11 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की है। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम में राष्ट्र का नेतृत्व किया। कहा, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेशी रूप से निर्मित नौसेना के 3 पोत राष्ट्र को समर्पित किए। कहा, घरेलू रक्षा उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नीट यूजी की पुनर्परीक्षा देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर जारी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के संसद अध्यक्ष M.B. कलिबाफ शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचे। मौसम विभाग ने आज उत्तर बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: नहीं एनू मोबाइल चार्ज करना सी
5: दिमाग चार्ज करना
6: अजय पब्लिक पोर्ट तो चार्ज कीता ता तुहाडा निजी डाटा हो जाएगा पब्लिक
5: देखिया
4: पापा रुको मैं पे कर दा नो सिग्नल
6: हुण की करोगे
4: मुफ्त वाईफाई है ना
5: मूर्खा सुधर जा
6: पेमेंट्स ली कोई ओपन वाईफाई नहीं
4: मतलब तोखा तड़ी नू बाय बाय
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट।
2: असि आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते। हुण पेशा प्रोग्राम रंगली धरती और अज इस विच तुसी सुनोगे कविश्री ते गायक कलाकार सुखविंदर सिंह सुतंत्र कविश्वर ते साथी। आओ सुनदे इन्हां दी गाई होई कविश्री शहीद भगत सिंह शहीदी साका।
8: सामराज सरकार ने भारत विच अपने राज दे थिड़क दे थम्मां नूं मजबूत करन लई एक सैमन कमिशन नां दा टोला भारत भेजिया जो 30 अक्तूबर 1928 लाहौर पहुंचिया उस दा विरोध करन लई लाला लाजपत राय दी अगवाई विच जलूस कढ़िया गया। सैमन कमिशन गो बैक इनकलाब दे नारियां नाल लग्गिया असमान गूंजण ये वेख के पुलिस अफसर मिस्टर सैंडरस ने लाठीचार्ज का हुक्म दे दिता है। पुलिस ने पवलक नू छलियां वांग कुटिया लाला जी जख्मी हो गए। अंत 17 नवंबर 1928 नू पंजाब दा शेर मुंशी राधा कृष्ण दा सपुत्र भारत माता दी गोद विच सदा दी नींदे सौ गया। सरदार भगत सिंह ते साथियां ने सही 1 महीने बाद लाला जी दी मौत दा बदला लैण दा मन

ਕਰੇ ਪਸਤੌਲ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵੱਲ ਸਿੰਨ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲੱਭਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ।

देख बल दिशमानु बुरवाने दिल च मरोड़े रह गए मेरे दिल दी दिशानु जग जाने दिल च मरो

साहब जी ने बराड़ा दिया सारिया शर्तां प्रवान कर लिया ते खदराने की ढाब उत्ते मोर्चा मल के बैठ गए। एक पासे बराड़ गभरू ते दूजे पासे माझे वालों आया 500 सिंघां दा जत्था ते तीजे बन्ने सतगुर कलगी वाले पातशाह महाराज तो टिब्बी साहब तो तीरां दी वरखा कर रहे ने। वजीद खां दी फौज ते तीन पासियां तो हो गया हल्ला। आओ तको जरा मैदाने जंग विच गभरूआं दा लोहे ते लोहा है इउं खड़कदा जी। खिदराने

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता विच भारतीय जल सेना दे तीन स्वदेशी समुद्री जहाज राष्ट्र नूं समर्पित कीते। कहा, भारत जहाज निर्माण खेतर विच एक नवी सोच नाल अगे वध रहा है। अज अंतरराष्ट्री योग दिवस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग अभ्यास की अगवाई की। देशवासियों नू योग नू अपने जीवन का हिस्सा बनाने का सद्दा दिता। पंजाब भर विच भी वख वख सरकारी ते निजी संगठनां ते संस्थावां वल्लों योग समागमां दा आयोजन। सरकार ने सोशल मीडिया ते प्रसारित हो रहे उस दावे नूं फर्जी करार दिता जिस विच कहा गया है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तहत 6,550 दी प्रोसैसिंग फीस नाल 10 लाख तक दे कर्जे दिते जा रहे ने। अंडर ग्रैजुएट मैडिकल कोर्सां विच दाखले लई नीट यूजी मुड़ प्रीख्या अज हो रही है।

नमस्कार दोस्तों, DTADA पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। इस वक्त 3:03 ते 47 सैकेंड हो चुके ने ते समा हो गया है प्रोग्राम जिठियां मिठियां दा। सत श्री अकाल जी, तुहाड़े सब दा स्वागत है तुहाड़े अपने पसंदीदा प्रोग्राम चिठियां मिठियां ते। मैं तुहाड़ी अपनी आरजे पूनम सेठी तुहाड़े घरां दे रेडियो सैट राहीं सिद्धा तुहाड़े दिलां तक जुड़ रही हाँ। आओ अज फिर कुछ होर चिठियां मिठिया मिठिया चिट्ठियां तुहाडे नाल सांझियां करिए। हाँ जी दोस्तों, जिहड़ी चिट्ठी मैं पढ़न जा रही हूँ वो आई है मॉडल टाउन करनाल तो। भेजन वाले ने सुधीर नूतन, सुनीता जैन, संदीप गुगलानी, सुनीता शर्मा, मीनाक्षी तिवाड़ी ते हरिपाल कौर। इन्हां ने फरमाइश की है कि अमरिंदर गिल दी आवाज़ विच गीत सुनना चाहते हैं। आपां तुहानूं थोड़ी ही देर च ये गीत जरूर सुनावांगे, मगर थोड़ियां जिहियां कुछ होर चिट्ठियां पढ़न तो बाद। इन्हों तो अलावा जिन्ह ने चिट्ठी लिखी है वो आई है करणवीर हाउस, गुरु गोबिंद सिंह नगर, पूछों कैंचियां तो। भेजन वाले ने प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर ते सिमरन, उन्होंने कुछ होर सज्जन मित्र उन्होंने भी नाम लिखे ने, कुलदीप, एकम, दमन ते अभिजोत। इन्हों तो अलावा पंचकुला सैक्टर 9 तो चिट्ठी आई है, लिखन वाले ने आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भाविक डिंगरा। तो एक छोटा जहा मैसेज भी लिखा है, मुस्कुराहट भी एक खुशी है, लीजिए और दीजिए, कुछ भी कम नहीं होगा। बहुत ही सोहना जहा मैसेज लिखा है। इन्हों तो अलावा जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो आई है गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो। भेजन वाले ने हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक। इस तो अलावा चिट्ठी लिखी है इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी, सागर, हनी लॉट, दर्शन लॉट ते सरगुन ने, मसीता डब वाली तो। ते जिवें कि मैं तुहानू कहा सी कि एक चिट्ठी आई है जिहदे च उन्होंने फरमाइश की है कि वह अमरिंदर गिल की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, तो आपां तुहानू यह गीत जरूर सुनावांगे। अमरिंदर गिल की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत है सोचा विच तू। आओ सुनते हैं गीत।

हाँ जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिठियाँ मिठियाँ, तो इस वक्त मैं आरजे पूनम सिटी थोड़े सारे दे नाल जुड़ी हुई हाँ। वैसे कहिंदे ने चिट्ठी दिल दा सुनेहा हुंदी है, तो जदों गल चिठियाँ मिठियाँ दी होवे तो मिठास होर भी वध जांदी है। आओ सुनते हैं अज साडे किसी प्यारे स्रोते ने की खास भेजा है सानू। हाँ जी दोस्तों, चिट्ठियाँ बहुत सारिया ने। चिट्ठी आई है बागा पुराना तो, सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा पोतरा, तेग फतेह सिंह रखरा पोतरी, जसगुन रखरा। तो ये सरदूल सिकंदर की आवाज़ में गीत सुनना चाहते हैं, आप थोड़ी देर जरूर गीत सुनावे। इन्हों तो अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है वो ने पिंड शेरगढ़ मलोट तो, चिट्ठी लिखन वाले ने शिवराज सिंह मान, सुखदेव मान ते सेवा सिंह मान। फिर चिट्ठी आई है सैक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ तो, लिखन वाले ने टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका तो। इन्हां दे कुछ होर सज्जन मित्र ने शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज ते बिट्टा बजाज। इन्हां तों अलावा सानू जिन्हां ने चिट्ठी लिखी है वो आई है पिंड कुड़ियाना मंडी अरनी वाला फाजिलका तो, भेजन वाले ने बाबा त्रिलोक सिंह, दोता शिव जोत सिंह, गुरसिमरन, राजदीप प्रीत ते कुछ दोस्तों के नाम भी लिखे ने, बलतेज कुड़ियाना ते भोला सुहाग। इन्हां तों अलावा जिन्हां ने चिट्ठी लिखी है उन्हें मेहस गेट नाभा तो, सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी ते गुरमन्नत। जिवें कि मैं तुहानूं पहलां ही दस्या सी कि जिहड़ी चिट्ठी दी चिट्ठी च जिहड़ी फरमाइश आई है वह आई है सरदूल सिकंदर दी आवाज़ विच गीत सुनना चाहते ने बागा पुराना तो, सतनाम सिंह रखरा, अमरजीत कौर रखरा पोतरा, तेग फतेह सिंह ते पोतरी जसगुन रखरा। तो आओ सुनते हैं गीत सरदूल सिकंदर की आवाज़ विच एक कुड़ी दिल उत्ते छा गई। बहुत ही खूबसूरत गीत है, आओ सुनते हैं गीत।

जी दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है चिट्ठियां मिठियां, ते जेड़े स्रोते साढ़े नाल हुने हुने जुड़े ने, मैं उन्हां दा भी दिल दी गहराई तो निघा स्वागत करती हाँ। मैं आरजे पूनम सेठी इस वक्त इस प्रोग्राम नूं पेश कर रही हाँ। ते दोस्तों, चिट्ठियां सिर्फ कागज़ दा टुकड़ा नहीं हुंदियां, ये जज्बातां दा शीशा हुंदियां हन। इन्हां चिट्ठियां विच लिखिया एक एक लफ्ज़ बहुत गहरे जज्बात बयान करता है। मैं बेनती करांगी कि सारे स्रोते अपनी तवज्जो बख्शन, क्योंकि हुण असी कुछ होर अहम चिट्ठियां दे पैगाम पढ़न जा रहे ने। दोस्तों, चिट्ठी आई है जमशेदपुर तो। हरजिंदर सिंह पाठिया, एंजल पाठिया, नवनीत पाठिया, पप्पी पाठिया ने चिट्ठी लिखी है। इन्हां तो अलावा जिन्हां ने सानू चिट्ठी लिखी है, उन्हें चकला बाजार समाना तो पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल। इन्हां तो अलावा जिन्हां ने चिट्ठी लिखी है, वह आई है श्री गंगानगर तो, बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। वे चिट्ठी आई है ज़िला लुधियाना तो, मुल्लापुर मंडी तो। चिट्ठी लिखन वाले ने कृष्ण गोपाल शर्मा, राज शर्मा, मंजू शर्मा, आशीष शर्मा, बिट्टू जैन, दीपक जैन। फिर उन्होंने ही कुछ होर सज्जन मित्र ने पुरानी मंडी मुल्लापुर तो, राजेश जैन, अरुणा जैन, आकाश जैन, गौतम जैन, रसगुल्ला जैन, नगीना जैन। फिर मुल्लापुर दाखा मंडी तो कृष्ण गोपाल शर्मा, बिट्टू जैन, टीटू जैन, जे बी राव, मनोज जैन, समता जैन ते मोनू जैन। फिर चिट्ठी आई है पिंड आजम वाला, तहसील फाजिलका तो। लिखन वाले ने सोहन सिंह बूक, निशान सिंह बूक, सीरत कौर, कीरत कौर, अमर लाल, दादी जसवंत कौर, बलविंदर कौर बूक, सुरिंदर कौर बूक, राज सिंह मिस्त्री, पंड माहुआणा, बोदला ढानी तो, नेड़े अरनी वाला तो।

अमरलाल, फेना तो अलावा जिन्होंने चिट्ठी लिखी है वो आई है सादुल शहर तो। लिखन वाले ने ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। इन्हों तो अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है वह आई है बठिंडा रोड डब्वाली तो राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग ते मोहित नारंग। फिर एक चिट्ठी लिखी है सानू जिला फाजिलका तो पिंड बाजीदपुर तो भोमा तो बलजीत सिंह, जग्गा सिंह मैंबर वडिंग खेड़ा तो भोला सिंह। तो लिखते ने गीत सुना दो जी, रणबीर सिंह राणा ते नरिंदर बीबा दी दा गीत है, गीत दे बोल ने नी बलिए। ते वह सानू सत श्रीकाल भी लिख रहे ने, सत श्रीकाल तुहानू भी बहुत बहुत। ते आओ सुनदे हैं गीत नी बलिए, नरिंदर बीबा ते रणबीर सिंह राणा।

राजना बिरंग चोवे जाऊ तरती दसुआ पिंडा होवे जाऊ तरती दसुआ पिंडा होवे दुपट्टा गुलाबी गोरे रंग।

हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं आर जी पूनम सेठी तुहाड़े नाल जुड़ी हुई हाँ। वैसे सियाने कहंदे ने कि चिट्ठी अद्धी मुलाकात हुंदी है, आओ इस मुलाकात दा आनंद मानिए। हुण कुछ होर आप चिट्ठियां पढ़ लैने हाँ। चिट्ठियां तो बहुत ने, ढेर लगे पए ने, मैं तो एक एक करके लभ रही हाँ तो देखदी हाँ कि चिट्ठी पढ़नी चाहिए है तो कि नहीं। तो हुण जिहड़ी मैं चिट्ठियां पढ़न जा रही हाँ ये आई है, एक एक करके मैं सारी चिट्ठियां पढ़ांगी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना तो लिखण वाले ने विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूरा ही पूरी परिवार है, पूजापुरी, गगन कपूर, गुंजन कपूर, लालसा कपूर, उन्होंने कुछ रिश्तेदार भी ने, रमा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेशपुरी, विनोदपुरी, पालीपुरी, डीसीपुरी, अरुणपुरी, नेहापुरी, एकतापुरी, शम्मीपुरी, बोडीपुरी।

सुनील पुरी, वीके पुरी, आरएस पुरी, बहुत ही वड्डा परिवार है। तो इदा लगता है कि इन्हां सारिआं दा आपस च प्यार बहुत है, क्योंकि सारिआं दे नाम लिखे, कोशिश इन्हां ने कीती कि सारिआं दे नाम आ जाने इक निक्की जी चिट्ठी च, ते कोई भी फैमिली मैंबर रह ना जावे, है ना। चंगी गल है, इदां ही प्यार बनिया रहना चाहिए है। फिर चिट्ठी आई है टाली वाला जट्टा तो, साहिब सिंह, सुखजीत कौर, बलविंदर कौर, हरजिंदर, इन्हां दे ही कुछ सज्जन मित्र ने, रिश्तेदार ने, गिदड़बाहा तो मनजीत तनेजा, प्रवीन तनेजा। इन्हों अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है लिखते ने, कृपया अपनी ही पसंद का कोई नगमा सुना दे। नहीं जी, असी तो तुहाड़ी ही पसंद का नगमा सुनावांगे। ये चिट्ठी आई है जमशेदपुर तो, हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत पाटिया ते पप्पी पाटिया। फिर मंडी गोलू वाला राजस्थान तो बहुत दूरों चिट्ठी आई है, लिखण वाले ने ब्रिजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान, तो लिखते ने, श्रीमान जी, आकाशवाणी स्टाफ सहित नमस्कार एंड सत श्री अकाल जी। कार्यक्रम पेशकर्ता नूं नमस्कार अते सत श्री अकाल जी। अपनी पसंद का कोई पंजाबी गीत सुना दिया जाए। असी सुनावांगे तुहानूं तुहाड़ी ही पसंद दा इक गीत थोड़ी ही देर च। फिर इस तों अलावा चिट्ठी आई है ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां दी, आज़ाद नगर लक्षर, हरिद्वार तों। फिर सानू जिहड़ी चिट्ठी आई हो आई है पिंड नथाना, ज़िला बठिंडा तों, लिखण वाले ने हरजिंदर छिंदा, जसवीर, रेखा, गगन, सोनी, सीता ते गीता। तो जिहड़ी आ चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी लिखी है, मैं पहला भी इन्हां दे नाम पढ़ चुकी, एक होर फरमाइश थी, इन्होंने चिट्ठी भेजी है, डॉक्टर बनवारी जयपाल, बिमला जयपाल, सोनू जयपाल, ममता जयपाल, मोक्ष, दिशा, सुशांत, विक्रम जयपाल। तो ये गायक सर्वजीत शर्मा की आवाज़ में कोका गीत सुनना चाहता है, चाहते ने कोका कड़वा दे। सर्वजीत शर्मा की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत गीत है, कहिंदे ना ओल्ड इज़ गोल्ड, ये वो गीत है जिहड़ा गोल्ड है। तो आओ सुनते हैं गीत।

हाँ जी दोस्तों, इस वक्त मैं आरजे पूनम सेठी इस प्रोग्राम नू पेश कर रही हाँ। दोस्तों, अज दे डिजिटल जमाने विच मैसेज तो बहुत आते हैं, पर जो सुकून हत्था नाल लिखी चिट्ठी विच है वह होर किधरे नहीं। चिट्ठियां सिर्फ सुनेहे नहीं हुंदियां, ये बीते समय दियां यादां दा एक अनमोल खजाना हुंदियां ने। इन्हां चिट्ठियां दे पन्नियां विच अपन्नत प्यार ते सत्कार दी बहुत ही प्यारी महक आंदी है। लाओ जी, हुण तुहाडे सबर दे बन्न होर ना परगदे होए मैं खोलन जा रही हाँ मुहब्बतां दे कुछ होर लिफाफे। आओ सुनदे हाँ कि दूर बैठे साडे सजना मित्रां ने अज दे इस शुभ दिहाड़े दे की पैगाम भेजे ने। हाँ जी दोस्तों, चिट्ठियां होर भी ने, एक एक करके आपां पढ़दे हाँ, थोड़ा जिहा समां रह गया है। चिट्ठी आई है आदर्श नगर मलौट तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेहंदी शर्मा, सौरभ शर्मा ते शाइना शर्मा वालों। एक होर नाम है निवान शर्मा, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है इन्हां दे नाल। फिर चिट्ठी आई है खुरजापुर उत्तर प्रदेश तो तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा ते अंकुश अरोड़ा ने चिट्ठी लिखी है। इन्हां तो अलावा राजस्थान तो भी चिट्ठी आई है, लिखते ने श्री सत श्री अकाल जी, आकाशवाणी स्रोता संघ वालों चिट्ठी आई है। भेजन वाले ने सुलंकी, रंजीत सुलंकी, धर्म पत्नी परमजीत कौर सुलंकी, विष्णुदेव सुलंकी, राजवीर सुलंकी, रमन राठौर, जस्सू पवार, जगवीर सुलंकी ते पूरा ही परिवार वालों ये चिट्ठी आई है। इन्हों अलावा जिन्होंने सानू चिट्ठी लिखी है वह आई है सादुल शहर तो ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान। फिर चिट्ठी आई है कोटली कलां पंजाब तो, लिखन वाले ने जादविंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, रविंदर सिंह, मनजीत सिंह ते गुरजोत सिंह। इन्हों अलावा एक चिट्ठी आई है, पूरा जड़ा चिट्ठी है वह भरी पई है, लिखी हुई है, आप एक एक करके सारे शब्द पढ़ेंगे, एक एक लाइना पढ़ेंगे। लिखते ने पिंड कोटली अबलू श्री मुक्तसर साहिब तो चिट्ठी आई है। लिखन वाले ने सीता राम केसरी, उदय प्रताप सिंह कोटली, देबी कोटली, रूप सर्विस स्टेशन तो किंदा बराड़, बराड़ मोटरों वाला, रवनीत, विरिंदर, जसकरन ते जसकरन गंगा, फिर चित्रकार रशपाल, टैटू आर्टिस्ट कोटली, दीपू कोटली, राणा डीजे। अच्छा, इन्होंने फरमाइश की है, वैसे ना मैनू पढ़न च प्रॉब्लम आ रही थी, बट मैं फिर तो एक बार थोड़े ना गुजारिश करती हाँ कि तुसी जो लिखते हो ना उन्होंने बड़ा वधिया तरीके ना लिख के भेजा करो, ताकि असी थोड़े नाम भी वधिया तरीके ना पढ़ सकीए। तुसी कित्थों ओ जिहड़ा शहर है या कस्बा है उन्हों भी बहुत वधिया तरीके ना असी पढ़ सकीए। तो इन्होंने वैसे जिहड़ी फरमाइश की है टिकट दो गीत सुनना चाहते हैं कवर गरेवाल की आवाज़ में। आओ तुहानू सुनांदे गीत, बहुत ही सोहना जिहा गीत है, आओ सुनते हैं गीत।

हां जी दोस्तों, हुन समा हो गया है तुहाडे तो इजाजत लैण दा। उम्मीद है अज दियां चिट्ठियां मिठियां ने तुहाडे चेहरियां ते मुस्कान जरूर लियांदी होवेगी। कल फिर मिलांगे इसे समय इसे चैनल ते। हसदे रहो, वसदे रहो ते जुड़े रहो। सत श्री अकाल। मगर

0: के इस शुमारे में हम लाए हैं एक तकरीर, अफसाना और शेरी कलाम। जदीद उर्दू शायरी रवायती गज़ल और नज़्म की हदों से निकलकर ज़िंदगी के बदलते रंगों को अपना रही है। नए एहसासात में उम्मीद के साथ साथ इज़्तिराब, सवाल के साथ साथ खुद एहतिसाबी और एहतिजाज के साथ साथ हमदर्दी भी शामिल है। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर भूपिंदर अजीज़ परिहार की तकरीर। उन्वान है, जदीद उर्दू शायरी में नए एहसासात और मौजूआत।
1: हम कलम प्रोग्राम के सामेईन को डॉक्टर अजीज़ परिहार का पुरखलूस सलाम आदाब। मैं अपनी तकरीर जदीद उर्दू शायरी के अहम सरोकार पेश करता हूँ। ये बहुत बड़ा कैनवस है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कुछ इशारे आपकी खिदमत में पेश करूँ, तारीखी तनाजुर में भी और अदबी एतबार से।

हम वार कर चुके थे। मीरा जी और राशिद की रिवायत को जदीद शोरा ने आगे बढ़ाया और ऐसी नज़में और गज़लें लिखीं जो बिल्कुल हटकर थीं और बिलाखिर यासियत का मंशूर साबित हुई। वो अख्तर उलेमान हों या बलराज कोमल, शहर यार हों या निदा फाजली, शीन काफ निज़ाम हों, प्रतपाल सिंह बेताब हों, सलाहुद्दीन परवेज़ हों, फैयाज फारूकी हों, ये सब तन्हाई यासियत ज़ात का कर्ब इनकी शायरी में एक गालिब रुझान बनकर उभरता है। उनकी शायरी हुजनिया लय यानी ट्रेजिक रिदम को जाहिर करती है। ये इनफरादी ज़रूर है लेकिन किसी हद तक जदीद शायरी की पोइटिक्स मीर के लहजे की तौसी है। ये शायरी मीर के लहजे की तौसी यानी एक्सटेंशन तो है ही, साथ ही अपने दौर की अक्कास भी है। अब इंशा और नासिर काजमी और बानी ने अलग हटकर एक नए शेरी आहंग की तख्लीक की। उन्होंने नई तरकीब का इस्तेमाल किया। मैं चंद अशार पेश करता हूँ। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जदीद उर्दू शायरी के सरोकार किस तरह के रहे हैं। मुलाहजा हो, जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है, हर घड़ी होता है एहसास कहीं कुछ कम है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक यह ज़मीं कुछ कम है। शहरिया, ऐसा हंगामा न था जंगल में, शहर में आए तो डर लगता है। मोहम्मद अलवी। हम पे दुनिया हुई सवार जफर और हम हैं सवार दुनिया पर। जफर इकबाल। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे और अब कोई कहीं रहता है। दिल फसरदा तो हुआ देख के उसको लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हसीं रहता है। अहमद मुश्ताक। कब से मिट्टी हूँ ज़रा दस्ते इनायत मुझे दे कूजागर, अब कोई गर्दिश कोई सूरत मुझे दे। इरफान सदीकी। बस अब तो अगला सफ़र खुशकियों का आता है, हमारी राह के दरिया उतरते जाते हैं, जहाँ में कुछ नहीं होता किसी के करने से, ये लोग फिर भी कोई काम करते जाते हैं। प्रेम कुमार नज़र। जिहादे जिंदगानी में अभी भी करबला यूं है, शफा लेकर कोई जैसे किसी बीमार तक पहुँचे, रवादारी इजाज़त दे रही थी सिर्फ गर्दन तक, वो कटकर रह गए जो हाथ भी दस्तार तक पहुँचे। सलाम से इक्तबास भाई फैयाज फारूकी। तेरी आँखें खुदा महफूज रखे, तेरी आँखों में हैरानी बहुत है। शीन काफ निज़ाम। सोचता हूँ मैं कि सोचा जाए क्या, क्या न देखें और देखा जाए क्या, धुंध के उस पार कुछ हलचल तो है, कोई समझाए कि समझा जाए क्या। चंद्रभान ख्याल। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। निदा फाजली। वो जो लाया था हमको दरिया तक, पार अकेले उतर गया होगा। जावेद अख्तर। पानी से उलझते हुए इंसान का शोर, उस पार भी होगा, इस पार बहुत है फरहत एहसास। जूं तेरे ध्यान से लरसता हूँ, जैसे पत्ते हवा से डरते हैं। नासिर काजमी। आज एक लहर भी पानी में न थी, कोई तस्वीर रवानी में न थी। बानी। जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं। कृष्ण बिहारी नूर। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना। मुनीर न्याजी। चला जाता मैं इसको छोड़कर शायद बहुत पहले, अभी इस शहर में लेकिन मेरे कुछ काम बाकी हैं। बलराज कोमल।

0: कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। बशीर बद्र। हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहाँ से आए हैं, जाने कहाँ के थे। जॉन एलियट। दस्त को जा तो रहे हो, सोच लो कैसा लगेगा, सब उधर ही जा रहे हैं, दस्त में मेला लगा है। शुजा खावर। क्या खबर है आपको अब एटमी जंगों के बाद, चांदनी शब देखने को बस खुदा रह जाएगा। कृष्णदीप। पाँव के नीचे ज़मीं खिसकी तो याद आया खुदा, शुक्र है उसने सरों पर आसमां रहने दिया। आज़ाद गुलाटी। ऊंचा पहाड़ दफन हुआ गहरी खाई में, खामोश देखते रहे अपना जवाल हम। अब जो किसी का अज़्म सफ़र ही नहीं रहा, अब रास्तों में कोई सौबत नहीं रही, बेताब होशियार सभी करतबों में थे, कुछ बात थी जो हमने तमाशा नहीं किया। राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, राह मजमून ताज़ा बंद नहीं, ता क़यामत खुला है बाब सुखन। बेहद शुक्रिया।
1: सामाइन, अभी आप डॉक्टर भूपेंद्र अजीज की तकरीर सुन रहे थे। तो आइए आपको लिए चलते हैं बज़्म सुखनवरी की जानिब। यहाँ आप मोहतरमा महक भारती का कलाम समात फरमाएंगे।
2: कुछ

0: अभी आप शायरा महक भारती के कलाम से महजूज हो रहे थे। तो प्रोग्राम हम कलम की आखिरी सिनफ है अफसाना, तो अपने अफसाने लेकर हाजिर हैं अफसाना निगार मोहम्मद अनीस।
1: प्रोग्राम सब रंग के समयीन को मेरा आदाब। मेरा पहला अफसाना आपकी पेशे खिदमत है, जिसका अनुमान है यकीन। शाम के 4 बज रहे थे, शहबाज अपने कुछ दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक शहबाज की निगाह मॉल में जा रही शबनम पर पड़ी। वो एकदम चौंका, क्योंकि शबनम के साथ एक लड़का भी था जिसे शहबाज ने पहले कभी नहीं देखा था। शहबाज अपनी मोटरसाइकिल सेट पर लगाई, अपने दोस्तों से इजाज़त लेकर वो मॉल में शबनम और उस लड़के का पीछा करने लगा। शबनम के साथ इसकी खाला की लड़की नसरीन भी थी, जिस पर शहबाज की अब नज़र पड़ी थी, क्योंकि मॉल में जाते वक्त वो सिर्फ शबनम और उस लड़के को ही देख रहा था। क्योंकि जब वो मॉल में दाखिल हो रहे थे, वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। शहबाज ये नज़ारा देख कर जल बुन गया था। उसके दिल व दिमाग में कई तरह के बुरे ख्यालात पैदा हो रहे थे। शहबाज को दूसरे लड़के के साथ देखकर काफ़ी परेशान था। जिस तरह शबनम जूं जूं उस लड़के के साथ खिलखिलाकर बात कर रही थी, शहबाज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। शबनम पर इसका शक यकीन में बदल रहा था। वो परेशान था, ये लड़का आखिर है कौन? कुछ दिन पहले ही तो दोनों ने शादी करने की कसम खाई थी। शहबाज के ख़ानदान का शहर में काफ़ी नाम था। उसके वालिद का नाम शहर के जाने माने लोगों में शुमार था। शबनम के डैडी भी शहर के बड़े वकील थे, उनकी भी शहर में काफ़ी शोहरत थी। शहबाज को महसूस हो रहा था कि उनके घर वाले कभी भी उनकी शादी के लिए मना नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों के ही ख़ानदान शहर के मशहूर और रईस लोगों में से हैं। शहबाज परेशान था कि शादी का पैगाम शबनम के घर वालों तक कैसे पहुँचाऊँ। शहबाज ने शबनम से भी इसके बारे में कई बार बात की। दोनों ही इस बात को लेकर कुछ दिनों से परेशान थे। शबनम शहबाज से मिलने भी न थी, ना ही कोई फ़ोन पर बात हुई थी। अब अचानक शबनम को एक लड़के के साथ मॉल में दाखिल होते देखकर शहबाज काफ़ी गुस्सा और परेशानी में था। उसको मुनासिब नहीं लग रहा था कि वो उनके करीब जाए और हंगामा खड़ा कर दे। इससे शबनम की रसवाई का भी डर था, मगर वो अपने आप को रोक भी नहीं पा रहा था। इसी कशमकश में एक घंटा बीत गया। शबनम, नसरीन और लड़का अब मॉल से जा चुके थे और शहबाज अपने ख्यालों में खोया हुआ था। अगले ही दिन सुबह सवेरे शबनम का फ़ोन आ गया। जब शहबाज ने फ़ोन उठाया, वो उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। वो उसको बताने लगी कि जनाब शहबाज साहब, शादी की तैयारियाँ शुरू कर लो, अम्मी अब्बू मान गए हैं। नसरीन का भाई जावेद, जो दुबई से परसों आया था, मैंने और नसरीन ने उसे हम दोनों के प्यार की सारी बातें बता दी। कल हम मॉल गए थे, उसने घर आकर अम्मी अब्बू से बात भी कर ली और वो रजामंद भी हो गए हैं। हो सकता है नसरीन का भाई जावेद और अम्मी अब्बू शाम को आपके घर हमारी शादी का पैगाम लेकर आएं। शबनम खुशी खुशी में सब बातें बताई जा रही थी और शहबाज गुमसुम होकर सब सुन रहा था और अपने ख्यालों में खोया हुआ अब वो शबनम पर अपना खोया हुआ यकीन ढूंढ रहा था। साथ ही दिल में जावेद को दुआएं भी दे रहा था। समईन, मेरा दूसरा अफसाना, जिसका अनुमान है अदाकार। एसडीओ श्याम लाल की ट्रांसफ़र इसी शहर में हुए कुछ ही दिन हुए थे। ये शहर उनके लिए अजनबी था, वो यहाँ किसी को नहीं जानते थे। एसडीओ साहब के घर के करीब ही बनवारी नाम का एक आदमी रहता था, जो उन्हें सुबह को दफ्तर जाते और शाम को आते वक्त नमस्ते किया करता था। कई बार बनवारी ने एसडीओ साहब से बड़े खलूस से कहा था कि उसके लायक कोई सेवा हो तो ज़रूर बताएं, पड़ोसी होने के नाते ये उसका फ़र्ज

बनता है। एसडीओ साहब बनवारी के रवैये से बहुत मुतासर थे। एक दिन सुबह को एसडीओ साहब दफ्तर के लिए रवाना हो रहे थे कि बनवारी ने आगे बढ़कर उनका रास्ता रोक लिया। बनवारी की आंखें काफ़ी सुर्ख थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। बनवारी ने एसडीओ साहब से कहा कि सर, आपसे एक विनती करनी है। एसडीओ साहब ने बड़ी नरमी से पूछा, बताइए। बनवारी ने बात शुरू की, जी वो मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। जी वो मेरे इकलौते लड़के तस्सीम को पिछले 10 दिनों से बुखार है, मैं बहुत परेशान हूँ, अगर आप मेरे कुछ सहायता कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। एसडीओ साहब ने बग़ैर वक्त ज़ाय किए 2 5-500 के नोट अपनी जेब से निकालकर बनवारी की तरफ बढ़ाए। अगर और ज़रूरत हुई तो शर्माने की बात नहीं, बिला झिझक कह देना, सवाल बच्चे की ज़िंदगी का है। एसडीओ साहब ने उसका कंधा छूते हुए कहा और आगे बढ़ गए। एसडीओ साहब सारा दिन बनवारी और उसके बेटे के बारे में सोचते रहे। हसबे मामूल रात का खाना खाने के बाद जब वो सैर के लिए रवाना हुए तो चलते चलते अचानक उनकी नज़र एक शराब की दुकान पर पड़ी, जहां पर एक आदमी के साथ बनवारी बैठा शराब पी रहा था और अपने साथ में कैके लगाकर उसको बता रहा था, तुम पूछते हो ना कि आज मेरे पास 1000 रुपये कहाँ से आए? अरे हमने अपनी अदाकारी से कमाए हैं। अदाकारी से? साथ बैठे आदमी ने पूछा। अदाकारी से? तुम अदाकार भी हो? वो फिर कहके लगाकर बोला, करनी पड़ती है यार, करनी पड़ती है। आज एक एसडीओ साहब के सामने ऐसी अदाकारी की कि उसकी छुट्टी कर दी। साले ने 1000 रुपये निकाल कर फौरन मेरे हाथ पर रख दिए। कहो, हुआ ना मैं बड़ा अदाकार? इसके फातना कहके बुलंद हो रहे थे। दूसरा आदमी अपने गिलास में शराब उडेलने में मसरूफ था। मेरा अगला अफसाना आपकी पेशे खिदमत है। गरीब सोहन के बाप दादा उसके लिए काफ़ी जायदाद छोड़ गए थे। वो अपने तमाम रिश्तेदारों में सबसे ज़्यादा अमीर था। उसको अपने अमीर होने पर काफ़ी गुरूर था। सोहन ने अपने दूसरे रिश्तेदारों से कम ही बात करता था जो गरीब थे। सोहन गरीबी को ज़िंदगी की सबसे बड़ी लानत समझता था, इसलिए सोहन को लफ्ज़ गरीब से चिढ़ थी। सोहन ने अपना नया कारोबार शुरू किया तो देखते ही देखते वो काफ़ी तरक्की कर गया। वो मिट्टी को हाथ लगाता वो भी सोना बन जाती। पैसा तो सोहन के पास पहले ही बहुत था, मगर और आ जाने से वो हवाओं में ही उड़ने लगा था। अब तो वो गरीब लोगों से और भी ज़्यादा नफरत करने लगा और अपने से ज़्यादा अमीर लोगों के करीब जाने लगा। अब वो शहर का अमीर तरीन आदमी बनकर उभरा था। सोहन का जब दिल करता वो अपने अमीर दोस्तों को पार्टी देता। पार्टी में वो अपने अमीर होने की पूरी नुमाइश करता। पार्टी में वेटरों और छोटे लोगों को खूब बेइज्जती करता। एक दिन अचानक जब सोहन पर इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी तो उसके होश उड़ गए। इनकम टैक्स वाले अपनी पूरी टीम के साथ सोहन के घर आ गए। उन्होंने पुलिस की मदद से उसके घर का फर्नीचर और तिजोरियों को तोड़ डाला, जिसमें करोड़ों रुपए और 8-10 किलो सोना काले धन के तौर पर पकड़ा गया। सोहन पूरी तरह घबरा गया। वो अब इनकम टैक्स के आला अफसरान की मिन्नतें कर रहा था, सर सर मुझे प्लीज छोड़ दें, सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सर मैं गरीब आदमी हूँ। ये सब मीडिया वाले इसके अदा किए अल्फाज गरीब और गिड़गिड़ाने को अपने कैमरों में उतार रहे थे। मेरा अगला अफसाना है जी मदाह। असलम इंडिया क्रिकेट टीम का बेस्ट बॉलर है। जब से वो इंडिया की क्रिकेट टीम में शामिल हुआ था उसी दिन से उसने अपना एक खास मुकाम बना लिया था। असलम को कई बार मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का एजाज भी मिल चुका है। असलम ने बहुत ही कम वक्त में काफ़ी नाम और शोहरत कमा ली। नसीम असलम का बहुत बड़ा मुद्दा था। नसीम को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो अपना आइडियल असलम को ही मानता था। नसीम असलम के बारे में सारी मालूमात रखता था कि असलम को क्या पसंद है और क्या नहीं, क्या पहनता है, क्या खाता है, किन लड़कियों से उसका अफेयर चला

0: उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। नसीम के दोस्तों को भी इस बात का इल्म था कि नसीम असलम का बहुत बड़ा फैन है, दीवाना है। किसी अखबार या रसाले में उसकी फोटो छपती तो नसीम जरा भी देरी न करता।
1: मोहम्मद अनीस साहब के अफसाने के साथ ही प्रोग्राम हम कलम अब अपने अंजाम पे पहुंचता है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। सामाइन, हमें आपके खतूत का इंतज़ार रहेगा। अगले माह की मुलाकात के वायदे के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
2: एसी उर्दू पत्रिका हम कलम असी तुहानूं दस्सदे कि अज शाम 6:30 बजे तुसी साढ़े आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों सुनोगे ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 ते आधारित जिहड़ा है मैच है खेडा जाएगा भारत ते साउथ अफ्रीका दीआं टीमां दरमियान। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हाँ। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए है जलंधर केंद्र। थानू दस दईए कि तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो ते इस समय शाम दे 4:30 होए ने। हुण असी थानू श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हाँ जिथों तुसी शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे।

तुझ बिन कवन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा। अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। सर्ब सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगह अतोले। ए प्रोसा, उना जीव रूप स्त्रियां दा हुंदा है, जिना दी प्रीत प्रभु नाल हुंदी है, ते उना नू प्रभु नाल प्रीत ही प्यारी लगदी है। उना दी अवस्था ता ए हुंदी है कि ओ परमात्मा दे नाम च मगन हो जांदियां ने, ते नैणा दे विच उस परमेश्वर दे दर्शना दी तांग रहिंदी है। प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। सरवण करदे हां भाई हरबंस सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ये शब्द।

प्रिय की प्रीत प्यारी, मगन मने मैं चितवा वासा, नैनो तार तुहारी। इस शब्द गायन की तासी पाई हरबंस सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने। अकाल पुरख प्रभु नाल प्रीत रखण वालियां दा मन उस अकाल पुरख दे चरना नाल लग जांदा है, क्योंकि ओ परमेश्वर दयालु है, घट घट की जानण वाला है। उस दे चरना विच चित लाया किसे प्रकार दी चिंता नेड़े ही नहीं आउंदी। मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। सरवण करदे आं भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उन्हां दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द।

0: मन बेध्या दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह जख्मी ते उनादे रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी सिवतार सिंह।
1: ए पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 795 उपर अंकित है। इस शब्द नूं बिलावल राग अंदर श्री गुरु नानक देव जी द्वारा उच्चारण किया गया है। गुरु साहिब परमात्मा की बेअंतता नूं बयान करदे आ फरमाउंदे हैं।

तन ओ प्रीत चरण संग लागी, कूट जाप ताप सुख पाए, आए मिले पूरन बड़पागी। इस शब्द का गायन कीता सी पाई चन्नण सिंह मजबूर ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को लेकर वार्ता आज स्विट्जरलैंड के बर्गनस्टॉक में शुरू हो गई है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जे डी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जब ईरान ने कहा है कि लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया गया है। वहीं अमरीकी सेना का कहना है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित नौसेना के तीन पोत INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय राष्ट्र को समर्पित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके वे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की

परीक्षा आज कड़ी सुरक्षा के बीच देश के 5,000 से अधिक केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर आयोजित की गई। 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। भारत ने FIH महिला हॉकी नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। आज ऑकलैंड में फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर दूसरी बार खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: योग नूं भगती दा एक साधन बनाया। 8वीं सदी दीआं बोधी लिखतां विच सानूं हठ योग दा हवाला मिलदा है। हठ योग पतंजलि ते योग सूत्र नूं शरीरक आसना ते साह क्रियावां नाल मिलाउंदा है। हठ योग दा प्रचलित योग आसना ते क्रियावां दे विकास विच योगदान रहा है। 11वीं सदी विच ईरानी विद्वान अलबरूनी भारत आया ते 16 साल इत्थे रहा। उसने कई महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथां दा अरबी ते फारसी विच अनुवाद कीता। उसने पतंजलि ते योग सूत्र दा भी अनुवाद कीता। योग दर्शन नूं एकेश्वरवाद अनुसार टाल के उसने इस्लामी दुनिया तक पहुंचाया। अज भी बहुत सारे इस्लामी विद्वान ते अदारे योग नूं रूहानियत दी थां शरीरक तो मानसिक तंदुरुस्ती दा वधिया जरिया मनदे ने। वख-वख विद्वाना अते धर्म सुधारकां ने आधुनिक काल विच योग नूं मुड़ तो प्रचलित कीता। 19वीं सदी विच बंगाली विज्ञानी नवीन चंद्रपाल ने ट्रीटिस ऑन योगा फिलोसफी किताब लिख के योग नूं प्रसिद्ध करन दी कोशिश कीती। स्वामी विवेकानंद ने 19वीं सदी दे आखरी दहाके विच जदों अमरीका ते यूरोप दा दौरा कीता तां पछमी दुनिया नूं योग तो जाणू करवाया। मैडम ब्लावस्की ते थियोसफी ने भी पछमी लोकां ते योग बारे काफ़ी छाप छड्डी। योगा इंस्ट्रक्टर विपिनदीप थापर दे शब्दां विच
1: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਯੋਗੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸਤੇਂਦਰ ਨਾਥ ਜੀ ਨਾਥ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੋ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਜੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਯੋਗੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਿੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਜੀ, ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਅਯੰਗਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬੁੱਕ ਹੈ ਲਾਈਟ ਔਨ ਯੋਗਾ, ਤੇ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀ ਕੇ ਐਸ ਅਯੰਗਰ ਜੀ
0: 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
2: ਗਤ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਾ ਥਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਾ ਥਾ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਕੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਕੇ ਰੂਪ ਮੈਂ ਮਨਾਨਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕੋ ਅਚਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਕੋ ਵੀ ਅਚਰਜ ਹੋਗਾ। 100 ਦਿਨ ਕੇ ਭੀਤਰ ਭੀਤਰ 177 ਦੇਸ਼ੋ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਸੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ੋ ਕਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਾ, ਸਬਸੇ ਕਮ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਹੁਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਭੂ ਭਾਗ ਇਸ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ। ਕਿਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀਏ ਕੇ ਲੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੌਰਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮਾਰੀ ਬਨਤੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਭੀ ਸੋਚਾ ਥਾ ਹਮਨੇ कि योग विश्व को भी जोड़ने का एक माध्यम बन सकता है? वसुधैव कुटुंबकम हमारे पूर्वजों ने जो कल्पना की थी उसमें योग एक कैटलिक एजेंट के रूप में विश्व को जोड़ने का माध्यम बन रहा है। कितने बड़े गर्व की खुशी की बात है, लेकिन इसकी ताकत तो तब बनेगी जब हम सब बहुत बड़ी मात्रा में योग के सही स्वरूप को, योग की सही शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत करें। योग दिल और दिमाग को जोड़ता है, योग रोग मुक्ति का भी माध्यम है, तो योग भोग मुक्ति का भी माध्यम है। और अब तो मैं देख रहा हूं योग शरीर मन बुद्धि को ही जोड़ने का काम करे, उससे आगे विश्व को भी जोड़ने का काम कर सकता है। हम क्यों न इसके एम्बेसडर बने, हम क्यों न इस मानव कल्याण के लिए काम आने वाली इस महत्वपूर्ण विद्या को सहज उपलब्ध कराएं। हिंदुस्तान के हर कोने में 21 जून योग दिवस मनाया जाए।
0: 21 जून 2015 नूं पहला कौमांतरी योग दिवस मनाया गया। उदों तों हर साल यह दिवस पूरी दुनिया विच मनाया जांदा है। हर साल इस दिन योग शिविर लगाए जांदे ने, आम लोकां नूं योग प्रति प्रेरित किया जाता है। नौजवान, बुजुर्ग, मर्द, औरतां, नौकरी पेशा, कारोबारी, हर तबके के लोग योग सीखते हैं। 2020 विच कोविड-19 की महामारी के चलद्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों घर विच रह के ही योग दिवस मना

0: दिले के हा विपिनदीप थापर दे शब्दां विच
1: कोविड दे दौरान देखन दे विच आया कि प्राणायाम दा अफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। दवाइयां दे नाल नाल कोविड दे विच जो प्राणायाम दीयां टेक्निक्स ने जिवें कि अल्टरनेटिव ब्रीदिंग जिसनों की नाड़ी शोधन प्राणायाम कहिंदे हन, इह साडे स्पिरिचुअल माइंड नूं एक्टिव करदा है, साडे ब्रेन दीयां जो अल्फा बीटा रेज ने उहनां नूं एक्टिव करदा है। बहुत सारी सोच जो अज चेंज होंदी जा रही है न्यू जनरेशन दी, नौजवान पीढ़ी दी, तो उन्हां नूं तंदुरुस्त रखन दे लई योग बहुत हैल्पफुल होंदा जा रहा है। इस तो इलावा होर भी बहुत सारियां जिस तरह की कपालभाती दा प्रयोग कर सकते हैं पेट नूं घट करन दे लई, पेट दी चर्बी नूं घट करन दे लई, अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम गर्मियां दे विच कीते जाण वाले प्राणायाम है। जिस तरह की हुण मौसम चेंजिस हो रहा है तां इह शरीर नूं ठंडक देण वाले प्राणायाम हन। ब्राह्मरी प्राणायाम जो साढ़े मानसिक तंदुरुस्ती दे लई बहुत ही फायदेमंद है, जो कि अखां नूं बंद करके जिसनूं आपां यूज करदे हां। उद्गीत प्राणायाम, ये सारे प्राणायाम साढ़े मानसिक तंदुरुस्ती दे लई उते लंग्स दी कैपेसिटी नूं इंप्रूव करन दे लई हैल्पफुल होए हन।
0: नरेंद्र कांग दा कहना है कि
2: मनुखा शरीर पंज तत्तां तों बनिया है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज अते आकाश। बहुत सारे लोग इस शरीर नूं माया दे मोह दा मूल जान के इस नूं पित्त, कफ ते वात आदि विकारां तों बनिया होण करके इस बारे नैगेटिव सोचते हैं, पर यह गल कदी ना भुलो कि इसे शरीर करके असी चंगे कर्म करन दे समर्थ होए हाँ।

0: ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
1: Come on boys, let's go practice.
2: ओए रुक यार, मेरे बैंक खाते विच गलत एंट्री दी प्रॉब्लम हो गई है।
1: ओए तो बैंक को शिकायत करना।
2: बैंक नु लिखे एक महीना हो गया है पर वो गुगली ते गुगली सुट्टी जा रहा है। ता आरबीआई दे बैंकिंग लोकपाल नु शिकायत कर।
3: रुक मैं समझाऊंगा। जिवे क्रिकेट विच थर्ड अंपायर ओवे ही आरबीआई दा बैंकिंग ओंबड्समैन। आरबीआई कहंदा है जे बैंक तुहाडी शिकायत एक महीने विच नहीं सुलझाउंदा ता तुसी आरबीआई दे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम ते ऑनलाइन शिकायत कर सकदे हो। ए आरबीआई दा सौखा तरीका है तुहाडी शिकायत सुलझाउण दा ते ओ वी मुफ्त। आरबीआई कहंदा है जानकार।
0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
4: ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੇ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।

0: The very first delivery. Now, this is what's been happening in the first two overs. India, of course, winning the toss and batting first from South Africa's perspective. They've got two experienced bowlers out there, and that's Murray Zandkarp and Shubdeep Ismail. Now, what they've been doing is either bowling on the pads or a lot of width outside the off stump, and that is tailor-made deliveries for Smriti Mandhana and Shefali Varma to score off. Now, they'll have to try and hit the top of our ball in that corridor of uncertainty. Once again on the pass, the next delivery to Smriti Mandhana. Nicely played on the onside for one more. So, two singles of Karp's over. And Karp, of course, gave nine runs in the first over, whereas Shubdeep Ismail gave 14. And Karp gave one boundary and Shubdeep Ismail two. And that's what, from India's perspective, one must say, this is a very, very good start. Very sure start. Murray Zandkarp this time to Shefali Varma. Once again on the pads. Overbalances offense. Shefali Varma, but plays it nicely off the pads down to square leg for a single. And he bowled on the pads. He just rolled the wrists on that one. And enough runs there to get one more to Shefali Varma. She's up to 13 of 6. Smriti Mandhana is 13 of 9. India 2.3 overs. 26 for no loss. And this is certainly, that's why we say, a very, very good start for India.
1: को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है तो सरकार का जो पहल था जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ मेक इन इंडिया से क्योंकि मेक इन इंडिया इज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया बहुत बल दिया जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा इज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे तो जिसमें हम 143 थे बहुत नीचे थे मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया इज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसके बाद जो स्टेट्स ने उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया जो लोगों में बिजनेसेस में सरकार में उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू हो गई जो उसके पिलर्स हैं खास करके जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस ये चार जो पिलर्स हैं इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है जिसे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे उसके बाद अभी 220,000 हैं अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10% सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई जिससे कि हमारा जो इन्वेस्टर है जो ग्लोबल इन्वेस्टर है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 trillion से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में 1 trillion से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 billion था तो लगभग हम मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 billion का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलिएंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी
2: एब्सोल्युटली सो मिस्टर चनॉय Dr. Sharma has extensively explained that how the ease of doing business has become the mantra for the push that has come to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change or you can say paradigm shift in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
3: If you look at the whole ecosystem, right? Earlier, business was always viewed with suspicion.
2: Yes.
3: You are always seen as being a tax evader, not filing returns, always evading and finding ways to

0: बहुत एक बड़े स्कोर की तलाश में भारतीय टीम रहेगी, ताकि पहले बल्लेबाजी का निर्णय जो उन्होंने लिया उसमें वो कामयाब रहे और एक अच्छा स्कोर सामने रखे साउथ अफ्रीका के, क्योंकि बहुत ही गहरी बल्लेबाजी है साउथ अफ्रीका के पास।
1: 23 for no loss. Once again, bit outside the off-stump. First ball of caps, so they've kept a sweeper cover.

0: देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और
1: जी
0: इनमें ना ये मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक
1: हाँ,
0: है, अलग अलग स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लोन्स की
1: स्वाले थी।
0: स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है। तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी,
0: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोअस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछें कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था। और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो। एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में। और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो हैं, इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के
1: और
0: देखे।
1: कंपीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन
1: जी
0: आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन्स ने जो कोलैबोरेट किया था। देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ
1: जी
0: हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन,
1: जी
0: ठीक है, पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था, और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो औरों देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे,
1: जी
0: वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना

0: विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूँ, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट पे इंप्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपैरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
0: जी,
1: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
0: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
0: Yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हर एक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट अराउंड 7%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म

इंग्लैंड की धरती से भारत दियां धीआं तैयार ने T20 महिला विश्व कप जीतण दे लई। आकाशवाणी जलंधर तो सुनो ICC T20 महिला विश्व कप दे मुकाबलियां दी पल पल दी खबर। भारत दे सारे मुकाबलियां दा ते सेमीफाइनल ते फाइनल मुकाबलियां दा अखी वेख्या हाल तुसी सुन सकोगे आकाशवाणी जलंधर दे FM रेनबो चैनल तो 102.7 MHz ते।

0: ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ www.cybercrime.gov.in ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਓ।
1: हेलो,
2: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
3: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

0: कार्यक्रम आपके सभी मस्त चल रहे हैं और आजकल भद्रवाह में बहुत बारिश हो रही है, ठंड से बुरा हाल हो गया है। मैं इस कार्यक्रम से बहुत पुराना जुड़ा हूँ, इस कार्यक्रम को ऐसे ही चलने दें ताकि मेरा और आपका तालमेल ऐसे ही बना रहे।
1: इसी तरह से प्रोग्राम चलता रहेगा। पुरुषोत्तम कुमार जी, भद्रवाह तो तुसी सानू खत लिखया है, और देखो मैडम, मैं कल देख रहा सी
0: जी।
1: कि इन्हां ने लिखया है कि ठंड से बुरा हाल हो गया है। साढ़े इत्थे सुनने को मिलता कि गर्मी नाल बुरा हाल हो गया
0: जी
1: है। बुरा
0: बिल्कुल
1: हाल उत्थे ठंड नाल, इत्थे गर्मी
0: जी
1: नाल,
0: जी जी
1: है ना।
0: ते देखो जी, जे बुरा हाल अपना ठीक करना है तो फिर योग शुरू कर दो
1: योग शुरू करो, योग
0: जी।
1: शुरू करो, और जह जह भी मौसम है उस दे हिसाब नाल उस तरह के कपड़े पा के अपना बचाव करना चाहिए है।
0: जी।
1: और जे गर्मी है तो थोड़ी ठंडी चीज़ें खानी चाहिए ने। खाण पीन भी सानू उसी तरह की रखना पड़ेगा, और गर्मी तो बचाण बचने वास्ते भी थोड़ा लू दे जिस तरह आप बचाव के साधन दसते हैं, कारण
0: जी
1: दसद तरीके कि गर्मी धुप्प के ज़्यादा लू चलन वेले तुम घरों बाहर ना निकलो और अपना बचाव करो। वैसे जी पिछले बारिश हुई है ये टैंपरेचर थोड़ा जहा डाउन आया।
0: ते सोन जी, मेरे ख्याल ठंड विच भी असी यही कहने हैं
1: जी जी
0: कि बहुत
1: बिल्कुल,
0: ठंड है ते करो बाहर ना
1: घरों
0: निकलो
1: बाहर ना निकलो, और जो बहुत जरूरी है तो अपने आप को ढक के और
0: जी।
1: कवर करके फिर निकलो।
0: बिल्कुल
1: तो
0: जी
1: साड़ी पुरुषोत्तम कुमार जी, थानू भी यही गुजारिश है कि अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखो जी। बहुत बहुत शुक्रिया खत लिखने वास्ते
0: ते ए वी पुरुषोत्तम शर्मा ने कपूरथला तो
1: जी। एक ही लिख देने
0: लिख रहे जी के प्यार भरी सत श्री अकाल। आकाशवाणी जलंधर दे सारे प्रोग्राम बहुत ही वधिया चल रहे ने। श्रोतिया तक मनोरंजन जानकारी अते होर समाजिक प्रोग्राम बहुत चंगे तरीके नाल पहुंचाए जा रहे ने। जदों कोई रेडियो सुनने लग जावे तो बाकी सारे ही सोशल मीडिया ते होर टीवी चैनलों ते आंदे प्रोग्राम भुल जांदा है।
1: आ देखो ना इन्हें किड्डी वड्डी गल लिखी है कि जदों रेडियो दे प्रोग्राम सुनन लग जाइए एक बारी तो बाकी सारे मीडिया भुल जाइदा।
0: जी
1: तो साड़ी भी थोनों एक गुजारिश है कि तुसी आप ते सुनदे ही हो, अपने फ्रेंड सर्कल दे विच भी एक गल जरूर सांझी करया करो कि रेडियो दे प्रोग्राम सुनने चाहिए ने।
0: जी और अगे लिखा है कि ना इस विच कोई खर्चा है,
1: जी
0: ना कोई मानसिक परेशानी
1: जी
0: ते ना ही काम विच रुकावट। 10 जून नू वसदे बड़े प्रोग्राम तहत सीए गौरव छाबड़ा जी नाल पूनम जी वालों कीती गलबात आर्थिक सोच, आर्थिक दबाव ते आत्म निर्भरता बारे बहुत ही विस्थार पूर्वक गलबात कीती गई।
1: जी
0: गलबात तो जानकारी मिली कि हर इंसान नू बचत करनी चाहिदी है, चाहे वह पानी, पेट्रोल, डीजल जां फिर होर आर्थिक साधन होण।
1: जी
0: प्रधानमंत्री जी का संदेश भी दिता गया कि सानू विदेशी चीज़ों तो गुरेज करना चाहिए है
1: गुरेज करना चाहिए
0: ते
1: जी
0: ना ही खरीदो ता ही चंगी गल है।
1: जी
0: इसी दिन कहिंदे प्रोग्राम शक्ति रूपा तहत कर्नाटक दी जंपल सालू खेमका जी दी जीवनी दी बहुत ज़्यादा सानू प्रेरणादायक सी, बहुत वधिया लगी। देहाती प्रोग्राम दौरान पेश किया जाता अवतार सिंह बलिंग जी दे लड़ीवार नाटक होया देस पराया, बहुत ही वधिया नाटक है। इस दी 10वीं ते 11वीं कड़ियां बहुत ही दिलचस्प ते जानकारी भरपूर सन। साडे समाज विच की वापरदा है, उस वेले दे हालात किद्दां दे सन, सब कुछ सुन स्रोता अपने आप ही पात्रां दीआं तस्वीरां खुद ब खुद अपने दिमाग विच बनाउणा शुरू कर दिंदा है।
1: जी
0: पेशकर्ता ते कहिंदे इस दे प्रोडक्शन जिहड़े कर रहे ने उहनां नूं बहुत बहुत वधाई
1: जी बहुत ही मेहनत लगती है जो इस तरह का सीरियल पेश करना होंदा
0: जी।
1: है, उसका निर्माण करना होंदा है। बहुत मेहनत अपनी भी लगती है और पूरे स्टाफ दी भी, जड़े जड़े शामिल होंदे ने कलाकारां दी भी।
0: जी और अगे लिखे है 11 जून नू प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर तहत चमड़ी दे रोगां दे होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर हरभजन सिंह जी नाल पूनम जी ने गलबात की। लंबी चौड़ी गलबात सी, बहुत जानकारी मिली।
1: जी
0: चमड़ी दे रोग क्यों हो जाते ने, इन्हां दे इलाज बहुत ही सोहणे ढंग नाल दस्या। कहिंदे रेडियो डॉक्टर मेरा मनपसंद प्रोग्राम है। इसे तरह ही कथा लोक दे तहत सांझ कहानी सुनी, कहिंदे बहुत ही वधिया लगी
1: जी
0: और कहिंदे कि सानू प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। 12 जून नू वसदे बड़े प्रोग्राम दौरान असिस्टेंट कमिश्नर जलंधर प्रदीप जी नाल गलबात की। बाल मजदूरी बारे कहिंदे बहुत वधिया जानकारी सी
1: जी
0: और सानू कहिंदे सचमुच पता लग गया कि 14 साल तो थले बच्चों तो काम करवाना अपराध है ते इन्हां नू एजुकेशन का पूरा हक है।
1: जी
0: बाल मजदूरी कराने ते जुर्माना अते सज़ा
1: दोनों हो
0: दोवें
1: सकते हैं
0: ही हो
1: जी,
0: सकती।
1: दोनों हो सकते हैं।
0: 15 जून नू सोनी सवेर प्रोग्राम दौरान कहिंदे बीरेंद्र जी ने बजुर्गों की देखभाल बारे एडवोकेट GPS राणा जी नाल गलबात की,
1: जी
0: बहुत चंगी लगी।
1: जी
0: इसे तरह ही जी इन्हां ने 17 जून का प्रोग्राम वसदे वेड़े दे तहत हरलीन कौर एडवोकेट जी नाल जिहड़ा प्रोग्राम सांझ दे तहत कामकाजी थावां ते औरतां दे हो रहे शोषण बारे जिहड़ा गलबात सी, कहिंदे सानूं बहुत वधिया लगी। और इसे तरह ही प्रोग्राम

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि

0: आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल

0: 5000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
2: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा, क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, आपके साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या 0 सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की SAM शाखा की शिकायत पर इस महीने के 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास

0: ईरान की फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की धनराशि ईरान को वापस कर दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरियापालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: से कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: President Draupadi Murmu performed yoga at the Garrison Ground in Jabalpur, Madhya Pradesh. Highlighting the International Yoga Day theme for this year, Yoga for Healthy Aging, she said it underlines the importance of yoga is a celebration of India's great tradition and it has shown humanity the path to healthy, balanced and meaningful life.
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
1: Vice President C.P. Radhakrishnan participated in the Yoga Day celebrations in Leh. He said yoga is much more than a form of physical exercise and represents

0: नर्स?
1: यस डॉक्टर।
0: हुण तो जा सकती हैं।
1: पर क्यों डॉक्टर?
0: लगता है हुण वक्त आ गया है अखां दी रोशनी घट होण लगी है। हनेरे दे पूरे बदरंग बदल मेरे इर्द गिर्द घूमन लग पए ने। धरती जिवें मेरे जिस्म नूं छड के अचानक बहुत थल्ले चली गई है। मैनूं बहुत कल्ला कल्ला महसूस होण लग पिया है। मैं जानता मैं खत्म होण जा रहा। मेरी रोशनी भी राख दे छोटे छोटे जरिया च तब्दील होण जा रही है। कुछ पल होर ते मेरा सफर खत्म। काश मैं अजे कुछ दिन होर जी सकता।
2: तू अजे मरना नहीं चाहता, कुछ दिन होर जीना चाहना है। आ गया ना ऊंट पहाड़ थल्ले।

0: तू कौन है? तू
1: मैनू नहीं पहचानिया, किवें पहचानेगा? तू तो दुनियावी सुपनों च डुब गया, हकीकत तो बहुत परे। ओ मूर्ख प्राणी, मैं वक्त हां। वक्त?
0: वक्त?
1: हां वक्त, जिंदगी दी सब तो कीमती चीज, ब्रह्मांड दा संचालन करन वाला, कायनात दी गर्दिश नूं चलाउण वाला, जिंदगी ते वक्त दा हाकम।
0: पर उस हाकम खोलता रुकन दी फुरसत नहीं हुंदी, किसे दी आवाज सुनन तक दी मोहलत नहीं हुंदी, जिसते सबाच पारे वर्गी बेताबी है, वो आज किवें बड़े चैन नाल मेरे कोल आन खलोता है।
1: बोल, तू अपनी जिंदगी च और किन्नी देर जीना चाहना? बोल, ये तोहफा भी मैं ही तेनू दे सकदा।
0: तोहफा?
1: हाँ, कुदरत ने जिंदगी दी डोर मेरे हाथ दित्ती हुई है। मैं जिस दी जिंदगी दी डोर लंबी करना चाहवां, लंबी कर सकदा। मैं तेनू उम्र बख्श सकदा।
0: ता ये गल है, काश मैं कुछ दिन होर जी सकता। मेरी ये गल सुन के तेरे दिल विच खुशी दी लहर जाग उठी, महानता दा एहसास होन लगा, ते मेरे उत्ते हावी होन लई मेरे कोल आ गया। पर ओ कम अकल, ना समझ ना दान, ऐसी वाहियात सोचती दुनिया च गोते लगाउन तो पहला ए ता सोचिया हुंदा कि तू असल विच है की, तेरी होंद की है, आखर तेरा वजूद की है।
1: की क्या? तेनू मेरे वजूद बारे शक है?
0: शक? शक नहीं, बल्कि यकीन है कि ना कदे तेरा वजूद सी ते ना कदे होएगा।
1: मौत सामने खड़ी देख के तू अपने होशो हवास गुआता नहीं बैठा डॉक्टर?
0: मेरे होशो हवास पूरी तरह कायम ने, इसे लई तेरे सामने सच्चाई बयान कर रहा। बदबख्त, तू कुदरत दी कोई हकीकत नहीं, तू ता बस कम करन दा टोंग है, एक तमीज, एहसास दी परछाई वांग, तू मेरी सोच दी एक पैदावार है।
1: मैं बस कम करन दा एक टोंग हां, एक तमीज, एहसास दी परछाई वांग?
0: हां नादान, एक पल सोच, तू दरअसल है की? तू ठोस नहीं, पानी नहीं, ना तू जानदार है ना बेजान, तेरा रूप नहीं, रंग नहीं, तेरी पछाण भी कीती जांदी है ता सितारियां दी गर्दिश नाल, जा इंसान दी बनाई घड़ियां दियां सुइयां दी हरकत नाल। सोच, तू किन्ना बेवजूद है, किन्ना बेकार, बेमतलब।
1: पर मेरी रफ्तार तो है, मैं गुजरदा तो हाँ।
0: तू ना गुजरदा है ते ना ही तेरी कोई रफ्तार है, जिसनू तू अपनी रफ्तार कहना है ओ सिर्फ दिमाग दी एक उपज है, बस दिल दे हालातां दी एक परछाई समझ लो। तैनू पता है, जद मैनू किसे दा इंतजार हुंदा है ता एक पल, एक पल एक सदी वांग लंबा लगदा है, ते जदो आ जांदा है ता घंटे दिन ते महीने इंज बीत जांदे ने जिवें जिवें कुछ लम्हे। हुण तू दस, तू दस तेरी रफ्तार दी हकीकत की है?
1: फिर भी मेरे वजूद तो इनकार नहीं किया जा सकता।

0: लगता है जीवन की रोशनी हुण बंद होण दे कगार ते है। साहां दी लै जिवें दम तोड़ना चाहती है। मेरी ये हसीन ते रंगीन दुनिया मेरे तो जुदा हो रही है। अलविदा अलविदा।
1: हाँ बेटा, तेरी ये दुनिया तेरे तो जुदा हो रही है। तेरे संगी साथी रिश्तेदार तेरे तो दूर हो जाएंगे। दुनिया दे सारे बंधना तो तेरा रिश्ता टूट जाएगा ते देवत्यां दे संसार नाल जुड़ जाएगा।
0: हुण कौन है?
1: तू नहीं पहचानिया?
0: नहीं
1: बेटा, मैं वो हाँ जो तेरी पैदाइश ते समय तो तेरे नाल हाँ ते तेरी मौत तक तेरे नाल चलता हाँ। मैं वो हाँ जो वैसे था तेरे हर कदम ते तेनू आगाह करन तेरे नाल हुन्ना, पर तू मेरी आवाज नू सुनी अनसुनी करदा रहना। बेटा मैं वो हाँ जिड़ा तेनू तेरी होन दे अर्थ नू तेरे वजूद दी असलियत नू तेरी दुनिया ते माया जाल बारे तेरे कर्मां दे पाप पुन्ना बारे दसदा रहना।
0: बसुर्ग दरवेश, पहेलियां ना बुझा, साफ साफ दस तू कौन है?
1: साफ गल तो यह है बेटा, मैनू खुदा ने तेरी रूह की हिफाजत ते तेरे गुनाहगार वजूद की मुक्ति लई भेजिया।
0: ओ समझिया, ता तू मजहब है।
1: ठीक पहचानिया।
0: तेनू पता है मैं जिंदगी भर तेनू नजरअंदाज करता आया, फिर भी तू आ गया। मैनू तेरी कोई लोड़ नहीं।
1: जरूरत तेनू नहीं, मैनू है बेटा, क्योंकि मैं तेरी रूह का देनदार हाँ। मैं तेरी रूह नू गुनाहां तो पवित्र करके पापा तो मुक्ति दिला के उसनू खुदा दे हजूर च पेश करना है।
0: ए मैं जानता, पर जद मैं क्या के मैनू तेरी जरूरत नहीं, फिर भी क्यों आया है मेरे कोल?
1: वो इस लई बेटा कि कटो कट आखरी वक्त ही मजहब ते यकीन कर सके ते मैनू मौका देवे कि मैं खुदा तो तेरे गुनाह मुआफ करवा सका।
0: पर तैनू पता है ना कि ना मैनू मजहब ते यकीन है ते ना ही तेरे खुदा ते।
1: बदनसीब बदबख्त इंसान, तेनू आज तक उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिलया?
0: कोई

0: वो सबूत नहीं मिलया।
1: तू की है?
0: मैं सिर्फ एक इंसान हाँ।
1: बेटा तेनू किने पैदा किया है?
0: इंसानी कम ने, उस द्वारा किते कर्म ने,
1: ते उस जिस्मानी अमल नू
0: धरती दे पांच तत्ता ने, यानी अग, पानी, हवा, मिट्टी ते आकाश ते असर नाल संसार दे तत्ता दे मेल नाल।
1: ते इना सारिया चीजा नू किसने जन्म दिता बेटा?
0: इसका जवाब जरूरी नहीं।
1: जरूरी ही नहीं बेटा, बहुत जरूरी है। इस दे विच तेरे टीठ पुणे दा तोड़ है बेटा।
0: ता फिर इसका जवाब पहला तू दे, फिर मैं दवांगा।
1: ता सुन, गुमराह नादान शख्स इना सारिया चीजा नू खुदा ने पैदा कीता बेटा।
0: ते खुदा नू किसने पैदा कीता?
1: किसे ने नहीं, वो हमेशा तो सी।
0: ता इसका मतलब ये होया कि जरूरी नहीं कि हर चीज पैदा करन वाला कोई होवे, वो चीज पैदा कीते बिना भी हमेशा तो हो सकती है।
1: शाबाश, हाँ।
0: ते फिर मेरा जवाब सुन, मैं भी कहना इंसान नू पैदा करन वाले पांच तत् ते होर चीजा भी खुदा वांग हमेशा तो सी।
1: किस तरह बेटा?
0: जिस तरह तुसी कहंदे हो तुहाडा खुदा सी।
1: ए ता कोई जवाब नहीं होया।
0: ता फिर खुदा बारे जो जवाब तू दिता वो भी कोई जवाब नहीं। बजुर्गो, जवाब ओ हुंदा है जिसते कोई दूसरा सवाल पैदा ना हो सके, पर जेड़ा जवाब तू दिता उसते कई सवाल पैदा होंदे ने, जिवें मेरे जवाब ते पैदा होंदे ने। हकीकत तां ये है अज तक कोई नहीं जानता कि ये कायनात किवें ते क्यों पैदा हुई, इसते तत्तां नू किसने जन्म दिता। ये सारे सवाल अजे तक बेजवाब ने, पर तुसी ये कबूल नहीं करते ते जवाब देन दी एवें ही कोशिश करते हो। तुहानू एहसास है कि तुहाडे जवाब नाल दूसरे दा दिमाग संतुष्ट नहीं होएगा, उसकी जुबान खामोश नहीं होएगी। इसलिए तुसी पहला काम यह करते हो कि दिमाग ते धर्म दी मजहब दी अफीम चटा देंदे हो। इस तरह वो तुहाडे जादू दे चक्कर च फस जाता है।
1: इसका मतलब है कि तेरी बुद्धि नू शैतान ने इस हद तक जकड़ लिया।
0: शैतान? कौन शैतान?
1: वो खुदा दा दुश्मन है बेटा, मजहब दा बैरी है।
0: अच्छा, पर तुसी ना कहंदे हो के खुदा सब तो ज्यादा ताकतवर है, उसकी नूर दी अख विच चल के सब कुछ पाक साफ हो जाता है, फिर शैतान किवें जिंदा है? तुहाडे खुदा दे हुंदे होए मेरे ते शैतान दा असर किवें हो गया?
1: इसलिए कि तेरी रूह विच खोट है बेटा, उस विच पाप दा असर शामिल है।
0: पर मेरी रूह च खोट आया कित्थों? तुसी तां कहंदे हो के रूह खुदा दी बेटी है, जेकर ये सच है तां मेरी इस खुदा दी बेटी च ये खोट आई कित्थों? की खुदा कोल इन्नी भी ताकत नहीं कि इस बुराई नू खत्म कर सके?
1: तू ये की बक रहा बेटा?
0: मैं सिर्फ तेरे धोखे विच आउण तो बच रहा।
1: गुस्ताख, बेअदब, तू मेरे आसमानी इलम नू धोखा कहना है?
0: आसमानी इलम? बुढ़िया, लगता है दूसरियां नू ईमान दी अफीम चटाउंदे चटाउंदे अपना वजूद भुला बैठा है। बेहतर होएगा कि तू याद रखें

0: कि तेरा वजूद आसमान नहीं जमीन है।
1: की कहा गुस्ताख?
0: एही के तेनू जमीन ने जन्म दिता है, असी इंसाना ने जन्म दिता है।
1: ओए, तेरी ए जुर्रत?
0: जुर्रत नहीं है, हकीकत बयानी है बसुर्ग बाबा। तू मेरे ही वर्गे चंद इंसाना दे जहन दा एक ख्याल है, ऐसा ख्याल जेड़ा सदियां पहला पेश कीता गया सी, पर अज दे हालात च काफी हद तक पुराना हो गया। बुड्ढा, थक्या होया, तकरीबन बेकार। इसलिए तू इत्थों चलिया जा, मैं तेरी कोई गल भी कबूल करन लई तैयार नहीं। जाओ बजुर्गवार, चले जाओ, चले जाओ इत्थों, चले जाओ।

0: आखिर आ ही गया ना मेरी मुट्ठी च। किन्नियां दीवारां, किन्नियां रुकावटां लाइयां सी मेरे राह च, किन्नियां कोशिशां, किन्ने इंतजाम कीते सी मैनूं रोकण लई, फिर भी
1: कौन है तू बुढ़ी खूसट औरत?
2: मैं दसा के मैं कौन हाँ?
1: हाँ दस, तू किस शैतान दी मासी है?
2: मैं उस शैतान दी मासी हाँ जिसनू मौत कहिंदे ने।
1: ओ था तू मौत है?
2: हाँ मौत, तेरी मौत।
1: मेरी मौत?
2: हाँ तेरी, ते ओ मौत जेड़ी टाली नहीं जा सकती।
1: बेवकूफ बुढ़िए, हुन तू अटल नहीं, तू टाली जा सकती है, कुछ दिना लई नहीं पर कई साला लई।
2: एक ही बकदा है तू।
1: तेरी बकवास दा जवाब दे रहा, तेनू याद है तू मेरे उपर किन्ने हमले कीते? तू एक बार प्लेग भेजी, एक बार मलेरिया, एक बार कार दा हादसा भेजिया जिसकी चोट ते इलाज ते दौरान मेरे दिल दी हरकत कुछ देर लई बंद हो गई सी, ते उस तो बाद तू करोना महामारी भेजी, मौत दा तांडव नाच कीता तू, पर होया की कुछ भी नहीं। बड़ी बीबी, हुण मैं तेरे बहुत सारे हमले बेकार करके तेनू टाल देना।
2: मेनू तू टालेगा?
1: हां बीबी, मैं याद है तेनू कुछ साल पहला तेनू टालना औखा हुंदा सी, तेरा हमला कामयाब हुंदा सी, तू बीमारी भेजती सी, लखां आदमी तेरा शिकार होके मर जांदे सी, पर अज तेरा मलेरिया, प्लेग, तपेदिक, करोना वर्गे घातक हथियार सब बेकार हो गए ने। अज उन्हां दे वार तो मैं बच जाना है। अज तेरी मारण दी ताकत बहुत हद तक खत्म हो चुकी है।
2: फेर भी तू ते तेरी नसल मेरे तो बच नहीं सकती।
1: हाँ, तू बस बुढ़िया कमजोरां ते कमियां तो पैदा होन वाली आखरी कहानी है, बनावट विच खामी दा नतीजा।
2: ये की बकवास कर रहे हैं तू?
1: ये बकवास नहीं है बीबी, तेरी असलियत है। जो भी इस दुनिया च आया है उसने एक ना एक दिन खत्म होना ही है। तू कुछ नहीं, बस उन्ना चीज़ां दी सच्चाई है जिन्ना नाल इंसानी शरीर बनया। हर चीज एक दिन नष्ट हो ही जानी है, इस सिद्धांत दी उपज है। तेनू बनाउण वाले दे हुनर दे कच्चे

0: ये आकाशवाणी का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जिसमें आप सुनेंगे राग मारू बिहाग। इसे प्रस्तुत करी है रहना चक्रवर्ती।
1: नमस्कार, मैं रहना चक्रवर्ती। ये शाम का राग है, राग मारू बिहाग, आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं।

और अब हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है राग दरबारी कन्नड़ा, शेख फरहान अमीन के जरिए।

अभी आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत सुना राग दरबारी कन्नड़ा शेख फहीम अमीन के जरिए। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है और अब से कुछ ही क्षण बाद समाचार होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी

राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिगलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण हॉर्मुज जलडमरू फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल लालचंद यमला जट दे आवाज़ दे विच अपतारा मेरा भावे बोलियां ई सुन रहे सी। सौगात प्रोग्राम च तुसी भी अपनियां फरमाइशां लैके आ सकदे हो साडे कोल दोस्तों, 0181-2342-171 नंबर डायल करके, और वट्सएप मैसेज भी कर सकते हो सानू अपने पंजाबी गीतां दी फरमाइश करन दे लई 94-655-3607 इस नंबर दे अपने तुसी वट्सएप मैसेज करो। लो जी कॉलर आए ने, देखिए जी केड़े दोस्त ने। हैलो,
1: प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: सोम दत्त बोलदा जी, मैं इस गेट नाभे तो जी।
0: जी जी सोम दत्त जी, ठीक ठाक हो?
1: बहुत वधिया सर, तुसी सुनाओ जी, ठीक ठाक जी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: जी दोस्तों, मैनू फिर दोबारा बापू 10 गल्लां लाहौर दियां। गल ठीक है जी, यही जिहड़ा एक विछोड़ा होया सी उस वेले, वंड जदों हुई सी उस वेले, वो जिहड़ा एक दर्दनाक हादसे हुए साडे सारिआं दे नाल जिहड़े उस पार तों इस पार आए ने। और वाकई जी, वो वाकई एक दर्दनाक एपीसोड सी। खैर जी, आपां चलदे हाँ जी प्रोग्राम दे अगले जी साढ़े कॉलर वाल। हेलो
1: हेलो वीर जी, नमस्कार।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: सुखबीर सिंह शाजली बोल रहा, मेरे संगरूर को।
0: जी सुखबीर जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। शाजली
1: शुक्रिया वीर जी।
0: दा की हाल चाल ने तुहाडे?
1: ठीक है जी, वधिया।
0: ठीक ठाक है?
1: हाँ जी हाँ,
0: गर्मी हो रही है पूरी।
1: गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है।
0: देखो, ये गर्मी सर्दी परमात्मा दे रंग ने, ते उस वेले उसने गर्मी भी देनी है, इकबाल उसने ठंड भी देनी है, फिर बिच हुण बरसातां भी आने वाली हैं, मीह पैण वाला है।
1: सौण की झड़ी भी लगनी है। हाँ
0: हाँ, तो इस करके ये तो वो रंग ने, वो रजा च सानू सारयां नूं राजी रहना चाहिए।
1: हाँ जी हाँ, ऐसा है सर।
0: ते अज फिर फरमाइश कि लै के आए ने,
1: हैप्पी राय गोटी दा दे जी।
0: हैप्पी राई गुड्डी दे वास दे विच गीत सुनावांगे तुहानू। छाजली जी, सुखबीर छाजली जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करन दे लई।
1: ठीक है सर, ओके, थैंक यू।
0: ओके जी, ओके। लो जी, सुखबीर छाजली जी जिन्हां ने सानू फरमाइश की है, ते ये साढ़े दोस्त ने जी व्हाट्सएप मैसेज जिन्हां ने सानू भेजा है सरदना मेरठ।

अनिल जैन, जैन साहिब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीएम जैन, आदि जैन ते इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त ने। ते ये साढ़े दोस्त ने जी हनुमानगढ़ फाजिलका तो रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल वर्मा, कीर्ति वर्मा, सिदक वर्मा, प्रियांश वर्मा, तो पूरी वर्मा फैमिली है जिन्होंने सानू वट्सअप मैसेज भेजे है। सुशील कुमार चिलाना पप्पी ते परिशा चिलाना ते इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे साथी हनुमानगढ़ तो इन्होंने सानू मैसेज भेजिया सी। ते लो जी तुहाडी सारयां दी फरमाइश ते सुणदे हैं हैप्पी राई गुड्डी दे आवाज़ दे विच ये गीत।

जी दोस्तों, कुड़ी मर्दी है तेरे थी, तू थोड़ा जाता मरिया कर। क्या बात है जी, मोहब्बत यही ते इसे नु कहंदे ने कि एक

0: जी दोस्तों, हसदी ने दिल मंगिया मुंडा जान देण तों आवे। और ये तो गल बिल्कुल सही है जी, जदों मुंडा जान देण ते आएगा ही, क्योंकि कोई हसदे हसदे दिल मंग ले ते फिर ते तुसी भी आपां अपने आप दे विच कंट्रोल च नहीं बंदा रहिंदा। पर प्रोग्राम सौगात चल रहा जी, तुहाडे प्यारे प्यारे फोन कॉल्स ते प्यारे प्यारे मैसेज साढ़े तक पहुँच रहे हैं। प्रोग्राम सौगात दे विच तुसी भी आ सकदे हो, 0181-2342-171 नंबर डायल करके। अपना दोस्त शाम शर्मा तुहाडी उड़ीक कर रहा है, ते आजो इस प्रोग्राम च जिवें ये साढ़े दोस्त आए ने। हैलो।
1: हेलो सर, मतलब का दुनिया है कौन किसी का होता है, मतलब का दुनिया है कौन किसी का होता है, जिसके जो अखबार करता है उसके साथ में वही व्यवसाय करता। मैं संतोष कुमार यादव मेडिकल कॉलेज केरल से बोल रहा हूँ सर।
0: वाह संतोष जी, पहले तो सब बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप इतनी दूर से हमारे प्रोग्राम से जुड़े हैं।
1: सर मैं जो भी हूँ, मैं भी ये अपना सौगात से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैं क्या बताऊँ आपका, जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और मैं प्रोग्राम सुन रहा हूँ, मेरा दिल करा मैं फोन लगाऊ, मैं दो दो मोबाइल से लगाने लग गया मैं।
0: बिल्कुल जी, ये सब आपकी वजह से ही प्रोग्राम अच्छा बनता है, क्योंकि जब प्यारे प्यारे श्रोते हमारे पास पहुंचते हैं ना, तो वो फिर प्रोग्राम को और भी अच्छा बना देते हैं, क्योंकि उनकी
1: बिल्कुल सर,
0: आवाजें।
1: ये ना जो है ना, आप इतना प्रोग्राम अच्छा पेश कर रहे हैं सर, आपको आप शायद होंगे कि नहीं होंगे, मैं 2001 का बात कर रहा हूँ, 22-54-14 नंबर था पहले, अभी कम्प्लेन नंबर
0: जी
1: ही है,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: तब
0: जी
1: से मैं कॉल करता हूँ।
0: जी ओ क्या बात है, तो आप तो हमारे पुराने श्रोते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं संतोष जी कि
1: हाँ
0: फादर्स डे है आज, तो आपको शुभकामनाएं फादर्स डे की। ओके।
1: सर,
0: और
1: ये चीज का मैं बोल रहा हूँ, जो माँ बाप होता है ना वो भगवान से बढ़ के होता है,
0: जी
1: और मैं ये चीज मैं बोल रहा हूँ, भारत सरकार जो कोई भी जो जो किसी का लड़का सरकारी जॉब करता प्राइवेट जॉब करे,
0: हाँ
1: उसका सैलरी में से 10% पैसा कट के है ना माँ बाप के अकाउंट में जाना चाहिए।
0: क्या बात है।
1: प्राइवेट हो सरकारी कोई भी हो, अपने अकाउंट में कोई लड़का डालता पैसा मंथली, जैसे कोई भी आए इनकम आए
0: जी
1: वो माँ बाप के अकाउंट में 10% जाना चाहिए।
0: हाँ
1: और मैं एक चीज मैं बोल रहा हूँ सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, जो जो मेरा डैडी बीबी बोर्ड में था पटना में, और 1960 की बात है,
0: जी
1: मैं अपने बारे में मैं भाई में तो अकेला हूँ, उस समय मेरा डैडी 20 रुपए का 1 एकड़ जमीन लिया था,
0: ओ
1: अभी क्या कितना होगा ये
0: उस

0: नहीं, वो
1: मतलब
0: उस समय वो पैसा भी बहुत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल होता था संतोष जी।
1: मैं ना वही चीज मैं बोलता हूँ, अब ये ना 8 लाख से ज्यादा है सर। कोई माँ बाप का कदर कोई भी अपने बेटा नहीं भूलना चाहिए। मैं ये मैं देखता हूँ जो किसी का बेटा कोई अफसर बन जाता है, माँ बाप को छोड़ देता है, वो उसको नरक में जाएगा। हिंदी में बोलता है नरक वो।
0: बिल्कुल, देखो जिस माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको ऑफिसर
1: बिल्कुल
0: बनाया,
1: बिल्कुल सर।
0: आपने अगर उनका भी ध्यान नहीं रखा तो फिर परमात्मा आपका क्या ध्यान रखेगा।
1: मैं तो यही मैं बोलता हूँ ना, जो आजकल का है ना, जो मैं क्या बोलूँ, मेरे को बोलता है ये ना बुरा सोच रखता। मैं ना मेरे जो है ना, मैं जैसी मैं जैसे बोलूंगा ना, मेरे को कमेंट आता है, मेरे को बोलता है तो बुरा वाले सोच रखता है। माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता, भगवान भी नहीं
0: जी
1: है कोई, है ना।
0: बिल्कुल,
1: भगवान बोलता वाहेगुरु, तो कोई भी बोलता राम राम बोलता। जो माँ बाप
0: हाँ
1: पैदा करता है ना जिसको, मैं
0: हाँ
1: बोल रहा हूँ, जो माँ बाप
0: हाँ
1: पैदा करता उससे बढ़ के कोई नहीं है।
0: कोई भी नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, माँ बाप अगर हैं तो सब कुछ है, और सबसे पहले
1: सब
0: माँ
1: कुछ
0: बाप।
1: है। अब
0: बिल्कुल
1: मैं ना सर, मैं आपको ये चीज में बोलता हूँ, मैं ज्यादा जो है ना, दूसरा भी है ना आपका प्रोग्राम सुन रहा, जो माँ बाप को डेली है ना, जो मैं एक चीज में बोलता हूँ, माँ बाप को सवेर में डेली पैर छुए, वो बोलता मेरा बेटा अच्छा रहे, वो आशीर्वाद देता है कि नहीं देता।
0: हाँ, क्या बात है जी, बहुत बहुत बहुत खूब। बिल्कुल संतोष जी, अगर आप ये जो संस्कार हैं अपने बच्चों को दें कि
1: मैं
0: अपने
1: सर, मैं ये चीज है ना, मैं आपको मैं ये चीज मैं बताता हूँ, मैं पंजाब में इधर केरला से, मेरे को तो अभी है ना ये 2017 से इधर जॉब में हूँ। मैं जब भी जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं किसी को मैं पैर छूता हूँ, जो बच्चा भी है ना
0: हाँ
1: मैं
0: जी
1: उसका भी पैर छूता हूँ। जो सबसे छोटा बच्चा रहता है ना, जो 5 साल का रहता है ना, जो
0: हाँ
1: उसका पैर छूता है ना, तो वो होता है जो छोटा बच्चा का पैर छूता है उसका आशीर्वाद ज्यादा होता है।
0: हाँ बिल्कुल संतोष जी, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। और बताइए आज गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आप।
1: मैं सर ये चीज का, हकदार होती कि ये बेटे को जो बूट पालता करने पर है, हकदार होती
0: गुरदास मान की आवाज में आपने बोला है, रोटी हक दी
1: सर मैं
0: खाइए।
1: क्या बताऊं, मैं एनी टाइम मैं खुश रहता हूं। और माँ बाप को कदर करना चाहिए, जितना
0: बिल्कुल
1: जहां तक आवाज जाता है ना माँ बाप का, मैं बोलता हूँ कदर करना चाहिए।
0: बिल्कुल करना चाहिए। संतोष जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करके
1: ठीक
0: फिर
1: है
0: आपका
1: सर,
0: गीत सुनाते हैं जी। थैंक
1: ठीक है।
0: यू। लो जी, ये सन साडे दोस्त संतोष जी, इन्होंने सानू केरला तो फोन किया सी, और बड़िंग खेड़ा तो पंजाब तो साडे दोस्त ने जी, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा देना दे परिवार के होर बहुत सारे दोस्त ने, ते ये साडे दोस्त ने जी आदर्श नगर मलोट पंजाब तो राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा ते निवान शर्मा होना ने सानू व्हाट्सएप मैसेज भेजे। ये साढ़े दोस्त ने जी गुलाम रोड हरगोबिंद नगर नवाशहर तो सुरेंद्र संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, प्रीता संधू, ते इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त ने, ते ये साढ़े दोस्त आए ने जी जिन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज भेजे है। मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करन, गीतू निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता, कनेरा मोहल्ला पटियाला तो इन्होंने सानू व्हाट्सएप मैसेज भेजे। लो जी, इन्हां दी फरमाइश, रोटी हक दी खाइए चाहे बूट पालशा करिए, गुरदास मान दी आवाज़ दे विच ये गीत तुहाडी सारयां दी फरमाइश ते।

0: जी दोस्तों, रोटी हक दी खाइए जी, चाहे बूट पालिशां करिए। बिल्कुल सही है ना जी। देखो, जे तुसीं रोटी हक दी खानी है तो सानू कोई भी काम जड़ा है वो करना चाहिए। काम कोई छोटा वड्डा नहीं हुंदा, इस करके आपां नूं ये सोच रखनी चाहिए है कि असी मेहनत दे नाल जो असी कम कमा सकीए, मेहनत दे नाल जो कर सकीए, वो सब तो वड्डी चीज़ है इस जिंदगी दे विच। लो जी, कॉलर आ गए नी। हैलो
1: हेलो, सत श्री अकाल सर जी। सर
0: जी, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
1: जी, मैं राजू बोलदा जी, चंडीगढ़।
0: जी राजू जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: धन्यवाद सर जी, थोड़ा भी।
0: राजू जी, कि चंडीगढ़ ठीक ठाक
1: बारिश
0: है?
1: हो रही सर जी, बहुत।
0: अच्छा, बारिश हो रही है। वाह जी वाह,
1: हाँ
0: क्या
1: जी, हाँ
0: बात
1: जी,
0: है। बारिश हो रही है, फिर तो मौसम होर वधिया हो गया होना है।
1: हाँ जी, हाँ, 2-3 दिन हम इतना ही रहेगा मौसम जी।
0: चलो, ये भी चंगी गल है। किसी वेले धुप तो किसी वेले छां है।
1: हाँ जी, हाँ, तो जिंदगी दे रंग ने जी, कभी धुप कभी छां, जिदा दुख कभी सुख।
0: हाँ, देखो जिंदगी दे विच कमें जमें आ जाता है ना, कि
1: हाँ
0: कभी खुशी कभी गम।
1: हाँ उतरा चढ़ा सड़क।
0: हाँ, होना भी चाहिए है, क्योंकि ता ही इंसान जड़ा है ना, नहीं तो फिर इंसान बहुत ज्यादा प्राउडी हो जाता है, बहुत ज्यादा घमंडी हो
1: पता
0: जाता है।
1: लगता सर जी, जे दुख ना होवे तां सुख दा पता नहीं लगता, सुख ना होवे तां
0: हाँ,
1: दुख दा नहीं।
0: इस करके दोनों चीज़ां, ता ही तो परमात्मा सानू सब नू ये दिंदा है।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: अज फिर किहड़ी फरमाइश लेके आए हो?
1: ग्राम भुलर दा गीत सुनाना है।
0: लो जी, गुरनाम भुल्लर दी आवाज़ दे विच गीत सुनावांगे। शुक्रिया जी कॉल करन दे लई।
1: धन्यवाद जी,
0: लो
1: धन्यवाद।
0: जी, बाजवा कलोनी गुरदासपुर तों प्रीतम चंद अनमोल।

दीपक ती इन्हां दे परिवार दे होर बहुत सारे दोस्त मित्र ने जिन्हां ने सानू वट्सएप मैसेज भेजिया सी। मनदीप सिंह दीपा बस स्टैंड जलालदीबाल जिला लुधियाना तो इन्होंने सानू वट्सएप मैसेज भेजिया। तो ये साढ़े दोस्त ने ताज मुहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड तो इन्होंने सानू वट्सएप मैसेज भेजिया। तो लो जी सब दोस्तों की फरमाइश से सुनते हैं गुरनाम भुल्लर की आवाज़ के गीत।

0: जी दोस्तों, बिल्कुल पहली मुलाकात हुई है। जदों पहली मुलाकात हुंदी है ना, उदों फिर आपां सारे जाने जदों अपने दोस्त नूं मिलन जाने हैं, उस वेले दिल धक धक करता है। इस करके कि पता नहीं किवें वो पेश आऊ या असीं उहदे नाल ही पेश आवांगे, ते ये फिर जज्बात जिहड़े हुंदे ने ना उस वेले कंट्रोल च नहीं आउंदे। पर खैर जी, ये पहली मुलाकात दा ते अलग ही नज़ारा हुंदा है, चाहे विआह तो बाद पहली मुलाकात होए या दोस्ती दी जदों हुंदी है पहली मुलाकात उदों होए या कोई भी पहली मुलाकात हुंदी है ना, उस वेले फिर नज़ारे इदां दे हुंदे ने। लो जी, कॉलर आ गए ने, देखिए जी किहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: मैं बंसी लाल जी, पिंड तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला।
0: वाह जी वाह, बंसी लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: आपकी पेशकारी का भी कोई जवाब नहीं भाई।
0: आए हाय, क्या बात है जी। देखो,
1: ओका
0: तुसी साडी हौसला अफजाई करते हो, इस दे लई तुहाडा तहे दिल तो शुक्रिया अदा करते हैं।
1: नहीं, तुसी है भी है ना हौसले जोगी, साडी रूटी खराक है।
0: हाँ देखो ना जी, ये जड़ी संगीत है, गीत है, ये वाकई रूह की खुराक है।
1: और पहला गाना आंदा ही चुपचाप खड़े हो, जरूर कोई बात है, पहली
0: हाँ, पहली
1: मुलाकात।
0: मुलाकात है। ये भी वही गल है ना जी, मैं जिम्मे दस रहा कि जो पहली पहली मुलाकात होंगी है ना, उस वेले फिर
1: हाँ
0: इंसान च दिल जड़ा है ना थले नू ठां ठां जाता है।
1: हाँ भी कह जा होगा, कह जा सुभाव है।
0: हाँ, तो वो फिर जो गल्लां बातां होने लग जानियां, फिर पता लगता है कि वाकई ही मेरा जड़ा दिलदार है, जड़ा मेरा दोस्त है, वो वाकई बहुत खूबसूरत है। जिवें साडे बंसी लाल जी बहुत ही दिलदार ने, खूबसूरत ने।
1: आकाशवाणी भी ये ऑक्सीजन है हमारी,
0: हाँ
1: रूह
0: बिल्कुल,
1: की खुराक है ये।
0: रूह की खुराक है।
1: ये आकाशवाणी कोई अकेला आकाशवाणी नहीं है,
0: हाँ
1: ये आप दोस्तों के साथ बन रहा है,
0: ये गल
1: जो
0: बिल्कुल ठीक
1: हमें
0: है, क्योंकि
1: मिठी बाणी।
0: जी, क्योंकि आकाशवाणी का परिवार जड़ा है ना, वो तुहाडे सारयां दे नाल, असीं सारे विच ही आ जाने हैं।
1: हाँ सारे है, लिसनर भी आ गए, अपने आरजे साहब भी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सारे आ जाते ने, ते तुसीं सारे आने हो, तो इसी करके प्रोग्राम नूं होर
1: ये
0: चार चन्न
1: आकाशवाणी
0: लगते
1: परिवार
0: ने।
1: बन गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बंसी लाल जी अज कि फरमाइश लेके आए ने?
1: हाँ जी, वो उसका लाओ जी, हंसराज, हंसराज
0: हंसराज
1: जिला
0: हंसता,
1: मर्जी ला दो।

0: जी दोस्तों, वाकया जी दिल चोरी साडा हो गया, की करिए की करिए। गल तो सही है जी, जदों साडे प्यारे प्यारे सोते साडे तक पहुँचते ने ना, तो दिल साडा चोरी हो जाता है, क्योंकि उस वेले असी अपने आप ते भी साडा कंट्रोल नहीं रहिंदा उस वेले, क्योंकि इन्ने सोहणियां सोहणियां गल्लां करदे ने साडे दोस्त, और उस वेले असी ये सोचते हैं कि असीं अपने दिल ते काबू किवें रखिए, साडा दिल चोरी हो जांदा है उस वेले। प्रोग्राम सौगात दा वेला रह गया तकरीबन 50 मिनट दा, जिन्हां दोस्तां ने हले तक सानूं कॉल नहीं कीती है जरूर कॉल करो, 0181 2342 171 नंबर डायल करो, और वट्सएप मैसेज 9495 3607 इस नंबर दे अपने तुसीं वट्सएप मैसेज कर सकदे हो। लो जी कॉलर आ गए ने, देखिए जी कहड़े दोस्त ने। हैलो
1: हेलो
0: जी, नमस्कार जी, नमस्कार, कौन बोल रहे हो? जी, बिट्टू जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च। वाह जी वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू जी, क्योंकि तुसीं ते साडे पुराने लिसनर हो, और प्रोग्राम दे विच जदों आने हो ना उस वेले तुसीं भी चार चैनल ला दिंदे हो, क्योंकि तुहाडे आण दा अंदाज पता लग जांदा बिट्टू भाजी आ गए ने।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी, बहुत शुक्रिया जी। ते बिट्टू जी, अज असीं गल कर रहे सीगे कि अज साडे जिवें कि फादर्स डे है, साडे पिता जी दा अज दिहाड़ा है जिन्होंने सानू जन्म दिता है, ते असीं सारयां नूं मुबारकबाद दिंदे आ, जिवें पिता जी ने साडे लई मेहनत कीती है असीं वी उहनां दा उन्ना ही ख्याल रखिए, उहनां दा होर वी ज़्यादा असीं मान सत्कार जिन्ना कर सकदे हां उन्ना सानू करना चाहीदा है।
1: ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ,
0: ਹਾਂ
1: ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ,
0: ਵਾਹ
1: ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ।
0: ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ,
1: ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ,
0: ਵਾਹ क्या बात है। देखो ना कितनी खुशी वाली गल है बिट्टू जी, क्योंकि जे तुसी अपने पिता जी का माता जी का ख्याल रखिया सी ते तुहाडे भी अगे बच्चे फिर उन्ना ही ख्याल रख रहे ने ना। हाँ वही उगेगा, और जमें दा बीजोगे जे तुसी सही बीजिया तो हुण देखो ना मिलदा ही है, फल भी मिठा मिल रहा है इस वेले, तुसी भी आनंद मान रहे हो, तो अज फिर हुण फरमाइश भी दस दिओ कि लैके आए हो। क्या बात है जी, शुगली गीत सुना कि आप सस नूं दा मुकाबला, वैसे तो सस नूं दा प्यार तो हुंदा ही बहुत ज्यादा है। ते लो सुनाने तुहानूं तुहाडी फरमाइश दा गीत, शुक्रिया जी कॉल करन दे लई।
1: ओके शाम जी, बाय बाय
0: बाय जी बाय।

जी दोस्तों, ससनू दा मुकाबला तेरा दिल्ली मेरा आगरा, क्या बात है जी। वैसे गल सही भी है, ससनू दा प्यार एवें दा ही हुंदा है, और मुकाबला नहीं होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। और जदों प्यार हुंदा है ना, तो जिहड़ी सस हुंदी है वह फिर माँ लगन लग जाती है, तो जिहड़ी नूँह हुंदी है वह बीटी लगन लग जाती है। इस करके इसी तरह का प्यार आपस दे विच ससनू दा हुंदा।

0: जी दोस्तों, छतरी की करनी जी, पलकां दियां छावां मिल जाण तां फिर दे देखो ना, तुहानूं छतरी दी बिल्कुल लोड़ नहीं है क्योंकि अंब चूपदी जांदी है। खैर जी, प्रोग्राम सौगात दे विच साडे दोस्त पहुंच गए नी, डायल करके नंबर। हैलो
1: नमस्कार जी,
0: जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
1: रामपुर साहब बोलता, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट पिंड भगवान साहब।
0: जी, राम प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम च।
1: मैं तो सोचा ही लाटरी लगनी नहीं,
0: अच्छा, इदा किदा हो सकदा जी?
1: नंबर अब बड़ा औखा लगा, नहीं तो पहले तो फड़फड़ लग जाता।
0: देखो, बहुत सारे दोस्त कोशिश करते ने साडे इस
1: हाँ
0: प्रोग्राम
1: जी,
0: च पहुंचण दी,
1: चलो
0: ते
1: बढ़िया गल है, नवे तो नवे दोस्त, ज्यादा तो ज्यादा दोस्त जोड़ने तो रौनक भी बना ली जाती है।
0: हाँ रौनक लगती है, ते प्रोग्राम दा फिर नजारा वधदा पूरा दा पूरा है।
1: हाँ जी, हाँ जी, फरमाइश
0: अज फिर केड़ी फरमाइश लै के आए हो?
1: घगरे दी नौ जस्सी गिर ते कौर वीर दी आवाज च, जिसे विषय ते गल कर रहे ही पिता।
0: जी बिल्कुल, आज फादर्स डे है जी।
1: हाँ जी, फादर चलो साढ़े तो चले गए 2019,
0: जी
1: 19 मुझे एक्सपायर हो गई, तो मदर 1988 से एक्सपायर
0: जी
1: हो गई।
0: जी जी जी जी जी चलो, जब तक
1: लाना
0: जदों,
1: होना भी याद आती है, पर
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
1: उन्हें तो देना तो दे नहीं सकता जी।
0: बिल्कुल, जिन्हां ने सानू इस दुनिया दे विच लियांदा है, असी उन्हां दा देना तो बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि किन्नियां मुश्किलातां दे नाल उन्होंने साडी जिहड़ी है वो पुश्त पनाही कीती है, और असी एडे वड्डे हुए हैं,
1: हाँ जी,
0: और ये सब उन्हां दे सद

जी दोस्तों, प्रोग्राम सौगात दा आखिरी गीत थोड़ी नज़र कर रहे हैं जी, जोश बराड़ दी आवाज़ दे विच। ते हुण इस गीत दे नाल प्रोग्राम नूं विश्राम देंगे। सुनदे हां जी जोश बराड़ दी आवाज़ दे विच गीत।

जी दोस्तों, इस गीत दे नाल ही अपने दोस्त शाम शर्मा नूं अज दा प्रोग्राम खत्म करन दी दे दिओ इजाजत, इस वादे दे नाल कि अपने माता पिता दी हमेशा आपां सेवा करांगे और माता पिता दा कहना मन्नांगे और माता पिता दे मुताबिक ही आपां सारे काम करांगे। हुण दे दिओ जी इजाजत, अपना ते अपने गुआंढियां दा रखना ध्यान ते इसे तरह जी साडे प्रोग्राम नाल जुड़े रहना। जाणा किते नहीं है, इस तों बाद वी कई प्रोग्राम तुहाडी नज़र कीते जाणगे ते अपनियां दुआवां च अपने दोस्त शाम शर्मा नूं वी याद रखना। ते हुण दे दिओ जी इजाजत, वंदे मातरम, जय हिंद।

की टेक तू, संता की ओट तू, सच्चा सिरजणहारा। इस गुरबाणी फरमान मुताबक ओ प्रभु ही सबदा ओट ते आसरा है। प्रभु प्यारे भगत उसे ते ही ओट रखदे हन ते उसे दी ही टेक मनदे हन। दीन दुनिया तेरी टेक, सब मैं रव्या साहिब एक। उसे नू ही सर्व कला समर्थ दयालु, दीना ते दया करन वाला मनदे हुए उस अगे ही अरदास बेनती करदे हन। राग वढ़हंस विच बाणी के बोहित साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाउंदे ने, कर किरपा प्रभ दीन दयाला, तेरी योट पूरन गोपाला। सरवण करदे आ भाई तरलोचन सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूरन गोपाला। इस शब्द का गायन किया सी भाई तरलोचन सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे ने। कुल सृष्टि का मालक अपने प्यारे जीवां दी हर स्थान ते हर पल रख्या करता है। उसकी कृपा हो जावे तो इंसान अज्ञानता दे अंधकार वाले डूंगे तो डूंगे खूह विचों बाहर निकल के ज्ञान रूपी चानण प्राप्त कर लैंदा है। वो दीना ते दया करन वाला प्रभु उस जीव दे दुखां नूं भी हर लैंदा है। ताही तां उस नूं दुख पंजन भी कहा जाता है। राग मल्हार विच गुरबाणी फरमान है, हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। सरवण करदे हां बीबी चरणजीत कौर होरां वल्लों गायन कीता होया ये शब्द।

0: हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। इस शब्द अगायन कीता सी बीबी चरणजीत कौर होरां। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरलाल सिंह।
1: यह पावन पवित्र शब्द शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज दा मलार राग अंदर उचारण कीता होया गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1273 ते दर्ज है। शब्द दी आरंभक अते रहाउ दी तुक अंदर साहिब

दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े। इस शब्द का गायन कीता सी पाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

ਛੱਡ ਬਲਿਹਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਵਾਹ ਸਾਰੇ ਅਟੁੱਲ।

ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ ਬਲ ਬਲ ਬਲ।

जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार।

संग सो कहत मज सोद जिसे दही पात खाए जियो देख रूप अत अनूप मोह महा मग पई किनकनी सबद चरतकार खेल पाए जियो काल कलम हुकम हाथ कह कौन मेट सके ईश्वम ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत सात श्रीनिवास आद पुरख सदा तू ही वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो।

अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो जपियो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट

बेरंच जा सगावे जाको सेवा मुन गहे ना तो जात का बलास को जाको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भेख किए फिर तो उदास को सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा।

कै जन्म मरण दुख हो सिफत खसमी नूर अरसह कुरसह सचे पात सहा मल जन्म जन्म दी

ਹਰ ਨਾਮੈ ਕੈ ਹਮ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਜਮ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਣ ਗਈ।

ਹਰ ਨਾਮੈ ਕਾ ਹਮ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਜਮ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਣ ਗਈ।

ਕਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ

साहिब होए दयाल कृपा करे तां साईकार प्रायसी सो सेवक सेवा करी सुन हुकम नायसी हुकम न होए प्रवान तां कसमें का महल पायसी कसमें भावे सो करे मनो चंदया सो फल पायसी तां अंदर गे पैंदा जायसी तां अंदर गह पैं